0: सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
2: सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिलाते चलें। इस समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। ये जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।
3: को मेरा नमस्कार। कांटोरेल मामले में पिंक कपड़े पहने हुए और कथित रूप से तलवार लिए उस युवती को कल CCID में पेश की गई। हिंसा की घटनाओं के 15 दिन बाद उससे पूछताछ की गई और उसके वकील राउफ गुलबुल भी उसके साथ थे। 22 साल की इस युवती ने इस आरोप से इनकार किया है। उसने घटनास्थल पर अपनी मौजूदगी की पुष्टि की और बताया कि वहां के कुछ निवासी उस पर और उसके दोस्तों पर हमला करना चाहते थे और उनका वाहन जला देना चाहते थे। उन्हें जंगल में शरण लेनी पड़ी और बाद में SMF द्वारा सुरक्षित बाहर निकाला गया। पाइकी इस निवासी को पूछताछ के बाद घर लौटने की अनुमति दी गई। पूर्व वित्त मंत्री रंगनाथन पदयाची को कल सेंट्रल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा

0: पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनसे उन बयानों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया जिनमें कहा गया था कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने 2025 में 83 बिलियन रुपए छाप कर सरकार को ट्रांसफर किए गए थे। साहित्य, कला और मानवता के प्रतीक रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके 165वें जन्म वर्ष पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रविन्द्रनाथ टैगोर संस्थान में कल आयोजित समारोह में इस वर्ष का टैगोर मेमोरियल लेक्चर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने प्रस्तुत किया। विदेश में इसराइल और हेजबुला के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इसराइली ताकतों ने दावा किया है कि उन्होंने लबनान सीमा के पास स्थित ऐतिहासिक किले पर कब्जा कर लिया है। अरब मौसम का हाल, पूर्व की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है सुबह के समय, और इस बीच हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, सुबह को देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा, रात को भी मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 23 से 26, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त शाम 5:37 पर होगा। तो मौसम की इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30।
1: RM3 रेडियो।

सामीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज शहर मदीना की सैर का दूसरा और आखिरी हिस्सा हम आपको गोश गुजार कराएंगे। आइए शहर मदीना में अपनी सैर को जारी रखते हैं। मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा ये वो पहली मस्जिद है जो ज़माना इस्लाम में तामीर हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके यहाँ पहुँचे तो आपने मस्जिद की जगह का इंतखाब किया और उसकी तामीर में बनफ्स नफीस शिरकत की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी कभी यहाँ तशरीफ़ ले जाते और इस मस्जिद में नमाज अदा फरमाते, खुसूसन हफ्ते के रोज़ यानी सैटरडे के दिन तशरीफ़ ले जाना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल था। आपने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने घर या पाकीज़गी हासिल की यानी गुस्ल वज़ू किया और इस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी तो उसको उम्रा का सवाब।

शहर मदीना में अपनी सैर को जारी रखते हैं। मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा ये वो पहली मस्जिद है जो ज़माना इस्लाम में तामीर हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके यहाँ पहुँचे तो आपने मस्जिद की जगह का इंतखाब किया और उसकी तामीर में बनफ्स नफीस शिरकत की। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी कभी यहाँ तशरीफ़ ले जाते और इस मस्जिद में नमाज अदा फरमाते। खुसूसन हफ्ते के रोज़ यानी सैटरडे के दिन तशरीफ़ ले जाना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल था। आपने फरमाया कि जिस शख्स ने अपने घर या पाकीज़गी हासिल की यानी गुस्ल वज़ू किया और इस मस्जिद में आकर नमाज पढ़ी तो उसको उम्रा का सवाब

0: मस्जिद जुमा मस्जिद कुबा के शिमाल में तकरीबन 900 मीटर की दूरी पर वाक़ है। इस मस्जिद के नाम की वजह तस्मीम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचने के बाद सबसे पहला जुमा यही अदा फरमाया। मस्जिद में मर्दों के अलावा ख्वातीन की नमाज पढ़ने के लिए भी जगह मखसूस की गई है। छत पर गुंबद है जिसकी बुलंदी 12 मीटर है। इसके पहलू में 4 छोटे छोटे गुंबद भी हैं। इसी तरह सामीन मदीनतुल मुनव्वरा में मुख्तलिफ मसाजिद हैं जिनमें मस्जिद अबूबकर सिद्दीक, मस्जिद उमर बिन खत्ताब, मस्जिद अली बिन अबी तालिब की अहमियत अपनी जगह मुसलमान है।
1: मदीने से बुलावा रहा है।
0: सामीन इस वक्त हम तालिफ एम साहब से मुखातिब हैं और आज सफर मदीना यानी मदीने की सैर का आखिरी हिस्सा हम आपको गोश गुजार कर रहे हैं। आइए अपनी सैर को जारी रखते हैं। जबल उहुद यानी उहुद का पहाड़ मदीना मुनव्वरा की अहम तबी आसार में से उहुद पहाड़ है। ये मस्जिद नबवी के शिमाल में 4.5 किलोमीटर की मुसाफहत यानी कि डिस्टेंस पर वाक़ है। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर और अर्ज 2-3 किलोमीटर के दरमियान है। इस पहाड़ से मुसलमानों को गहरे अकीदत है। इसके दामन में मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान मशहूर गुज़वे उहुद वाक़ हुआ था और इस पहाड़ की फजीलत में कई अहादीस मुबारका वारिद हुई हैं। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत नकल की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं।

मदीना मुनव्वरा में शाह अब्दुल अजीज लाइब्रेरी मतलब कुतुबखाना भी देखने के लायक है। मस्जिद नबवी शरीफ के मगरिब में सहने मस्जिद से इसका ताल्लुक है, बल्कि ये लाइब्रेरी वहाँ पर वाकई है। ये लाइब्रेरी रोज़ाना सुबह 7:30 से 2:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खुलती है। ख़वातीन के लिए अलहदा जगह खास की गई है। इस कुतुबखाने में एक बड़ा हॉल भी है जिसमें मुख्तलिफ सकाफती और इल्मी प्रोग्राम भी होते रहते हैं। इस लाइब्रेरी यानी इस कुतुबखाने की ख़ास बात यह है कि इसमें ऐसी नादिर किताबों का ज़खीरा भी है जिनकी तबाअत कई सौ साल पहले

मदीना मुनव्वरा में ज़राअत व काश्तकारी यानी एग्रीकल्चर। मदीना मुनव्वरा शादाब इलाका है, यहाँ पानी की फरावानी है। कदीम ज़माने ही से यहाँ के बाशिंदों का पेशा ज़राअत यानी एग्रीकल्चर रहा है। चुनांचे खजूरों की काश्त और अंगूरों यानी ग्रेप्स के बागात और सब्जियों की पैदावार में ये शहर मशहूर है। अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़राअत के पेशे ने खूब तरक्की की। महाजरीन में से बहुत से अफराद ने ज़राअत के पेशे को अख्तियार किया। शुरू में तो वह पानी की सिंचाई और फल काटने में हिस्सा लेते। बाद में यहूदियों के मदीना से निकाले जाने के बाद काश्त की बहुत सी ज़मीन मुजाहिरीन की अपनी मलकियत हो गई। बनू उमैया के अहद में मदीना मुनव्वरा की हर चार सिमत में नए नए बागात और काश्त के खेत बन गए। अब्बासी दौर में मदीना की काश्तकारी में उतार चढ़ाव रहा, इसलिए उसको बहुत से लोग मदीना से हिजरत कर गए। ऐसे हालात कई सदी रहे, मगर इसके बावजूद पैदावार की एक खासी मकदार

यहां के बाशिंदों को मिलती रही। सऊदी अहद में काश्तकारी इस तरह चलती मगर मवाक़े और टेक्निकी एतबार से इसमें बड़ी पेशकदमी हुई। मदीना मुनव्वरा के अंदर आबादी में अजाफा हुआ और इन काश्त के खेतों के आसपास से शुरू होकर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर सदका पेश किए गए थे आबादी का फैलाव कुबा के बारात तक जा पहुँचा।

का काम फैल गया, वहाँ सिंचाई के लिए कुएं जहूर में आए। इसके अलावा जदीद मशीनें इस्तेमाल में लाई गईं, ज़राती मैदान में नए तजर्बात से फ़ायदा उठा गया। इस मैदान में काम करने के लिए अरबी व इस्लामी और दुनिया के दिगर मुख्तलिफ मुल्कों से मजदूर।

शक्ति। मंगलवार 2 जून दिन के 10:45 हो रहे हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुमिता की ओर से सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। अभी से लेकर दिन के 11:30 तक चलेगा भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम। हम यही प्रार्थना करेंगे कि आज का ये जो नया दिन मिला है, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के मार्गदर्शन पर हम इस दिन को व्यतीत करें। जहाँ तक हो सके हम सबकी सहायता करें, जहाँ तक हो सके एक कृतज्ञ हृदय से पूरे दिन को हम व्यतीत करें और बस जो भी हो रहा है, जो भी होने वाला है, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर हम अपने इस जीवन को व्यतीत करें। तो चलिए इन्हीं कामनाओं के साथ आज के भक्ति में शक्ति कार्यक्रम का हम आरंभ करने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि आरंभ अच्छा हो तो अंत भी अपने आप में अच्छा होता है। बस आरंभ के पहले मन में जो भी शंकाएं होती है वो पहले कदम को उठाने तक होती है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि पहला पड़ाव जो होता है वही सबसे ज़्यादा कठिन लगता है, वही सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन जब मन में विश्वास हो और ईश्वर में आस्था हो और अपने मंजिल की ओर हम बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं तो कुछ भी नहीं है जो हमें रोक सकता है, और ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही हमारे साथ। तो चलिए भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

श्रोताओं, भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया। कहते हैं कि जिस दिन प्रभु कृपा से साधक को ये पता चल जाता है कि उसका मन ही है जो हमेशा भागता रहता है, वो स्वयं कहीं नहीं भागता। ऐसा ही होता है ना हमारे साथ कि हम एक जगह पर हैं लेकिन हमारा मन एक जगह पर नहीं है, अभी इस बात की चिंता कर रहा है, अभी उस बात के बारे में सोच रहा है। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो अलग बात है। आने वाले कल में क्या होगा, मन हमारा उस ओर दौड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम साधक की बात करें, एक भक्त की बात करें, तो वो कहीं नहीं भागता है। उसका शरीर तो स्थिर है लेकिन मन है जो भागता रहता है। और जिस दिन हमें ये अनुभूति हो जाती है कि हम नहीं है जो हम भाग रहे हैं, वो तो हमारा मन है जो भाग रहा है, तो मन को नियंत्रित करना बहुत ही सरल हो जाता है। क्योंकि सदा जो है हर एक साधक जो है, हर एक भक्त जो है, शांत मन चाहता है, शांत चित्त चाहता है, स्थिरता चाहता है अपने जीवन में। और जिस दिन ये स्थिरता आ जाती है तो जन्मों जन्मों के भ्रम जो है टूट जाते हैं, आँखों पर ये जो माया का पर्दा है वो हट जाता है, और उसी क्षण हम सभी माया जाल से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर की शरण में पूरी तरह से चले जाते हैं। तो मन को शांत करना, मन को स्थिर करना अपने आप में हर एक व्यक्ति के लिए एक चुनौती होती है, और जो इस चुनौती को पार कर लेता है उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता।

भक्ति में शक्ति। श्रोताओं, भक्ति में शक्ति यह कार्यक्रम दिन के 11:05 यहाँ पर हो रहे हैं। श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि जहाँ पर हमारी कोई इच्छा नहीं होती है किसी के साथ या किसी के प्रति कोई चाह नहीं होती है, ऐसे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। जब हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है, जब हमारी आशाएं बढ़ जाती है, जब हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तब जो है कभी कभार हमें लगता है कि मनमुटाव शुरू हो जाता है, है ना। छोटी छोटी बातों में मतभेद शुरू हो जाता है। और कहते हैं कि जीवन में जो है हमें जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। जब हम प्रकृति से भी कुछ नहीं मांगते तो प्रकृति हमें अपने आप में कितनी सुंदर लगती है, है ना। तब हम प्रकृति का भी नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन में इच्छा नहीं होती है उससे कुछ मांगने की या उसमें कोई बदलाव लाने की। और जब हम अपने जीवन से भी कुछ नहीं चाहते हैं तो जीवन अपने आप में सुंदर लगने लगता है। तो कभी कभार ये इच्छाएँ ही होती हैं जो हमारे रिश्तों को कहीं ना कहीं रिश्तों में दूरियां लाती है, रिश्तों में कड़वाहट लाती है। जब हमारे पास जो है जितना है यदि हम उसी में संतुष्ट हैं और ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल है, जो भी हम कर रहे हैं ईश्वर की कृपा है, जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा अनुसार हो रहा है, तब हमारा जीवन और भी सरलता से मधुरता से आगे बढ़ता है। इसलिए कभी कभार इन इच्छाओं पर थोड़ा सा अंकुश लगाना बहुत आवश्यक होता है। इन भावनाओं को थोड़ा सा रोक कर रखना, जीवन में थोड़ा सा ठहराव कहते हैं ना, बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि नहीं तो आज हमें कुछ चाहिए, कल हमारा मन बदल जाता है, हमें कुछ और चाहिए। आज एक इच्छा पूरी होती है, कल एक नई इच्छा जाग उठती है। तो इन सभी बातों पर नियंत्रण रखना अपने आप में ज़िंदगी की, जीवन की सुंदरता को बढ़ाता है।

श्रोताओं भक्ति में शक्ति यह कार्यक्रम रेडियो मनोरंजन पर। कभी आपने देखा है सूर्य को कहते हुए कि वो कौन है? कभी आपने फूल को कहते हुए सुना है, पुष्प को कहते हुए सुना है वो कौन है? कभी सागर ने कहा है कि वो कौन है? क्या कभी आसमान ने कहा है कि वो कौन है? वो कौन है, वो क्या करते हैं, ये जगत जानता है। सूर्य सवेरे सवेरे पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। धरती के कण कण में जब सूर्य की किरणें पहुंचती है तो धरती फलती है, फूलती है। फूल अपनी सुंदरता और

अपनी महक से हमारे जीवन को महकाती हैं। सागर भी जो है अपना कर्तव्य निभाता है, आसमान भी अपना कार्य करते जा रहा है, वैसे ही हमें भी अपने कार्य को करते रहना चाहिए। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या है, कौन है और क्यों है। हमारा जो आचरण है, हमारे जो कर्म है, वो सब कह देते हैं।

0: भक्ति में शक्ति।
1: जी हाँ, ईश्वर सदा आपकी रक्षा करे, ईश्वर सदा आपके परिवार का ध्यान रखे और ईश्वर जो है सदैव हमारा मार्गदर्शन करे। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। हनुमान जी की आरती के साथ कार्यक्रम को समाप्त हम करते हैं। इस कार्यक्रम में आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 11:30 बजे आप सुन पाएंगे चाइनीज भाषा में कार्यक्रम। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को।

堆积，加重身体代谢负担，血糖偏高，肠胃虚弱，以及老年人更要少吃。好，听众朋友，让我们继续来收听好歌送给您的节目。

听众朋友，今天的汉语普通话好歌送给您的节目将要接近尾声，感谢您的收听。好，我们在下次同一节目时间

0: ट्रेकी होता है स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार पूजा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार दिनिशा, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन प्रधानमंत्री को संबोधित है। विपक्ष नेता जूली रोगो प्रधानमंत्री से सिंथेटिक ड्रग्स के संबंध में जनवरी 2025 से अब तक की जानकारी पाना चाह रहे हैं। और अपने जवाब में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने कहा कि सिंथेटिक ड्रग्स की रोकथाम के लिए नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल 2025 की स्थापना की गई थी। और इसके अलावा पुलिस कमिश्नर से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे सड़क यातायात दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है जिन में चालक सिंथेटिक ड्रग्स के प्रभाव में पाए गए थे, और उन दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप कितनी मौतें और कितने लोग घायल हुए हैं, सिंथेटिक ड्रग्स के प्रसार को रोकने के लिए कौन कौन से कदम भी उठाए गए हैं। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल ने सिंथेटिक ड्रग्स के उपयोग पर कोई अध्ययन किया है, और यदि हाँ तो ऐसे उपभोगकर्ताओं की अनुमानित संख्या क्या है जिनकी पहचान की गई है, और इसके प्रसार को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी द्वारा विश्लेषित किए गए सिंथेटिक ड्रग्स के प्रकार कौन कौन से हैं जिनमें हाल ही में पहचाने गए नए सिंथेटिक ड्रग्स भी शामिल हैं। और आपको बता दें कि कार्यसूची में 60 से अधिक प्रश्न भी दर्ज हैं जिनमें से लगभग 20 प्रधानमंत्री को संबोधित होंगे। मॉरिशस में आर्य समाज का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और वैदिक आयोजन सत्यार्थ प्रकाश मास आरंभ हो चुका है। ये विशेष माह महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन, चिंतन और प्रचार प्रसार को समर्पित है। इस अवसर पर देश भर के विभिन्न आर्य सभा भवनों और आर्य समाज संस्थाओं में प्रवचन, सत्संग, वैदिक यज्ञ, भजन का आयोजन किया जा रहा है। भक्त को सत्यार्थ प्रकाश के सिद्धांतों को समझने और अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मॉरिशस में यह आयोजन भारतीय संस्कृति, वैदिक परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। अफ्रीका की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इथियोपियन एयरलाइंस मॉरिशस के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। पिछले हफ्ते इस नई सेवा की घोषणा की गई थी। इथियोपियन एयरलाइंस इस नए मार्ग पर सप्ताह में 3 उड़ानों का संचालन करेगी। विदेश में रूसी हमलों में यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों में 10 लोग मारे गए हैं। रात भर के हवाई हमलों में अपार्टमेंट ब्लॉक को निशाना बनाए जाने के बाद दर्जनों लोग भी घायल हुए हैं, और पिछले सप्ताह मॉस्को ने चेतावनी दी थी कि वो यूक्रेन पर संगठित हमला करेगा। ये प्रतिक्रिया पिछले महीने यूक्रेन के रूसी नियंत्रित लुहांस क्षेत्र में छात्रावास पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में थी जिसमें 21 लोग मारे गए थे। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। लाकावेन नंबर 1 वाकुआ में 73 साल के 73 years old जनाब सफीक रामजान बोला। जनाब सफीक रमजान बोला, जिन्हें लोग बोला नाम से ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के डेढ़ बजे इनके मकान लाकावेन नंबर 1 वाकुआ से उठाकर फिनिक्स का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1:30 PM। डॉक्टर नंबर 8 इंका मैन स्ट्रीट वैली पीटो पोर्ट लुइस में 43 साल के 43 years old श्री पुरंद्र सिंह पुनित, जिन्हें लोग पुपु नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनके पिता राम पुनित के मकान नंबर 8 इंका मैन स्ट्रीट वैली पीटो पोर्ट लुइस से उठाकर थॉक बा किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening.

सुहाना सफर सुहाना सफर मंगलवार 2 जून घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 12:05 और आप सबका फेवरेट प्रोग्राम सुहाना सफर लेकर हम आ गए हैं। मैं हूं सुमी और आज 12 से 2 बजे तक हम आपका साथ देंगे पुराने गीतों के इस खूबसूरत सफर में। सो कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो हैं ना? मंगलवार का दिन उम्मीद करते हैं अच्छे से बीत रहा होगा और अभी से लेकर 2 बजे के बीच खूबसूरत एवरग्रीन तराने ऑब्वियसली आप सभी के लिए हम चलाने वाले हैं। सो काम करते करते हमारा साथ दे रहे हैं, लंच करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं या घर पर सवेरे सारा काम निपटा कर बस आराम करते करते हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां से भी जैसे भी साथ दे रहे हैं, एक बार फिर से दिल से आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। और बेशक आपको तो पता ही है इस प्रोग्राम में आपके डेडिकेशंस भी हम इंक्लूड करते हैं, सो नॉट टू फॉरगेट 4028070 है नंबर हमारा। साथ ही आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं ऑन 5250 6200 पर। थोड़ी ही देर में हम रेडियो मनोरंजन के टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे, सो साथ देते रहिएगा। घर फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी हाँ, जहाँ प्यार होता है वहाँ पर लड़ाई भी होती है, थोड़ी सी थोड़ा सा झगड़ा भी होता है, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, वहाँ पर कभी कभार थोड़ी दूरियाँ आ जाती है, फिर हम एक भी हो जाते हैं। और जहाँ प्यार हो वहाँ नोकझोंक ना हो तो फिर प्यार कैसा है ना। प्यार हमें दर्द भी देता है, प्यार हमें खुशी भी देता है, लेकिन प्यार का हर एहसास खूबसूरत होता है। और अभी के लिए बड़े ही प्यार से आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत गानों का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है। और अगला जो तराना है धर्मात्मा फिल्म का ये गीत है, तुमने किसी से कभी प्यार किया है, मुकेश साहब और कंचन जी की आवाज़ों में। वरुणा जी इस समय हमारा साथ दे रही है, गाना आपके नाम हम करते हैं और उन सभी के नाम जो मुकेश साहब के फैंस हैं।

0: सुहाना सफर।
1: यकीनन आप सभी लवली लिसनर्स का, आप सभी लवली फॉलोअर्स का साथ है, तो हमें किस बात की कमी है, किस बात का गम है या किस बात का दुख है। आप साथ हैं तो ये जो सफ़र है और भी खूबसूरत हो जाता है। और चलिए, गानों का कारवा यहाँ पर जारी है। अगला जो गाना है, सायरा बानू जी आपके नाम हम करते हैं, बड़े ही प्यार से हर रोज़ हमारे साथ जुड़ती हैं। अगला गाना आपके ओर से आपके शौहर अब्दुल के लिए, ज़मीर फिल्म का तराना है, तुम भी चलो हम भी चले, चलते रहे ज़िंदगी। और चलते चलते यहाँ पर टिकटॉक पर हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिमी है, माधुरी है, कविता है, इंदिरा जी ये गाना आपके फ्रेंड श्याम के नाम आपकी ओर से, हेलो राजा कैसे हैं आप। वी हैव अनदर इंदिरा मुतुफ सिंह, आई होप मैंने आपका नाम अच्छे से लिया हो। जितेन जी है यहाँ पर, नाइम जी है, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए साथ देते रहिए, ये खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।

0: RM3 Radio. Radio.
1: और चलिए यहाँ पर अग्रीमेंट फिल्म का ये गाना चल पड़ा है, अग्रीमेंट नहीं, होटल फिल्म का गाना चल पड़ा है। अग्रीमेंट फिल्म का गाना थोड़ी देर में हम चलाएंगे। होटल फिल्म का ये गाना आशा जी और मनर जी की आवाज़ों में, प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना। कल शाम को जब हम काम कर रहे थे तो किसी ने इस गाने की फरमाइश की थी, लेकिन शाम को पुराने गाने नहीं चलते हैं तो मुझे अभी उनका नाम तो याद नहीं जिन्होंने टिकटॉक पर इस गाने की फरमाइश की थी। तो अगर आप हमें इस समय सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो बताइए आप कौन हैं। हमें ठीक से नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये गाना आपके लिए हम बड़े ही प्यार से चलाते हैं। और उन सभी के नाम जिन्हें ये गाना पसंद है। इस समय सरिता जी हमारा साथ दे रही है, बीना जी बहुत बहुत शुक्रिया। गाना आपकी ओर से जाता है अनीता चिकोरी के नाम, सरदार कामरान, यालेश श्याम, शुक्रिया साथ देने के लिए। वी हैव मनोज, वी हैव रोशन, यही गाना इंदिरा जी आपके ओर से राजेश और प्रकाश के लिए, अनाबेल, MD एंजल, लव एंजल, नाजीमा, सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हैं।

सुहाना सफर, सुहाना सफर। चलिए सुहाना सफर का ये जो खूबसूरत कारवां है, आप लोगों के जुड़ने से और भी खूबसूरत और भी हसीन हो जाता है। और चलिए, जितने भी लिसनर्स, जितने भी फॉलोअर्स आज अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं, आप लोगों को वेडिंग एनिवर्सरी की ढेर सारी बेस्ट विशेज, शुभकामनाएं। आप लोगों का प्यार और अपनापन यूं ही बढ़ता रहे। और चलिए अगला गाना, इंदिरा जी आपके नाम और आपके हस्बैंड के नाम, माधुरी जी आपके नाम और आपके हस्बैंड के नाम 35th वेडिंग एनिवर्सरी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ टुगेदरनेस आप लोगों को। और ये जो तराना है आप लोगों के नाम हम करते हैं, यहाँ पर अमर हमारा साथ दे रहे हैं, अमर राम सरन। वी हैव कविता, विनय बुधू जी शुक्रिया साथ देने के लिए। वी हैव प्रकृति, जाम, विक, सरोज, सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माला बुधू जी आपके भी प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव थामोतरन, वनक्कम आपको भी, कैसे हैं आप। और चलिए लावा फिल्म का ये जो ड्यूएट है लता जी और किशोरदा की आवाज़ों में।

0: सुहाना सफर।
1: जादू तो इन गानों में है ना। गाने इतने खूबसूरत है कि क्या कहें। देखिए ना, गानों को सुनते सुनते एक घंटा खत्म होने को चला, 12:50 ऑलरेडी यहाँ पर होने को है। और अगला जो तराना है, अग्रीमेंट फिल्म का ये गाना है शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ में। ऐसे शैलेंद्र सिंह जी ने उतने गाने नहीं गाए हैं, लेकिन उनके जितने भी गाने उन्होंने गाए हैं, ज़्यादातर गाने बड़े खूबसूरत है, बड़े कमाल के। ऐसे शैलेंद्र जी गाने लिखते भी हैं, आई बिलीव लिखा भी करते थे, और उनके गाने बड़े कमाल के होते थे। तो अब ये गाना परी खासकर आपके लिए, जीना भी कोई जीना है। ये गाना लक्ष्मी जी आपके नाम भी हम करते हैं रंभा, ये गाना आपकी ओर से आपके पति अजय के नाम और साथ में आपकी मदर इन लॉ के नाम, और जो हॉस्पिटलाइज्ड है, हम प्रे करेंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए। जस्ट फॉलोड यू, ये गाना आपके लिए भी। राम कौर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हैं। वी हैव सल्लू खान, वी हैव नबीला, नाजिमा, आशी, सूर्या, लक्ष्मी, आलम, माला जी गुडलैंड से साथ दे रही है, मुश्ताक खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, कविता जी कौच मिलीते से हमारे साथ जुड़ी है, लीना है, सुबि है और दीप्ति गंदावरी। अगला गाना आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स के लिए। रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका साथ भी हमें मिल रहा है। पॉम्पलीमुस से लवली हमारे साथ कनेक्टेड है। बीना सुधु जी पुद्रदोर हैमलेट से हमारे साथ जुड़ी है।

0: और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम इस अगले गाने की ओर। अगला जो तराना है, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, गाना जाता है वेक अप के नाम।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं एक बजे के समाचार की ओर जाते मतलब कि एक बजे के समाचारों की ओर बढ़ते बढ़ते ये गाना हम करते हैं नीलांका आपके लिए, अनिल रापू जी, ए जे आपके नाम, वी हैव प्रीति, मनीषा जयराम, श्रद्धा, सभी जो बड़े ही प्यार से साथ दे रहे हैं। मिलते हैं हम आपसे सुहाना सफ़र के सेकंड आवर में।

0: Center 95.5. North South 95.6. East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: ये सुनते हैं समाचार आदिति के साथ। नमस्कार।
3: नमस्कार गिरीश।

0: श्रोताओं को भी नमस्कार। जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज्यादा कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच सिंथेटिक ड्रग्स से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई। 44 सड़क दुर्घटनाओं में भी ऐसे चालक शामिल रहे जिनके ड्रग टेस्ट पॉजिटिव साबित हुए थे। इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि देश में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई और साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई है। कौतूहल मामले में सुर्खियों में बनी पिंक जंप सूट पहनी युवती को कल सेंट्रल CID में पेश किया गया। उस हिंसक घटनाओं के दो हफ्ते बाद उससे पूछताछ की गई, जो उसके वकील रऊफ गुलबुल की उपस्थिति में चली। उसने अपने बयान में कहा कि उसके हाथ में तलवार नहीं थी और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। हालांकि उसने घटनास्थल पर मौजूद होने की बात स्वीकारी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव और नीप्रो शहर पर रूसी ताकतों की तरफ से किए गए सिलसिलेवार मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले कुछ महीनों में किए गए सबसे बदतर हमलों में से एक रहा। दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 26 रूट मिलिटेयर प्लान वेयत में 35 साल की 35 ईयर्स ओल्ड की बीबी कौशल हिंगा जो कौशल नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के ढाई बजे इनकी बहन बीबी फरसियाना मदीना हिंगा के मकान नंबर 26 रूट मिलिटेयर प्लान वेयत से उठाकर पहले नमाज जनाजा के लिए प्लान वेयत की मुनावरा मस्जिद ले जाया जाएगा फिर दफनाने के लिए। रिश्तिया का कब्रस्तान फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। मायावरम रोड सुयाक में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आदामा स्वामी पैदाशी नाम पोताया जो सरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के बारह बजे इनकी बेटी श्रीमती माला रामिया के मकान मायावरम रोड सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बाकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। नंबर 54 एवेन्यू अलामोंदा मोंसेलमा प्लेन दे जेमिताज हाइलैंड्स में 54 एवेन्यू अलामोंदा मोंसेलमा प्लेन दे एमिताज हाइलैंड्स में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रूपवंती लकी राम पैदाशी नाम गंगा विसुन जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे बेटे श्री केविन लकी राम के मकान नंबर 54 एवेन्यू अलामोंदा मोंसेलमा प्लेन दे एमिताज हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. सुहाना सफर।
2: चलिए समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी लवली लिसनर्स का, आप सभी फॉलोअर्स का स्वागत हम करते हैं ऑन रेडियो मनोरंजन। और सुहाना सफर ये प्रोग्राम है, दिस इज द सेकंड आवर और 2 बजे तक चलने वाला है ये प्रोग्राम। अभी तक अपने डेडिकेशंस हम तक नहीं पहुंचाए हैं तो देर किस बात की है। जल्दी जल्दी यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250-6200 पर, या तो इस समय हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव है, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहां पर अगला गाना जो है त्रिशूल फिल्म का ये तराना है, ये जाता है आपके नाम। यहाँ पर गोरुलू आपके लिए।

ठीक है, आपने ये गाना मांगा था तो ये गाना आपके लिए, वी हैव हिमाक्षी और मिष्टी, ये गाना आपके लिए भी, और रेशमा राम किशुन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये गाना आपके लिए हम करते हैं। प्रेमिला जी फ्रांस से हमारा साथ दे रही है, रेखा है, सिस्टर मेधा है, वी हैव सवीरा, DCRB, अंजलि जी शुक्रिया साथ देने के लिए, तेज गाना आपके नाम और आपकी मॉम विरोशनी के लिए, वी हैव आश, वी हैव सबिता जी, सबिता जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड फिश फिजी से हमारा साथ दे रहे हैं, शर्वी थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, बेटीना अगला गाना आपके नाम आपके पति विकी के लिए, रोशन जी आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेमिला जी बेल्जियम से साथ दे रही है, और सेकंड आवर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गाने के साथ, त्रिशूल फिल्म से लिया गया, लता जी, नितिन मुकेश और साथियों की आवाजों में,

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जन्मों के साथ का तो पता नहीं, इसका तो वादा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ जब भी मौका मिलेगा यहाँ पर रेडियो मनोरंजन पर हम आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए, आप सभी को एंटरटेन करने के लिए। और चलिए, आपका प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया। अगला गाना हीरा पन्ना फिल्म का ये तराना है, और ये जो गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज़ों में जाता है, नंदा जी आपके नाम पाई से हमारे साथ जुड़ी हुई है। और ये गाना आपकी बेटी अश्विना के नाम, बेटा है आशील अभिषेक, साथ में गुलू है, अरवी है, आपके पति है दीपक, सभी गणेश परिवार और सभी पुनीता परिवारों के नाम इस गाने को हम करते हैं। नबीला जी शुक्रिया, आप हमारा साथ दे रही हैं। मनीषा जयराम जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीला आपका भी साथ हमें मिल रहा है। मोहिनी जी आपको भी हम नहीं भूले हैं। और चलिए, ये गाना तो खूबसूरत है ही, फिल्म भी बड़ी कमाल की थी। हाँ, हीरा पन्ना।

तो चलिए हीरा पन्ना फिल्म का ये खूबसूरत सा तराना अभी आप सुन रहे थे लता जी किशोर दा की आवाज़ों में। और हीरा पन्ना इस फिल्म की बात करते तो नज़रों के सामने देवानंद साहब आ जाते हैं, प्यारी सी जीनत अमान जी आ जाती हैं, इसमें राखी भी है शायद, शायद आप बताएं कौन सी और एक्ट्रेस इसमें नज़र आई थी।

0: सुहाना सफर
1: यस सर दिस इज योर सुहाना सफर ऑन रेडियो मनोरंजन और चलिए सिर्फ मॉरिशस ही से नहीं दुनिया के कोने कोने से जो है हमारे फॉलोअर्स हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं सो गियाना जी थैंक यू सो मच आपके इतने सारे मैसेजेस इतने सारे हार्ट्स के लिए विशाल जी ऑस्ट्रेलिया से इस समय हमारा साथ दे रहे हैं फिजी से हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वी हैव पायल प्रसाद वी हैव शाइलेन जी उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आ रहा होगा वीमा पेंटिया जी थैंक यू सो मच वी हैव वकील हाय वकील मालिनी जी आपका भी शुक्रिया एजे शादी की तैयारियों में लगे हैं आपकी तैयारियों में हम भी इन खूबसूरत गानों के साथ साथ आपका साथ दे रहे हैं ऐश ऐश वी हैव वीना विधि रोनिश शाइलेन नूरैदीन पेरिस से हमारा साथ दे रहे हैं असगर जी शुक्रिया विनय है रोशन है ऋषि आप भी हमें सुन रहे हैं सो अगला जो गाना है प्यार के दो पल फिल्म का ये टाइटल ट्रैक है और रेशमा जी ने थोड़ी देर पहले इस गाने की फरमाइश की थी तो रेशमा जी ये गाना आपके नाम और आपकी प्यारी बेटियों के नाम बेबी और बेबी मुन्मी और शब्बीर कुमार जी की आवाज़ों में ऐसे शब्बीर कुमार जी के गाने बड़े कमाल के होते हैं 80s के सालों में उनके काफ़ी गाने हैं और उनकी आवाज़ एक अलग ही तरह की है ना आप लोगों का क्या कहना है बताइएगा हमें ज़रूर और शब्बीर कुमार का कौन सा गाना आप लोगों को पसंद है

0: सुहाना सफर
1: जी हाँ प्यार के दो पल कहीं खो ना जाए ब्यूटीफुल सा तराना प्यार के दो पल इस फिल्म से लिया गया लेकिन लाइफ में प्यार होता है लाइफ में अपनापन होता है तो लाइफ की जो खूबसूरती है बढ़ जाती है ना तो चलिए आपके भी लाइफ में प्यार हो अपनापन हो अपनों का साथ हो दोस्तों का साथ हो क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़िंदगी के इम्पोर्टेंस को बढ़ा देते हैं तब ज़िंदगी जीने का एक मज़ा ही और होता है अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना दोस्तों के साथ टाइम बिताना कभी कभार हम सोचते हैं कि जब तक हम छोटे हैं तभी तक हमारे दोस्त ज़रूरी है स्कूल फ्रेंड्स का हो या कॉलेज फ्रेंड्स लेकिन दोस्ती ज़िंदगी के इस पड़ाव में आकर

उससे भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अब हमारे ऊपर काफी रिस्पांसिबिलिटीज होती है चैलेंजेस होते हैं फैमिली लाइफ को देखना होता है प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल करना होता है ऐसे में बीच-बीच में दोस्तों से मिलने का मौका मिल जाए सहेलियों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए तो लाइफ और भी खूबसूरत हो जाती है तो आपके भी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है कोई ऐसी सहेली है उनके नाम गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी अपनी जो डेडिकेशंस हैं हम तक पहुंचाइए ऑन 5250-6200 पर और अभी के लिए चलिए सरिता जी अगला गाना आपके नाम और आपकी पूरी फैमिली के लिए आसमा फिल्म का ये गाना गियाना जी आपके लिए हम करते हैं असगर अली जी जर्मनी से हमारा साथ दे रहे हैं नसीर मलिक जी शुक्रिया साथ देने के लिए किरण जी आपको भी हम नहीं भूले हैं वैदेही जी थैंक यू सो मच हमारे इस लाइव को लाइक करने के लिए शेयर करने के लिए वी हैव निदिश कैसे हैं आप निदिश होप एंजल राय आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई है रितेश जी नमस्ते आपको भी कैसे है तो चलिए ये गाना चल पड़ा आप सभी के लिए किशोरदा की आवाज़ में ऐसा हमने कहा ना आज ज्यादातर गाने जिनकी रिक्वेस्ट हो रही है मैक्सिमम गाने आज किशोरदा के ही यहाँ पर चले हैं किसी ने रफी साहब का एक गाना मांगा था तो हमने चलाया था थोड़ी देर पहले

0: एक्चुअली इन गानों में न जाने कितनी कहानियाँ, कितनी किस्से होते हैं. कभी कभी गाना सुनकर ऐसा लगता है कहीं ये हमारी ही कहानी तो नहीं है जो हम सुन रहे हैं. और ये गाने जो है ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बना देते हैं ना, क्योंकि इन सभी गानों से न जाने कितनी हमारी यादें जुड़ी हुई होती हैं. सो दिस वॉज फ्रॉम फिल्म आसमा, किशोरदा की आवाज़ में.
1: सुहाना सफर.
0: तो चलिए देखते ही देखते यहाँ पर दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और आधे घंटे में ये जो प्रोग्राम है ये खत्म हो जाएगा. तो जल्दी जल्दी आपके डेडिकेशंस को हम इंक्लूड करते हैं. अगला जो तराना है, हम किसी से कम नहीं फिल्म का ये गाना, फिल्म का गाना होगा क्या हुआ तेरा वादा. कल्याणी जी आपके नाम जाता है ये गाना. अनिल जी शुक्रिया साथ देने के लिए. वी हैव रितेश, वी हैव आरती, और यहाँ पर जो है दीप्ति जी. प्रोग्राम को आप पसंद कर रही है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इंडीड, ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराने गानों की बात ही कुछ और होती है. और आपके मैसेजेस के लिए भी शुक्रिया. यहाँ पर हमारे साथ माला जुड़ी है कटरबोन से. चलिए माला जी, इस गाने को हम आपके नाम भी करते हैं. ललिता जी, आपका भी प्यार भरा साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो सो मच.

0: खाना सफर खाना सफर
1: यकीनन ये अपने आप में एक आइकॉनिक गाना है क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा ये गाना जब रिलीज हुआ था उसके बाद भी पॉपुलर था और ये गाना आज भी इतना पॉपुलर है और हम किसी से कम नहीं इस फिल्म के बारे में हम क्या कहें फिल्म के सभी गाने लाजवाब हैं और चले यहाँ पर अगला जो तराना है दिल ने फिर याद किया इस गाने की जो रिक्वेस्ट है वो बेबी जेन की ओर से आई है इस गाने में हम आवाज़ें सुनेंगे रफ़ी साहब की सुमन कल्याणपुर जी की और मुकेश साहब की 31 मई को पिछले 31 मई को जो है यानी कि रविवार को सुमन कल्याणपुर जी चल बसी सुमन कल्याणपुर जी जो है 60s 70s के सालों में गाना गाया करती थी 89 ईयर्स की थी वो और उनके काफ़ी गाने हैं जो बहुत ही पॉपुलर है उनकी आवाज़ जो है लता जी से काफ़ी सिमिलर है तो बहुत से लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी हो जाते थे उनकी आवाज़ को सुनकर जब शुरुआती दौर में उन्होंने गाना गाना शुरू किया था तो ये जो गाना है दिल ने फिर याद किया इसमें आप सुनेंगे रफ़ी साहब जी को सुमन कल्याणपुर जी को और मुकेश जी को तीनों ही बड़े कलाकार हैं बड़े गायक और तीनों ही आज हमारे बीच नहीं हैं तो चलिए इन तीनों को याद करते हुए इस गाने को हम आप सबके लिए डेडिकेट करते हैं
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: तो चलिए यहाँ पर अगला तराना उन सभी के नाम जिनका भी आज बर्थडे है, जितने भी लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम की ओर से आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, विशिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ सक्सेस, गुड हेल्थ। आपको जो है लाइफ में बहुत सारी तरक्की मिले, आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। यहाँ पर अतवाल मनिंदर जी, आपके बेटे का बर्थडे है, सो आपके बेटे को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, लेकिन आपने अपने बेटे का नाम हमें नहीं बताया। और यहाँ पर एक और हमारी लिसनर थी जिनका बर्थडे था, तो आपको भी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी टीम की ओर से। यहाँ पर विश्वानी जी हमारा साथ दे रही है वाकवा से, और विश्वानी जी गाना आपकी सहेली शोभा के नाम जिनका जन्मदिन है आज, बेस्ट विशेज उनको सभी दुमन परिवारों की ओर से। शोभा जी आपको हैप्पी बर्थडे। वी हैव अनिशा जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, तो अनिशा आपको भी हैप्पी बर्थडे। और बड़े दिल वाला फिल्म का ये गाना उन सभी के नाम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर। चलिए देखते ही देखते सुहाना सफर का ये जो दो घंटे का सफर रहा ये कब शुरू हुआ और कब खत्म होने को चला पता ही नहीं चला। आप सभी का प्यार भरा साथ हमें मिला इसके लिए थैंक यू सो सो मच। जितने भी हमारे लिसनर्स रेडियो के ज़रिए हमारे MBC ऐप के ज़रिए जुड़े रहे इसके लिए थैंक यू सो मच। उन सभी फॉलोअर्स का भी शुक्रिया जो टिकटॉक के ज़रिए हमारे साथ कनेक्टेड रहे। आप सबके मैसेजेस आप सबके डेडिकेशंस फरमाइशों के लिए शुक्रिया। जाते जाते ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम हम करते हैं और इसी के साथ सुहाना सफ़र का ये जो सफ़र है ये ख़त्म होने को चला। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। रेडियो मनोरंजन पर ऐसे ही साथ देते रहिएगा। 2 बजे आप सुनेंगे समाचार और 2 बजे के समाचारों के बाद रत्ना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम उड़ान की कहानी और हम आपसे मिलने जल्द लौटेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ऐसे ही रेडियो मनोरंजन से जुड़े रहिए, साथ देते रहिए।
1: You're listening to RM3 Radio Mano.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज्यादा कीमत की मादक द्रव्य जब्त किए गए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई। 44 सड़क दुर्घटनाओं में से भी ऐसे चालक शामिल थे जिनके ड्रग टेस्ट पॉजिटिव साबित रहे। इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि देश में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई और साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई। युवाओं में तंबाकू और निकोटीन का सेवन साथ ही वेपिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 31 मई को मनाए गए विश्व तंबाकू रहित दिवस के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। इसका उद्देश्य रोकथाम प्रयासों को मजबूत करना और विशेष रूप से युवाओं में तंबाकू, निकोटीन और वेपिंग उत्पादों से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना रहा। कौतूहल मामले में सुर्खियों में बनी पिंक जंपसूट पहनी युवती को कल सेंट्रल CID में पेश किया गया। उन हिंसक घटनाओं के दो हफ्ते बाद उससे पूछताछ की गई जो उसके वकील रऊफ गुलबुल की उपस्थिति में चली। उसने अपने बयान में कहा कि उसके हाथ में तलवार नहीं थी और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही तस्वीरें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई हैं। हालांकि उसने घटनास्थल पर मौजूद होने की बात स्वीकारी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बोला कि नए वायरस से निपटने के लिए 3 नए टीके विकसित किए जा रहे हैं, जिससे अब तक लगभग 250 लोगों की मौत हो चुकी है। एक टीके पर काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव का कहना है कि इस बार एबोला का सबसे खतरनाक प्रकोप फैला है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसके संक्रमण से 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया, दीजिए नमस्कार।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: उड़ान की कहानी, उड़ान की कहानी। उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं एक नई उड़ान की कहानी को लेकर। और एक घंटे के सफर में जानेंगे एक और ऐसी सशक्त महिला की कहानी। और हर सप्ताह की तरह आज भी हमारे साथ एक ऐसी महिला जुड़ी है जिन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आज ये लंबा सफर तय किया है। और बिल्कुल हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि इस वक्त इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मनोरंजन पर सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ रेडियो मनोरंजन फेसबुक पर पेज पर भी आप इसे फॉलो कर पाएंगे। तो जरूर हमारा साथ दीजिएगा। और ये दिलचस्प कहानी, आज की कहानी है एक ऐसी महिला की कहानी, पर उनके बारे में कुछ कहने से पहले मैं जरूर ये जोड़ना चाहूंगी कि सफलता जो है वो एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। यानी हमें मेहनत करके शुरुआत करनी चाहिए और एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसा ही किया यहाँ पर प्रीति जी ने। जी हाँ, श्रीमती प्रीति रंजीत आज हमारे साथ हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी।
1: धन्यवाद।

0: सबको।
1: और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए, निमंत्रण लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रीति जी, पहले तो मैं ज़रूर आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं, और आज यहाँ पर आने से पहले, मतलब आपको प्राकृतिक चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सक बनने के लिए आपको किन किन लोगों ने प्रेरित किया?
2: सबसे प्रथम बात तो रत्ना जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी और आपके एमबीसी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने मुझे यहाँ पर बुलाई कि कुछ अपनी प्राकृतिक चिकित्सा और अपने विषय पर कुछ बात करने के लिए।
1: बिल्कुल।
2: और ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो किस किस किन किन ने मुझे यहाँ तक पहुँचाई है, सबसे प्रथम तो ये भगवान की कृपा है। दूसरी बात, मेरी माँ बाप का संस्कार, मेरी भाई बहन के साथ, मेरी पति का हर एक कदम कदम पर उसका प्यार, उनका साथ, उनका विश्वास, मेरे गुरुजनों का शिक्षा, मेरे ससुर जी का, जिन्होंने मुझे प्राकृतिक चिकित्सा सिखाया, उनके बताए हुए गाइडेंस, उनके बताए हुए हर रास्ता, मेरी तीन बेटियों हैं, उनके प्यार, उनकी सक्रिफाइस, उनकी सहारा, और मेरे जितने पेशेंट्स हैं, मेरे जो मुझसे ट्रीटमेंट लेने आते हैं
1: जी,
2: उनका भरोसा कि मैं बहुत अच्छे से इलाज करता हूँ, करती हूँ, उनके भरोसा के साथ आज मैं यहाँ पर हूँ। और इनके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि एक औरत होने के नाते, जहाँ पर चाह होते हैं वहाँ तो भगवान रास्ता बना देती है।
1: बिल्कुल सही कहा,
2: ये तो सही है। और मैं यहाँ पर और एक बात जोड़ दूँ कि मैं नेशनल मॉरिशस में प्राकृतिक चिकित्सक होने के साथ साथ इंडिया में वहाँ का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। इंडिया का जो कोऑर्डिनेटर मॉरिशस में हूँ, INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो वहाँ पर मुझे मेरे पिताजी का जो गुरु थे डॉक्टर सोहन लाल जी, उनके गुरु जो डॉक्टर भट्ट जी थे, उनका साथ मिला, डॉक्टर मुन्नत जी का साथ मिला, जो वो अब नहीं रहे, अब उनका उनकी पत्नी निर्मला जी का भी साथ मिला। और अभी जब से पिताजी नहीं रहे, अभी तक डॉक्टर आनंद बिरादर जी, वो मेरा साथ दे रहे हैं कि हर कदम कदम पर, अगर वो शायद अभी नहीं रहते तो शायद मैं किसी कोने पर पड़े रहती।
1: बिल्कुल।
2: मुझे इंटरनेशनल लेवल तक लाने के लिए मैं आनंद बिरादर जी का बहुत बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोगों ने मेरा सहायता की उन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने दिल से, अपनी आत्मा से करती हूँ।
1: बिल्कुल। और मैं समझती हूँ, जहाँ पर अपने गुरुजनों को, अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के साथ कोई भी महिला जब कदम आगे बढ़ाती है, तो अवश्य ही वो बहुत ही ज़्यादा आगे जीवन में हमेशा वो प्रगति करती है, सक्सेसफुल बनती है। और मैं समझती हूँ, परिवार का साथ, परिवार का सहयोग ही महिला को आगे बढ़ने का एक सबसे बड़ा बूस्टर डोज हम कह सकते हैं। और यहाँ पर आज हमारे साथ प्राकृतिक चिकित्सक, और बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सक, बहुत लोग सोचते हैं प्राकृतिक चिकित्सा शायद आयुर्वेद होगा, लेकिन नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा एक बिल्कुल एक अलग पद्धति है। पर आज के इस कार्यक्रम में हम ज़रूर जानेंगे प्रीति जी से, और प्रीति जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आप प्राकृतिक चिकित्सा के इस कार्य में कितने वर्षों से जुड़ी हैं?
2: पिताजी 1989 में वो इंडिया सीखने गए, वापस आए 1991 में
1: जी।
2: तो वो जब से वापस 1991 से लेकर अभी तक मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरी जो प्रेरणा जागा
1: जी,
2: कि कैसे मैं एक प्राकृतिक चिकित्सक बनूं, कि मैं बहुत सा काम, पहले से मैं बहुत काम की हूँ
1: जी,
2: खेत में काम करती थी
1: जी,
2: मेरे पति के साथ साथ
1: जी,
2: चाय की खेत थी, एक की खेत हुआ, फिर वेजिटेबल का खेत हुआ, इसके साथ साथ मैं शूटिंग भी करती थी।
1: शूटिंग यानी कैमरा?
2: हाँ, कैमरा।
1: ओहो,
2: ये बहुत सारे से की मैंने। मेरा पति भी उनका था, मेरा अलग सा था।
1: अच्छा।
2: तो कहीं ना कहीं पिताजी हमेशा कहते थे, जब वो सीख कर आए तो हमेशा मुझे कहते थे कि तू कुछ सीख। सीख तो रही थी, लेकिन कुछ अपने लिए, बस अपने ही लिए। और खेत का काम जारी था, शूटिंग का काम जारी था, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा बस अपने लिए मैं सीख रही थी। ऐसा हुआ कि 1996 में जब हुआ, पिताजी फिर

0: सीखने और गए, क्योंकि सीखना ये ख़त्म नहीं होती है,
1: सही बात है,
0: हमेशा सीखना ही पड़ता है। और जब जब जब हम स्वास्थ्य के बारे में कहते हैं तो हमेशा सीखना ही चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: फ्रेश रिफ्रेशमेंट,
1: अपग्रेड करते रहना चाहिए,
0: हाँ हमेशा करना चाहिए। तो जब वो 1996 में वापस आए फिर से, तो देखा कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं कहा मैं ठीक नहीं हूँ, वो बस मुझे देख कर कहा कि तू ठीक नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन लिख कर टेबल पर रख देता हूँ, वहाँ पर मुझे
1: जवाब
0: दे देना फिर सवेरे सवेरे, क्योंकि मैं बहू थी, क्या क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे। और मैं जवाब भी नहीं दे पाती। तो जो सवाल 10, 11, 12, 13 सवाल ऐसे लिख करके सबका सवाल जवाब लिख कर टेबल पर रख दी, सवेरे दरवाजे 5 बजे ठक ठक आए, उठो राजेश, उठो प्रीति का इलाज करना है, वो ठीक नहीं है।
1: राजेश कौन है?
0: राजेश मेरा पति।
1: अच्छा,
0: हाँ। मैंने सोचा क्यों वो मेरा पति को बोल रहे हैं, तो चलो उठो चलो। 7 दिन लगातार पिताजी ने मेरा इलाज किया, ठीक हो गई मैं, मुझे विश्वास हो गया। क्योंकि जब पिताजी कहते थे 5 तत्व का वो सीकर आए हैं, तो मैं एक दो चीज करती थी, लेकिन सब बीमारियों का इलाज कैसे करेंगे प्रकृति से?
1: सही बात।
0: प्रकृति मतलब 5 तत्व, आकाश, धूप, हवा, पानी और मिट्टी। तो मैं भी ये सवाल अपने आप से कर रही थी, कैसे ठीक होंगे लोग इससे, फिर भी कुछ नहीं कहती थी। लेकिन जब पिताजी ने सिखाने लगे, जब सीखने लगी मैं, तब मुझे पता चला कैसे लोग इससे ठीक होते हैं। और मुझे बताया गया, पिताजी ने बताया, देखो जब विश्व बना है 5 तत्व से, शरीर भी बने हैं 5 तत्व से,
1: बिल्कुल,
0: तो जब बीमार एक इंसान बीमार हो जाते हैं, इसका मतलब है ये 5 तत्व का कमी हो गई है शरीर में, इसीलिए वो बीमार हो रहे हैं।
1: सही बात,
0: 5 तत्व का कमी होने से बीमार हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने सीखा, 2002 में मेरी तीसरी बच्ची हुई। पिताजी ने कहा देखो आज से काम खेत का काम बंद, अब तू एग्जाम्स देने जाएंगी इंडिया। मैंने कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, राजेश भी जाएंगे, वो भी सीख रहे थे मेरे साथ साथ, वो भी जाएंगे। अच्छा चलो वो भी जाएंगे, हम दोनों गए इंडिया। यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि भगवान मेरा साथ दिया, 3 बच्चों को छोड़कर जाना मेरे लिए असंभव था,
1: बहुत ज़्यादा मुश्किल,
0: बहुत मुश्किल। पिताजी ने कहा, मैंने कहा पिताजी 3 बच्चियाँ हैं, एक था छोटी वाली थी 16 मंथ्स की, दूसरी वाली थी 6 इयर्स की, बड़ी वाली थी 11 इयर्स की, ने छोड़ कर जाना।
1: वो क्रूशियल पीरियड मैं समझती हूँ, क्योंकि एक तो उनका
0: स्कूल,
1: हाँ स्कूल, हाँ। और उस टाइम तो सीपीई का एग्जाम वगैरह, हाँ, सारा
0: सब कुछ,
1: कुछ
0: साथ में,
1: बिल्कुल।
0: तो पिताजी ने कहा देखो फिक्र मत करो, जब उनका जो हॉलीडे होगा तब चलेंगे। तो पत्र लिखा गया वहाँ इंडिया कि हम लोग आ रहे हैं, इतनी इस मन में आएंगे, तो प्रीति और मेरा जो बेटा है वो उनका एग्जाम्स होगा, एग्जाम के लिए जा रहे हैं। और हॉस्पिटल में 2-3 जगह में, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम्स बस काफ़ी नहीं होते हैं एक डॉक्टर बनने के लिए,
1: बिल्कुल,
0: बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ काम करना पड़ता है, कि देखते हैं कि आप पेशेंट के साथ
1: कैसे हैंडल करते हैं,
0: कैसे हैंडल कर रहे हो, कि अच्छा से हैंडल कर रहे हो, कि प्रेस्क्रिप्शन कैसे लिख रहे हो, इलाज बताया आपने लिखना चाहिए कि इन इनका इलाज कैसे कैसे करना है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो उन लोगों के साथ काम करना भी पड़ रहा था। तो वहाँ से पत्र फिर से वापस आया, और उस समय कैसे अभी वो व्हाट्सएप है कि
1: इंटरनेट है, सही बात,
0: ये सब तो नहीं
1: उस जमाने में नहीं था,
0: नहीं था, बहुत मुश्किल बात हो गई थी, बहुत मुश्किल थी। अब पत्र 4-5 महीने पहले लिखना चाहिए, फिर 2-3 महीने बाद मिलेंगे आपको,
1: हाँ, बिल्कुल सही बात, हा? सही बात।
0: तो ऐसे करके पिताजी ने कहा चलो अब नवंबर आया, चलो इंडिया चलेंगे, काम करके पैसे जुटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 लोग जा रहे हैं हम इंडिया,
1: सही बात।
0: गए, सीखा, बच्चे को इस हॉस्पिटल में जहाँ पर सीख रही थी वहीं पर रखा, वो इंदौर में थे गुरुजी सोहन लाल जी के यहाँ, और कुछ दिन रतलाम भी डॉक्टर मुनत जी के यहाँ थी मैं। तो हमने सीखा, एक्सपीरियंस भी वही लिया, और वापस मॉरिशस 2003 में जनवरी

0: रनफ्री मेमोरिसस काम चालू हुआ, लेकिन यहाँ पर भी मुश्किल था। पिताजी तो रास्ता बना दिए थे
1: जी,
0: कि जब वो सीख कर आए थे, कैसे किया उन्होंने सीख कर आया, जैसे मैं बोल रही हूँ, व्हाट्सएप नहीं था,
1: इंटरनेट नहीं था उस टाइम, और उस टाइम लोगों को ये बताना, ये जताना कि क्या तो शुरू किया है।
0: उस समय पिताजी घर घर जाकर, घर घर जाकर ये प्रकृति चिकित्सा पर बात करते थे
1: जी।
0: हाँ,
1: लोगों को मतलब उनको, हाँ, और उनको अवगत कराते थे।
0: हाँ, प्रोत्साहन उनका। हाँ, तो घर घर जाकर उन्हें बताते थे कि ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे होता है, मिट्टी से इसका इलाज होता है, पानी से इसका ऐसा इलाज होता है, हवा से कैसे इलाज होता है। कि जब जब वो बात करते थे कि आकाश तत्व, तो लोग कहते थे पंडित जी, पिताजी पंडित थे।
1: हाँ,
0: तो वो जब जहाँ जहाँ हवन करने जाते थे तो ये बात करते थे, शादी करवाने तब भी बात वो चिकित्सा ही पर बात करते थे ज़्यादातर उसका। तो बोलते थे पंडित जी ये क्या है, आकाश तत्व से कैसे इलाज किया जाता है। तो मैं भी तो यही सवाल करती थी पिताजी से ना
1: जी।
0: तो मेरे लिए तो पिताजी जब जवाब दे दिया तो मेरे भी यही था, जब भी पेशेंट आते थे उनको ये बताती थी कि हाँ होता है इलाज इससे और ठीक भी हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही। हाँ,
0: तो धीरे धीरे करके मैं
1: आज आज यहाँ पर आप पहुँचे।
0: मैं पहुँची हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो कहानी आप बता रही हैं, जिस तरह से आप बता रही हैं, मेरे आंखों के सामने मतलब एक जैसे चलचित्र चल रहा है, एक पिक्चर चल रही है। हाँ, कि आपने किस तरह से शुरुआत की, किस तरह से, यानी बेसिकली आपने जैसे यहाँ पर भी आपके गुरु थे, आपके ससुर जी जैसे आपने बताया, जिनको आप पिताजी कह रही हैं, और साथ ही साथ भारत जाकर भी आपने यहाँ ये पद्धति को सीखा और साथ ही साथ आपने यहाँ पर शुरू की। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी प्रीति जी, जब आपने यहाँ पर शुरुआत की तो जैसे आपके ससुर जी तो घर घर जाके लोगों को बताते थे, फिर आपके लिए कौन सी मुसीबतें खड़ी हुई शुरू शुरू में जब आपने शुरू किया?
0: शुरू शुरू में मैं किसी के घर नहीं जाती थी। मैं पेशेंट को आने देती थी यहाँ पर
1: जी।
0: हमारे एक क्लिनिक था, वो क्यूपिप में थी
1: जी।
0: है अभी अभी मैं क्यूपिप लाहकुआ में हूँ, लेकिन पहले वो सिकन सुपर मार्केट के पास में था।
1: अच्छा,
0: तो मैं वहाँ पर काम करती थी, तो उन लोगों के बताने के लिए तो कुछ मुश्किल था कि पानी पीकर ऐसे इलाज करना चाहिए। तो धीरे धीरे होता क्या है, जब हम कहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है।
1: सही बात।
0: पेशेंट के लिए भी मुश्किल।
1: सही बात।
0: लेकिन जब जो पेशेंट जो हमारे जो मरीज हैं, वो जाकर दूसरों को बताती है
1: कि उनका ठीक हुआ।
0: हाँ, तो लोग उनको सुनकर,
1: हाँ, उनको जैसे विश्वास हुआ कि ये बीमार थे और ये पद्धति से वे ठीक हो गए, तब जाकर उनको विश्वास होता है कि भाई उन्होंने ट्राई किया हुआ है। क्योंकि मैं समझती हूँ आज के समय में जब तक कोई मतलब आपके सामने कोई ऐसा ठोस आपके सामने वो प्रूफ ना मिले कि हाँ भाई ये ठीक हो चुके हैं, तब तक विश्वास नहीं बैठता। और जैसे हम कहते हैं ना, आज के ज़माने में तो हम रिव्यूज़ पढ़ते हैं कि भाई रिव्यूज़ देख लो पहले कि आपको कितने स्टार्स मिले हैं या कितने लोगों ने आपके बारे में अच्छा लिखा है, तब जाकर हम विश्वास करेंगे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। वैसे प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में मैं भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, इसीलिए हम ये ज़रूर कहेंगे कि प्रकृति जो है वो माँ के समान है, हम उसको माँ मानते हैं, और माता प्रकृति, माता धरती जो है वो जो हमें देती है उसी से अगर हम अपना इलाज करें तो बिल्कुल हमारा इलाज थोड़ा देर से होता है लेकिन होता ज़रूर है। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी प्रीति जी, हमारे श्रोता भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है इसमें कौन कौन सी पद्धति का समावेश आप करती हैं?
0: जैसे मैंने बताई ये जो पांच तत्व हैं, आकाश तत्व, पांच तत्व तो मैंने बता दिया
1: जी जी।
0: अब कैसे होता है ये, ये बताऊंगी आपको।
1: हाँ जी।
0: ज़्यादातर हम इस पांच तत्व में ज़्यादातर हम पानी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा,
0: ये भी पिताजी के बताए हुए हैं।
1: हाँ,
0: देखो ये जो हमारा विश्व बना है
1: जी,
0: भगवान ने बना दिया है विश्व गोल।
1: हाँ,
0: लेकिन पानी पर चल रहा है वो। तो
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल
0: पानी पर चल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: कि भगवान ने हमें इतनी पानी दे दिया है, इतनी पानी दे दिया है कि आप अपना इलाज कर सकते हो इतनी पानी,
1: केवल पानी से,
0: केवल पानी से।
1: ओहो,
0: ये तो और चार अलग सी हैं, लेकिन ज्यादातर हम इलाज पानी से करते हैं।
1: अच्छा, पानी से। मतलब आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर किसी को मतलब कोई ऐसी बीमारी है जो आपने पानी से ठीक की है?
0: बहुत ऐसी है, किसी की साइनस हो गया आपको,
1: हाँ,
0: नाक से पानी खींच कर फेंकना है बस।
1: अच्छा, मतलब उसमें से

0: निकालना है क्योंकि पानी ज्यादा है, खींच
1: कर नाक से,
0: हाँ
1: उसमें मेल,
0: हाँ
1: बीमारी का मतलब क्या होता है
0: जी
1: कि ज्यादा दिनों से शरीर में मैल जमा होने का नाम है बीमारी,
0: टॉक्सिन। बिल्कुल,
1: अब इसे निकालना क्या कैसे है, पानी से, यही पोषक तत्व से
0: साफ कर दो, जैसे कपड़े मैले हुए कपड़ों को धो दो तो वो साफ हो जाते हैं, उसी तरह से शरीर को साफ करना है,
1: ऐसे इसे ही, लेकिन माध्यम जानना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: माध्यम कैसे, जिस सिर्फ माध्यम जानना चाहिए, हम उसी माध्यम से मैल निकालते हैं जिस माध्यम से मैल निकलता है हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में, क्योंकि काटा नहीं जाता है इस प्राकृतिक चिकित्सा में, तो जिस माध्यम से मैल निकलता है, जैसे नाक से, मुंह से, कान से, मूत्र द्वार से,
0: छिद्र है,
1: जितने छेद हैं सब छेद से पानी मैल निकालना,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसी छेद से तो पानी निकलता है,
0: सही,
1: तो हम उसी माध्यम से निकालते भी मैल।
0: और जैसे आज तक आपने कौन कौन से बीमारियों को ठीक किया है प्रीति?
1: बहुत बीमारियों,
0: उदाहरण दे सकते हैं,
1: बहुत, डायबिटीज, शुगर ज्यादा होता, किसी को कम भी हो जाता है, पेशेंट हो आते हैं पेन, कमर दर्द, घुटने का दर्द, साइनस, माइग्रेन, वो स्किन
0: प्रॉब्लम्स, ओहो
1: बहुत है स्किन अभी तो मॉरिशस में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम जैसे यहाँ पर ट्रॉपिकल आइलैंड में रहते हैं और यहाँ बहुत ट्रॉपिकल आइलैंड पर कहते हैं ना कि वायरल इन्फेक्शन के वजह से स्किन डिजीज का भी बहुत ज़्यादा ये बहुत, रहता है प्रकोप, हाँ, रहता है, तो ऐसी बीमारियों को भी आपने ठीक किया है,
1: बहुत ठीक किया। तो जो बीमारियाँ क्यों होता है मैंने कह दिया, और जब एक किसी जब किसी को बीमार जब किसी बीमार पर कोई बीमार पड़ जाता है
0: जी,
1: तो अगर आप अपनी खाने पीने के जो शैली है अगर ये बदल देंगे, क्योंकि क्यों बीमार है, मैल तो जमा हुआ है, एक,
0: हाँ,
1: दूसरे वही खाना खा रहे हो जो पहले खाते थे,
0: मतलब मैल जमा होते ही जा रहा है,
1: हाँ निकल नहीं रहा है बिल्कुल शरीर से, लेकिन अगर आप वो अपनी शैली खाने पीने का शैली बदल देंगे
0: जी,
1: तो बीमारी ठीक होने लगता है।
0: मतलब बहुत सिंपल टेक्निक, बहुत सिंपल इक्वेशन है कि हमारा जो खाने पीने का तरीका है, हमारी जो जीवन शैली है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है और इसी कारण हमारे शरीर में मैल जमा होते जा रहा है, और इसको निकालने के बजाय हम उसे और जमा करते जा रहे हैं, जिसके कारण हमारा शरीर धीरे धीरे करते हुए बीमार पड़ने लगता है,
1: बीमार पड़ने लगता है, और धीरे धीरे बीमार ज्यादा बीमार होने लगता है।
0: बिल्कुल, वो मतलब बीमारी उसको ठीक करने के बजाय हम उसे और बीमार
1: कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और
1: एक बीमार से 10 बीमार से पैदा हो रहा है।
0: सही बात, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी है, जैसे डायबिटीज को ही हम ले लें, तो डायबिटीज तो हम कहते हैं ना कि सभी बीमारियों की माँ है, जड़ है, क्योंकि उसके आने से तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, और उसको ठीक करने के बजाय हम उसको और बिगाड़ते चले जाते हैं। कई बार हमारी ही लापरवाही की वजह से, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, और जैसे रंजीत जी बता रही हैं, प्रीति जी बता रही हैं हमें कि देखा जाए तो इन सारी चीजों की जानकारी ही हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत जरूरी है, और प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो अब तक ठीक हो चुकी हैं, और जैसे पूरे दावे के साथ वे कह रही हैं। चलिए जानेंगे और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, और बिल्कुल आज की उड़ान की कहानी है प्रीति जी की कहानी, प्रीति जी जो खुद एक प्राकृतिक चिकित्सक है। वैसे आपको ये भी बताते चले, इस वक्त हमारे साथ तकनीक पर हमारा साथ दे रहे हैं शिव जी, साथ ही साथ रितेश मोहबिया हमारे प्रोड्यूसर, और हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुसा हमारे साथ बनी हुई है। बिल्कुल आप भी हमारा साथ दीजिए, रेडियो मनोरंजन पर इसका सीधा प्रसारण, और रेडियो मनोरंजन फेसबुक पेज पर आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। आते हैं गीत के ब्रेक के बाद उड़ान की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए।

की कहानी उड़ान की कहानी जी हाँ उड़ान की कहानी। और आज हमारे साथ है प्रीति जी जो कि एक प्राकृतिक चिकित्सक है और कई वर्षों से इस कार्य के साथ जुड़ी हैं। और जैसे हमें प्रीति जी ने अभी भी समझाया कि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है इसमें ऑपरेशन नहीं होता, इसमें दवाइयाँ भी नहीं होती, बस एक ऐसी पद्धति जो प्रकृति के साथ हमें जोड़ती है। जैसे उन्होंने कहा कि इस ट्रीटमेंट में पानी का उपयोग किया जाता है और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर इलाज किया जाता है, पर क्या ये उनके लिए आसान था शुरुआत में? आइए जानते हैं प्रीति जी से। प्रीति जी, जब आपने शुरू किया था तो क्या आपको मरीज मिलते थे या फिर आपको लोगों को कन्विंस

0: गोली ले लिया, अब दवा का दूसरा नाम है दबा देना, बीमारी को दबा दे देते हैं घर पे।
1: सही बोला आपने।
0: तो ये तो धीरे धीरे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं शरीर में, एक से लेकर 10 बीमारी को उन्होंने दबा के रखा है। अब जब आते हैं हमारे यहाँ तो हम कहते हैं 10 दिन में कुछ हल्का महसूस करेंगे, 10 दिन में। तो कहते इतने दिन,
1: तो मतलब उनको तुरंत असर चाहिए।
0: हाँ, तो कितने साल से आप दवाई ले रहे हो? 10 साल से। 10 साल से दवा ले रहे हो, 10 दिन। अभी तो मुझे चिकित्सा करने पड़ेगी आपके साथ। पहला तो आपका जो साइड इफेक्ट है दवा का, उनका इलाज करना पड़ेगा मुझे।
1: ओहो,
0: क्योंकि पता नहीं कितनी 10 साल की दवा पिए हुई दवा, उनका साइड इफेक्ट निकालना पड़ेगा।
1: सही,
0: एक
1: सही।
0: दूसरी बात, आपका जो बीमार है उसका इलाज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे एक दिन में? ये बीमारी धीरे धीरे शरीर में जमा होता है, एक दिन की चीज नहीं है।
1: सही बात।
0: सालों
1: से जमा हुआ है,
0: सालों से जमा हुआ, मैं एक दिन में इसे साफ नहीं कर पाऊंगी। तो धीरे धीरे करके इसे ऐसे करके बात करते ही कभी नाराज भी होकर चले जाते हैं, फिर से 2-3 दिन के बाद फिर घूम कर आती थी ऐसे। और ये जो मेरी पिताजी तो करते ही थे, वो हर घर जगह जगह घर घर शहर शहर गांव गांव जाकर इसका प्रसारण करते थे, लेकिन मैं भी इसका प्रसारण कम्युनिटी सेंटरों में, जहाँ पर एसोसिएशन होते हैं वुमेन्स एसोसिएशन, वहाँ पर जाती हूँ, कम्युनिटी सेंटर में जाती हूँ। आज MBC भी चली आई हूँ।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो पहले भी बहुत साल पहले मैं आई हुई थी MBC में।
1: हाँ जी।
0: हाँ, तो ऐसे ऐसे करके मैं अपनी जो जितने भी लोग हैं उनको प्रोत्साहन करती हूँ कि ये प्राकृतिक चिकित्सा, ये एक ऐसी चिकित्सा है जो खुद डॉक्टर बनने का चिकित्सा है।
1: मतलब हमारा जो स्वास्थ्य है वो आपके हाथों में,
0: आपके हाथ में है। आप सीखो, माध्यम सीखो मुझसे, खुद करना घर पे, खुद अपना डॉक्टर बनो, बी योर डॉक्टर। हमारा दूसरा, हमारा ये स्लोगन है कि बी योर डॉक्टर। और दूसरा स्लोगन यह है हमारा कि हमारा घर हमारे हॉस्पिटल है, हमारा जो किचन है, हमारा रसोई घर जो है, हमारा फार्मेसी है, और जो हमारे खाना है वो ही हमारा दवा है।
1: ओहो, मतलब बहुत ही गहरी बात आपने कह दी कि हमारा जो घर, हमारा जो किचन है, वहां पर जितनी भी चीजें अवेलेबल है
0: सब दवा,
1: सारी दवाइयां,
0: सब दवाइयां।
1: मतलब उसको दवाई के आपको अनुरूप लेना है, उसके अनुकूल, उसके जैसे आप, जैसे हम कहते हैं ना हल्दी वाला दूध, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाए तो हल्दी वाला दूध दादी पिलाती थी, या फिर हमको सर्दी खांसी हो जाए तो अदरक है हल्दी है, लेमन है, ये सारी चीजें,
0: ये सब चीजें प्रयोग करना, जानना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और कुछ भी एक्सेस लेने से बीमारी पैदा करने का
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ भी एक्सेस नहीं लेना है। खाने पीने का भी कुछ भी एक्सेस नहीं लेना है, और जो भी लेना है अच्छी चीजें लेना है। कम खाओ मगर अच्छी चीजें खाओ।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसको जैसे मॉडरेशन
0: में लो तो दवा के रूप हो जाता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: दवा
1: सही
0: के रूप, और हमारे शरीर में वो दवा के रूप।
1: तो
0: में
1: मैं ये पूछना चाहूंगी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बी योर ओन डॉक्टर।
0: यस।
1: कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन मतलब जैसे मन मर्जी हम अपनी दवाइयां खाते हैं, और आप जैसे बता रही हैं कि मॉडरेशन में सारी चीजों का।
0: हाँ जी, देखिए जे अच्छा इंसान वही होते हैं जो अपने जीभ को अपने बस में रखती है।
1: ओहो, बहुत ही बड़ी बात कह दी। मतलब अपनी आपकी जबान भी एक तरह से देखा जाए तो ये सारी चीजों का कहते ना मुसीबत की जड़
0: है।
1: हाँ जी,
0: जीभ को कभी भी कि मुझे मन है ये खाने का, मुझे मन है ये पीने का, जीभ मांग रहा है दे दो, यही तो सबसे
1: वो शरीर के लिए फिर बहुत मुश्किल,
0: बहुत खतरनाक चीज है।
1: सही बात।
0: तो जीभ और आपका जो मन,
1: हाँ
0: ये मन जो होता है

0: इसे अपने बस में रखना
1: चाहिए, काबू में रखना है।
0: अपने काबू में रखने से सब कुछ ठीक
1: हो, मतलब आपको आपके ऊपर एक नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और आपको ये मेंटली आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है कि क्या आपके सेहत के लिए अच्छा है, क्या नुकसान कर सकता है। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ प्रीति जी बहुत बड़ी बात आपने कही है, पर यही तो एक सबसे बड़ी जड़ है कि हम अपना न जबान पे काबू रख पाते हैं न मन पे काबू रख पाते हैं, और इसीलिए हम बेकाबू होते चले जाते हैं। और जब तक हम काबू लेना चाहते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी हो जी। और बिल्कुल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी प्रीति जी कि जब हम पद्धति की बात करते हैं, जब हम चिकित्सा की बात करते हैं, तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा में कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं?
0: प्राकृतिक चिकित्सा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि शरीर जब बना है इस तत्व से,
1: बिल्कुल
0: उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है।
1: लेकिन जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि जब डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो कई बार आपने जैसे कहा ना कि जिस बिल्कुल जो हमारा मैल है शरीर का वो छिद्र के द्वारा ही बाहर निकलेगा।
0: देखो, जब मैल जमा होने से आपको इतनी परेशानी हो रही है भीतर,
1: हाँ,
0: दुख रहा है, बीमारी पे बीमारी होते जा रहा है,
1: बिल्कुल
0: है, तो उसे निकालने में क्या फर्क, क्या आपको डर लगना चाहिए? डरो ये कि मैल भीतर रहने से ये आपको
1: और आपको बीमार शरीर खोखला कर रहा,
0: हाँ,
1: है। बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये तो
1: क्योंकि कई सारे लोग जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो मैंने सुना है कि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है,
0: हाँ,
1: या फिर बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने शुरू हो जाती है, या तो फिर डायरिया जैसे हो जाता है, पेट साफ होना शुरू हो जाता है, तो क्या
0: यही सफाई तो मैं कह रही हूँ, यही सफाई है इलाज।
1: हाँ, मतलब ये डिटॉक्स हो रहा है,
0: डिटॉक्स हो रहा है, मैल निकल रहा है। जब मैल भीतर रहता है तब डेंजर है,
1: हाँ,
0: तब आपको फिकर करना है कि अब क्या करेंगे। हाँ, मैल
1: मतलब
0: तो
1: ये सब जब हो रहा है, ये क्लेंजिंग हो रहा है, तो ये डरने वाली बात नहीं है।
0: जब वो भीतर रहेगा तब डरने वाली बात होती है।
1: तो क्या आपके साथ जो पेशेंट्स जुड़ते हैं, क्या आप उनका काउंसलिंग भी करती हैं?
0: काउंसलिंग बहुत करती हूँ।
1: हाँ हाँ, काउंसलिंग मेंटली मैं समझती हूँ उनको तैयार करना।
0: तैयार,
1: हाँ,
0: एक तो इलाज देने से पहले तैयार करती हूँ
1: जी,
0: दूसरी जब इलाज हो जाता है फिर से उन्हें तैयार करती हूँ कि फिर जाकर घरे,
1: हाँ,
0: घर पर जाकर जो मन करे वो मत खाना,
1: हाँ,
0: क्योंकि फिर बीमार हो जाओगे।
1: बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि तो, आपने जो क्लेंजिंग किया है, साफ किया है, अब उसे फिर गंदा नहीं करना है।
0: नहीं करना है,
1: सही बात,
0: बार बार क्लेंजिंग करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये तो,
1: और ये क्लेंजिंग प्रोसेस मान लीजिए एक कोई व्यक्ति आता है जिनको एक नॉर्मल बहुत क्रिटिकल बीमारी नहीं है, तो क्या उनको भी डिटॉक्स किया जाता है?
0: इसका उनका इलाज धीरे धीरे करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ, क्योंकि वो बहुत कमजोर हो गए ना,
1: हाँ हाँ,
0: तो उनका धीरे धीरे करना चाहिए।
1: अच्छा, मतलब जो क्रिटिकल होते हैं उनको बहुत धीरे धीरे से उनको करना,
0: धीरे धीरे से करना है।
1: अच्छा,
0: हो जाता है वो,
1: हाँ, हाँ।
0: देखो जो हमारी इंद्रियों है भीतर,
1: हाँ,
0: वो वन बाय वन कनेक्टेड है सब।
1: बिल्कुल,
0: धीरे धीरे उन्हें उनका इलाज धीरे धीरे करना,
1: सही बात,
0: पड़ता
1: सही
0: है।
1: बात, हाँ। और प्राकृतिक चिकित्सा एलोपैथी से कम्प्लीटली विपरीत है,
0: डिफरेंट है।
1: तो, और इसका जो ट्रीटमेंट का है वो हो सकता है कि समय लगे,
0: थोड़ा समय लगता है लेकिन ठीक हो जाते हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और जड़ से बीमारी ठीक होती है,
0: जड़ से ठीक होता है, और डर नहीं रहता है कि दवा लिया है दूसरी अभी फिर से दूसरी पता नहीं क्या हो गया भीतर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब
0: अलग से कौन सा बीमारी भी फिर पैदा होंगी,
1: मतलब उसका कोई रिएक्शन नहीं है, कोई भी, मतलब आप आराम से बेफिकर से आप ले सकते हो, मतलब आपके शरीर पर इसका कोई भी
0: साइड इफेक्ट
1: नहीं होता है। प्राकृतिक चिकित्सा का यही एक सबसे बड़ा फायदा है। और प्रकृति, जब हम कहते हैं हम प्रकृति की ओर, मदर नेचर जिसे हम माँ कहते हैं, और माँ के आंचल में कहते हैं ना कि बिल्कुल बच्चे को पूरी तरह से वार्मथ मिलती है, पूरी तरह से उसे ठीक करने का, जैसे आप देखते हैं कि धीरे ही धीरे वो इंसान जो है वो ठीक होने लगता है, पर उसके लिए बिल्कुल बहुत धैर्य चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए। और जैसे प्रीति जी ने बताया कि मन पर, जबान पर बहुत ज़्यादा काबू, नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर ये चिकित्सा पद्धति जो है वो पूरी तरह से आपके शरीर पर काम करती है। और मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते जैसे चैलेंजेस हम लाइफ में फेस करते हैं, तो आप एक काम भी करती हैं साथ ही साथ घर भी संभाल

0: करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, तो ये सब सभी में आप बैलेंस कैसे करती हैं, मेंटेन कैसे, संतुलन कैसे बैलेंस करती हैं?
1: देखिए रत्ना जी, पहले जो मैं काम करती थी खेत में,
0: हाँ,
1: एक की खेत, चाय की खेत, सब्जी की खेत,
0: बिल्कुल,
1: फिर से दौड़ी

0: सैटरडे को, संडे सैटरडे मंडे को शूटिंग.
1: हाँ बिल्कुल, शादी का समय होता है.
0: हाँ,
1: तो
0: शूटिंग पे. तो मैंने अपने आप को ऐसे किया है कि जब मैं खेत जा रही हूँ सिर्फ खेत को देखूँ, और जब मैं प्रकृति सीख रही हूँ घर पे ससुर जी से तो सिर्फ प्रकृति चिकित्सा सीखूँ, कि मैं स्कूल जा रही हूँ प्रेसिडेंट के नाते तो प्रेसिडेंट वहाँ उनका काम निपटाऊँ,
1: बिल्कुल
0: घर पे आया तो घर का काम निपटाऊँ, घर का काम निपटा दिया तो बच्चों को उसका होमवर्क करना है तो उनके साथ रहूँ,
1: तब उनके साथ मम्मी बनकर.
0: तो मैंने अपने आप को ऐसे ढाल दिया इस सब चीज़ों में कि जहाँ का हूँ जैसे जाती हूँ वहाँ पर मैं अपने आप को वहीं पर ढाल देती हूँ.
1: मतलब आप उसी में फोकस रखती
0: हैं. बस ना कि भाई खेत में हूँ तो अभी सोचूंगी कि
1: अभी घर का सोचूंगी.
0: नहीं नहीं ना, ना.
1: कई बार ऐसा होता है
0: होता
1: कि
0: है.
1: हम यहाँ काम कर रहे हैं पर बैठे बैठे सोचते हैं कि घर पर अब खाना क्या बनाना है, घर पर बच्चे क्या कर रहे होंगे, और जब घर पर होते हैं तो सोचते हैं कि खेत में अब क्या बोना है. मतलब
0: तो इसे इसे करके मैं अपने आप को मेंटेन बहुत जगह पर मैं
1: हाँ.
0: कम्युनिटी सेंटर में प्रेसिडेंट थी, स्कूल में प्रेसिडेंट थी, सोशल वेलफेयर में वहाँ का एक वाइस प्रेसिडेंट थी, एक मेंबर थी वहाँ. अभी मैं हूँ, अभी प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पर, एल्डरली वॉच का एक प्रेसिडेंट हूँ वहाँ, वक्वा फिनिक्स का वहाँ का प्रेसिडेंट अभी तक हूँ. इतनी सालों से ये चल रहा है. तो मैं अपनी अपनी जहाँ जहाँ पर जाती हूँ सिर्फ जाने से पहले मुझे पता हो जाना चाहिए कि वहाँ मीटिंग में क्या चलने वाला है.
1: सही
0: बस है. देख लेती हूँ, बस
1: मेंटली आप अपने आप को
0: प्रिपेयर कर लेती हूँ जाकर बस. और वो भी प्रेसिडेंट के रूप में मैं जाती हूँ, प्रेसिडेंट हूँ तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था.
1: बिल्कुल सही.
0: तो जहाँ मैं जाती थी उस समय मैं अपने आप को उसी में ढाल देती थी.
1: तो ये मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि जब एक महिला काम करती है जिस क्षेत्र में वे हैं पूरा फोकस उस पर रखे, क्योंकि मैं समझती हूँ ये बहुत जरूरी भी है.
0: और एक बात है यहाँ पर,
1: हाँ
0: मेरे जो पति है राजेश जी,
1: हाँ
0: वो मेरे साथ बहुत दी थी अभी तलक हर कदम कदम पे, कि अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ चल कर मुझे छोड़ो वहाँ,
1: हाँ
0: मुझे जाना है
1: जी,
0: फिर आप वापस चले आना क्योंकि बच्चे को लेना है.
1: बिल्कुल.
0: तो वो
1: मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप दोनों का साथ, दोनों का सहयोग बहुत ही जरूरी
0: हाँ.
1: है.
0: क्योंकि वो मुझे छोड़ देते थे कि तू अपने काम वहाँ लिपटा, मैं बच्चों को यहाँ, तो मैं बेफिक्र रहती थी, बेफिक्र अपने काम कर लेते.
1: बिल्कुल,
0: यानी काम अच्छे से निभा
1: लेती थी. बिल्कुल, वही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक महिला के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि घर पर अगर पति साथ दे रहे हैं, परिवार साथ दे रहे हैं, तो वो बहुत ही ऊंची उड़ान भर सकती है. और जैसी प्रीति जी ने उड़ान भरी है, ये हमारे समाज में ऐसी कई सारी महिलाएँ हैं जो उड़ान भरती हैं, और सच में देखा जाए तो आज उनका सहयोग सराहनीय है. चलिए लेते हैं एक गीत का ब्रेक, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में उड़ान की कहानी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए. आज हमारे साथ प्रीति रंजीत जुड़ी हुई है जो कि एक प्राकृतिक चिकित्सक है.

0: की कहानी उड़ान की कहानी जी हाँ उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर। और आज इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमें सहयोग मिल रहा है डोमिनिक का, जो इस वक्त तकनीक पर हमारे साथ है। उरुसा हमारे साथ है, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रोड्यूसर है रितेश मोहाबिया। बिल्कुल इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रेडियो मनोरंजन पर और फेसबुक पेज पर आप इसे फॉलो कर पा रहे हैं। और आज हमारे साथ है श्रीमती प्रीति रंजीत, जो कि एक प्राकृतिक चिकित्सक है। चलिए जानते हैं, अगर कोई प्राकृतिक चिकित्सक बनना चाहता है या सीखना चाहता है तो क्या वे उनको सिखाती हैं? प्रीति जी, हम ज़रूर पूछना चाहेंगे कि अगर कोई प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जानना चाहता है या सीखना चाहता है तो क्या आपके यहाँ ये भी अवेलेबल है, कोई सीखना चाहे तो?
1: देखिए रत्ना जी, जब वो इलाज करने आती है
0: जी,
1: तो वो तो सीखने ही आती है।
0: बिल्कुल सही,
1: यही तो सीखने आती है
0: जी,
1: कि 5 दिन या 10 दिन लगातार हमारे यहाँ सीखने ही आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो खुद के लिए सीख रहे हैं।
0: सही,
1: लेकिन अगर वो डॉक्टर बनना चाहती हैं तो वो अलग सी बात है।
0: यस, मतलब पर्सनली अगर उसका आप जानना चाहते हो या अपने लिए आप कुछ सीखना चाहते हो
1: ये तो सीखते हैं।
0: बिल्कुल, वो आप सिखाती हैं,
1: वो सिखाती
0: है। लेकिन अगर डॉक्टर लेवल का आपको सीखना
1: वो
0: है,
1: इंडिया जाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल, तो आप उनको क्या गाइड कर सकती हैं?
1: कर सकती हैं, क्यों नहीं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: जरूर करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं यही पूछना चाहती थी। और अगर मतलब मान लीजिए कोई बीमार नहीं भी है और वो आपके पास आकर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो क्या उसका कोई क्राइटेरिया है?
1: ये प्रिवेंशन, इसका बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
0: बिल्कुल,
1: जो भी बीमार नहीं है वो आते हैं अपने प्रिवेंट के लिए।
0: बिल्कुल,
1: तो उन्हें मैं गाइडेंस बताती हूँ कि अगर सीखना चाहते हो तो 5 दिन सीख लो, फिर हमेशा करना अपने घर पे।
0: बिल्कुल,
1: तो

0: आप तो अपने खुद का डॉक्टर बन गए यहाँ पर।
1: सही बात है, सही बात है।
0: जो बीमार नहीं है वो तो कभी नहीं बीमार हो गए, क्योंकि हमेशा अपने अपनी खुद का इलाज, अपनी खुद डिटॉक्सिफिकेशन कर रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आते हैं, बहुत लोग आते हैं जो ठीक है
1: जी जी,
0: वो सीखने आते हैं और खुद ब खुद घर पे अपना,
1: मतलब अपना इलाज करते हैं और हेल्दी रहते हैं। और क्योंकि कई बार होता है कि हमें कोई ऐसा गाइडेंस मिले, कोई गाइडलाइन मिले कि जो हमें समझा सके कि हमें किस तरह से इस पद्धति का उपयोग करना है, क्योंकि इसका उपयोग भी सही ढंग से करना चाहिए। और जैसे शुरुआत में प्रीति जी ने बताया कि बिल्कुल मॉडरेशन में होना चाहिए, बिल्कुल सही ढंग से सही मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। और किस तरह से होता है इसके लिए गाइडेंस भी वे देती हैं लोगों को, किस तरह से इसका इस चिकित्सा के द्वारा वे खुद हेल्दी रह सकते हैं। पर बेशक अगर आप ये पद्धति इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप खुद एक डॉक्टर बनना चाहते हैं इस फील्ड में, तो इसके लिए भी प्रीति जी उन्हें पूरी तरह से सहयोग देती हैं, गाइडेंस देती हैं कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पर आप कर जाकर इस टेक्निक को सीख सकते हैं और बाकायदा एक डॉक्टर बन सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी,
0: थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ दूँ
1: ज़रूर,
0: कि 3 साल से मैं साउथ में इन सेमेग्रिये में, वहाँ पर एक सीनियर सिटीजन है, जानेट सीनियर सिटीजन है, 3 साल से हर महीने में एक बार जाती हूँ वहाँ, बस उनको गाइडेंस देने के लिए कि कैसे 5 तत्व से किस किस तत्व से किस क्या क्या चीज़ का इलाज होता है, क्योंकि पानी का इलाज किस बीमारी का होता है। तो मैं उन्हें गाइडेंस दे रही, 3 साल से जा रही हूँ वहाँ पर, तो वो तो भी तो सीख ही रहे हैं मुझसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब वहाँ पर वो जो बुजुर्ग हैं, मैं बुजुर्गों को क्यों सिखाती हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने दादा दादी नाना नानी को ज़्यादा सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही।
0: कि प्राकृतिक चिकित्सा ये है, तो मैं तब से मैं सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन हुआ
1: बिल्कुल
0: कि मैं बुजुर्गों को सिखा रही हूँ, वो लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, छोटे बच्चे को सिखा रहे हैं घर से, उन्हें मालूम भी हो रहा है कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है।
1: तो एक तरह से नेचुरल तरीके से आप ये ट्रीटमेंट कर रहे हो, नेचुरल तरीके से आप किस प्रकार से पानी एवं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा,
0: और ये चीज
1: जी,
0: ये जो 5 तत्व है कहीं दूर जाकर खोजना नहीं पड़ता है,
1: आपके घर में, मतलब एक तरह से आपके घर आंगन में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं उसी से आप अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन बाकायदा इसके लिए आपकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, गुरु होना चाहिए जो आपको सही मार्गदर्शन दिखाए। क्योंकि ऐसे ही नहीं है कि आपने किताब में पढ़ा और आप शुरू हो गए, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल इसकी भी एक, इसका भी एक तरीका होता है। और बेशक मैं ज़रूर पूछना चाहूंगी प्रीति जी, हम अपने प्रोग्राम के लगभग अंत तक आने की तैयारी में है, तो जितनी भी महिलाएं हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, कई बार समाज में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, हर महिला चाहती है कि उनका घर परिवार सुरक्षित रहे, एकदम सेफ रहे, हेल्दी रहे, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी जितनी भी महिलाएं हैं?
0: देखो, प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं हर जगह में है।
1: बिल्कुल।
0: अगर प्रॉब्लम के देखेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: बस यही कहूँगी, कैसे मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी, इतनी चीज़ करने के बाद मैं भी वही जैसी, मैं माँ से पूछ रही थी, माँ ये माँ कितने दिन तक मैं जीऊँगी, जैसे 32 दांत के बीच में ये आपका जीभ रहता है कि इधर करेंगे तो कट जाएंगे, इधर खुद के दांत खुद के जीभ काटता है।
1: सही बात।
0: तो दुनिया तो वैसे ही चल रहे है कि खुद के पैरों में खड़े हो।
1: बिल्कुल सही।
0: अपनी खुद का दिमाग है, बस उसका प्रयोग करो, अपने खुद के पैरों में खड़े होकर आगे बढ़ने चलो।
1: मतलब हिम्मत नहीं हारनी है,
0: हिम्मत नहीं हारना है, बस आगे बढ़ते जाना है। लेकिन दायरे में रहकर,
1: बिल्कुल अपना अपना दायरे में, अपना अपना लिमिट रखकर, जैसे कहते हैं ना कि एक लक्ष्मण रेखा अपने हर महिला के लिए, ये बहुत ही आवश्यक,
0: बहुत ही आवश्यक,
1: बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि एक तरह से आप अपने दायरे में रहकर अपने परिवार के लिए बहुत सैक्रिफाइस करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, बहुत आगे बढ़ती हैं। और हर महिला चाहती है कि उनका बच्चा आगे चल के विकास करे, हर महिला चाहती है कि आर्थिक रूप से वे अपने पति को सहयोग दे और सपोर्ट दे। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही,
0: और ये हमारे देश के भविष्य का है।
1: बिल्कुल,
0: देश का जो भविष्य सब नारी पर डिपेंड होता है।
1: सही बात, बहुत ही बड़ी
0: अगर
1: बात कही।
0: नारी जानती है

0: अपने काम कैसे करे, बच्चे को अच्छे से देखे, घर को अच्छे से देखे, और हमारा जो इलाज देती हूँ मैं, नारी को ज्यादा पर प्रोत्साहन करती हूँ कि आप ठीक रहें।
1: हाँ।
0: क्योंकि एक घर का एक सदस्य बीमार जब हो गया,
1: हाँ,
0: तो पूरे के पूरे घर बीमार हो जाते हैं।
1: सही बात, और खासकर जब महिला की बात आती है तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि जब घर की महिला बीमार होती है तो घर डगमगाने लगता है।
0: हाँ,
1: बिल्कुल,
0: कुलन वैते भा जैसे बोलते हैं ना,
1: सही सही,
0: माँ वही है।
1: बिल्कुल,
0: तो माँ को यही सिखाती हूँ, आप ठीक रहें,
1: हाँ,
0: बच्चों को
1: स्वस्थ
0: रहें,
1: सही,
0: अपने घर को अच्छे से ले जाएं, क्योंकि फ्यूचर का सोचो, देश का सोचो, देश का भविष्य को सोचो।
1: बिल्कुल, और जाते जाते मैं प्रीति जी से जरूर पूछना चाहूंगी, प्रीति जी अगर आप अपना नंबर जो है संपर्क का अगर देना चाहें, जिससे द्वारा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहें तो वो किस नंबर पर आपको संपर्क कर सकते हैं?
0: जाने से पहले, नंबर देने से पहले ये कहूंगी सबसे कि प्रकृति से जुड़े रहो, प्रकृति से जुड़े रहने से स्वस्थ बहुत अच्छे से रहेंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार को देखना बहुत अच्छे से देख सकेंगे, और प्रकृति, बस एक लॉस्ट बात कहूँगी, अगली बात कि मरने से पहले जब हम मर जाते हैं तो फिर से प्रकृति में जाकर मिल जाते हैं।
1: बिल्कुल, जो हमारा पंच महाभूत शरीर है
0: फिर से जाकर
1: प्रकृति में ही फिर से
0: तो
1: मिलता
0: आप
1: है।
0: हमेशा प्रकृति से मिल कर रहे,
1: उससे कनेक्टेड रहे,
0: कनेक्टेड रहे,
1: बिल्कुल
0: स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ जीवन ले जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी,
0: और हमारा नंबर है 573-3-7-1-7-7।
1: बिल्कुल 573-3-7-1-7-7। तो ज़रूर अगर आप शंकर उनके साथ बिल्कुल आप जुड़ना चाहते हैं या प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो 573-3-7-1-7-7 नंबर है। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी,
0: धन्यवाद,
1: और हमारी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद,
0: हमारे धन्यवाद
1: दर्शकों को और हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े, आपको भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कहानी को लेकर अगले सप्ताह, तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।
2: उड़ान की कहानी,
3: उड़ान की कहानी।

0: एग्जैक्टली 3 पीएम देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज्यादा कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के बीच सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई। 44 सड़क दुर्घटनाओं में शामिल 168 चालकों के ड्रग टेस्ट पॉजिटिव साबित हुए थे। इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने राष्ट्रीय सभा में आज विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है और नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई और साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई है, साथ ही पुलिस कार्रवाइयां भी बढ़ाई गई हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के ओवरटाइम का भुगतान इस महीने के आखिर से किया जाएगा और दमकल कर्मियों के लिए संडे अलावेंस और पब्लिक हॉलीडे अलावेंस की अदायगी शुरू हो चुकी है। इन एलोकेशंस का

0: का पूरा भुगतान वित्तीय साल 2026 के आखिर से पहले कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा लगाए गए एक प्रेस सम्मेलन के अंतर्गत आज सुबह इन फैसलों पर चर्चा की गई। युवाओं में तंबाकू और निकोटीन का सेवन साथ ही वेपिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 31 मई को मनाए गए विश्व तंबाकू रहित दिवस के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल सोमवार को एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा आकर्षण का पर्दाफाश, निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला। इसका उद्देश्य रोकथाम प्रयासों को मजबूत करना और विशेष रूप से युवाओं में तंबाकू, निकोटीन और वेपिंग उत्पादों से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल रहा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में एबोला के नए वायरस से निपटने के लिए 3 नए टीके विकसित किए जा रहे हैं, जिससे अब तक लगभग 250 लोगों की मौत हो चुकी है। एक टीके पर काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव का कहना है कि इस बार एबोला का सबसे खतरनाक प्रकोप फैला है। कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इसके संक्रमण के 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Bombay Talkies,
2: Radio Musti,
3: Radio Musti.
4: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
5: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
6: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: दो जून रेडियो मॉरिशस पर साथी जितने दर्शक हमें एमबीसी के चैनल 3 के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और ये सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई होगी। आज है मंगलवार और हम हमेशा की तरह आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में आ गए हैं। आपको बता दें इस कार्यक्रम को इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर। साथ ही इसे आप लाइव इस समय हमें देख पा रहे हैं एमबीसी के चैनल 3 पर भी। आपको ये भी याद दिला दे, इसी प्रोग्राम का रीब्रॉडकास्ट जो है उससे आप सुन पाएंगे आज ही सुपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर। साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे सुपहर के 4 बजे एमबीसी के चैनल 3 पर ही। तो चलिए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। और कल 1 जून को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया, ग्लोबल पेरेंट्स डे, विश्व माता पिता दिवस। और माता पिता का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये शायद हम सब शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। सो इस दिन को मनाया जाता है हर वर्ष 1 जून को। यूनाइटेड नेशन ने 2012 में इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और माता पिता जो है अपने त्याग के लिए जाने जाते हैं, अपने प्रेम, अपने मेहनत, अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो आज इसी विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मिस्टर अश्विन कतवारू जी जुड़ चुके हैं। अश्विन जी जो है वो है आर्य सभा एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन, साथ ही लकी चाइल्ड स्पेशल एजुकेशन नीड्स के प्रेसिडेंट है। उसके अलावा काफ़ी सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, बच्चों और ख़ासकर नौजवानों को लेकर काफ़ी कार्य करते हैं, जूरिस्ट है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो अश्विन जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, नमस्कार आज के कार्यक्रम में। आप हमेशा जुड़ते हैं, आज भी आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़े थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम एक बहुत ही विशेष विषय लेकर आए हैं, ग्लोबल पेरेंट्स डे जो कल मनाया गया। तो इस दिन के बारे में थोड़ा सा बताएं, इस दिन के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएं, कब से इसे मनाने की शुरुआत हुई थी, इसके पीछे उद्देश्य क्या है?
1: जैसे आपने तो सबसे पहले बहुत नमस्ते, मैं आपको और जितने श्रोता और दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मेरा सादर नमन। जब से ये आपने बोला है 2012 से शुरू हुआ है, और ख़ास कर जितने जो हमारे माँ बाप हैं उन लोगों के त्याग, समर्पण, और अभी हम बात करें तो एक माता पिता का ही देन है समाज को।
0: ये सही कहा आपने।
1: तो अब मैं, आपने बोला आर्य समाज से जुड़ा हूँ और इतने संस्थाओं से जुड़ा हूँ, एक खास मैं जेपी नारायण सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड पीस से जुड़ा हूँ।
0: अच्छा।
1: उसका मैं संस्थापक हूँ और अध्यक्ष भी हूँ और पॉलिसी एडवोकेट भी हूँ उसका।
0: जी।
1: तो ये इसका उद्देश्य है, जैसे बच्चों को माँ बाप को साथ मिलाना, उसका यही उद्देश्य है, तब जाकर वर्ल्ड पीस बनेगा। इसलिए उसका नाम ही वर्ल्ड पीस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड पीस। और ये 2012 में संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे आपने

0: बोला यूनाइटेड नेशन, उन लोगों ने सोचा कि कैसे माँ बाप को जो ये जो सब सोसाइटी है वो बिखर रहा है उसको कैसे जोड़ें।
1: बिल्कुल, अभी के समय की बात करें तो हर एक रिश्ते में कहीं ना कहीं दूरियां आ गई है, फिर चाहे वो दूरियां बातचीत ना होने की वजह से हो, विचारों का मतभेद हो, और काफ़ी एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो इन सब का जो है कारण बनता है। लेकिन खासकर माता पिता की जब हम बात करते हैं, माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, और आज के समय में हम देखते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच का जो रोल है वो पहले जैसा नहीं रहा, समय के साथ काफ़ी कुछ बदल रहा है। तो हम चाहेंगे कि पहले कैसा था, थोड़ा सा आप इस पर बात करें, वर्तमान में कैसा चल रहा है, और वर्तमान को देखते हुए भविष्य में किस तरह की चिंताएँ जो है हम माता पिता और बच्चों के संबंध को लेकर जो है बात कर रहे थे, किस बातों पर हम जो है रोशनी डाल सकते हैं।
0: मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आपको चौंका देगा। ये जितने जो हम अब बात कर रहे हैं माता पिता और बच्चों के जो संबंध का, तो एक दूसरा एक पहलू है उसका जो है बोलते हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग। तो उसको थोड़ा बाद में लेंगे, तो थोड़ा अभी जो अच्छा वाला सुंदर वाला सब करके तब टॉक्सिक पेरेंटिंग वाला में बात करेंगे। तो पहला है आगे के समय में आपको ऊंची आवाज में आपके माता पिता के साथ बात करना वर्जित था
1: जी।
0: आप नहीं, आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि माता पिता जी को कुछ आप बोले।
1: बिल्कुल, आज भी अगर हम अपने माता पिता को, मुझे याद है आज भी कुछ बोलने के पहले हम दो बार सोचते हैं, खासकर पिता के सामने ना, माँ के सामने तो चलो हम बोल भी देते हो, भी जब पिता नहीं होते हैं ना, पिता के प्रति आज भी डर नहीं कहेंगे, वो सम्मान है ना, बोलने के पहले दो बार सोचते कि हम बोले या ना बोले।
0: तो उस समय प्रभाव था दादा दादी का
1: जी,
0: या नाना नानी का
1: जी,
0: उस समय का
1: जी।
0: तो जो संस्कार हमको मिला था
1: जी,
0: वो अब हमको सीखने को मिल रहा था, क्योंकि जो माता पिता थे दादा दादी उन लोगों के साथ कैसे बात करते थे, व्यवहार कैसा था, तो हम उससे सीखते थे। तो आगे आप से संबोधित करते थे, तुम नहीं, माता पिता है तो आप।
1: बिल्कुल,
0: तो ये जैसे डायरेक्टली एक संबंध, एक रिस्पेक्ट,
1: एक सम्मान अपने आप में आ गया बातों में ही।
0: हाँ, बातों ही में। दूसरा अब देखेंगे जो मिलेनियल्स है, मिलेनियल्स में वो भी थोड़ा जो आगे का वो थोड़ा रिफ्लेक्ट करता था। अब देखेंगे जेंजी में तो ये टू पर आ गया है। तो ये भी दो पहलू है इसमें। हम सोचते हैं कि एक तो हम बच्चों को नज़दीक ला रहे हैं, ठीक है, कोई सोचेगा मेरा बच्चा है तो मुझको जैसे खुल के बता रहा, बात कर रहा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा उसमें चाहिए कि माँ बाप को एक जैसे एक रिस्पेक्ट का वो एक लाइन, एक रेखा खींचना चाहिए उसमें, जिससे कि वो पार न हो
1: जी।
0: तो अब देखेंगे कोई कोई बच्चा तो डांट देते हैं या बिल्कुल ही गलत तरीके से व्यवहार कर लेते हैं, बर्ताव करते हैं।
1: बिल्कुल, और भाई बहन के बीच में भी देखो, हम अगर बड़े हैं तो कभी नाम लेकर नहीं पुकारते थे ना, ये अपने आप में एक सम्मान ही है, या हमारे संस्कार कहे कि हमसे जो भी बड़े हैं हम उनको उसके हिसाब से पुकारते थे, छोटे हैं तो भले नाम से पुकार लेंगे, तो बड़ों को कभी नाम से नहीं पुकारते थे।
0: तो वही था। अब देखते हैं कि जो अभी तो जेंजी का समय थोड़ा निकल रहा है, अब ये अल्फा है,
1: अल्फा
0: और बीटा भी आ गया है, तो अब हमारी जिम्मेदारी है अल्फा और बीटा को कैसे हम कंट्रोल करें
1: जी।
0: कैसे वापस वहाँ जो रूट है उसके जो जड़ है उससे जोड़े, तो ये हमारे हाथ में है अभी।
1: और कहीं ना कहीं संयुक्त यूनाइटेड नेशन इस दिन को मना रहा है, तो अपने आप में ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल समस्या बन गई है ना, माता पिता और बच्चों के बीच में जो तनाव है। कहते हैं विदेशों में तो बच्चे 18 साल के होते ही घर छोड़कर चले जाते हैं, अपना अपना रास्ता देख लेते हैं, माता पिता को पूछते नहीं है, लेकिन अभी भी जो है हमारे एशियाई परिवारों में ये दिखता है कि माता पिता का कोई ना कोई तो है जो ख्याल रख रहा है, घर में 2-3 बच्चे तो उसमें एक जो है जो रखता है ख्याल ना। और अगर ऐसे में जॉइंट फैमिली तो अभी काफ़ी कम हो गई है, न्यूक्लियर फैमिली का एक दौर चल पड़ा है, जहाँ पर बच्चों में जो है संस्कारों की बात कहे, उठना बैठना कहे, वो रिफ्लेक्ट होता है जब आप एक संयुक्त परिवार से आते हैं, और जब आप न्यूक्लियर परिवार से आते हैं तो थोड़ा सा जो अंतर है वो दिखाई देता है हमारे बर्ताव में। तो क्या ये भी एक बड़ा मसला है अभी के समय में बच्चों और माता पिता के बीच?

0: जो संबंध है बिगड़ते जा रहे हैं?
1: देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ इतने सालों से है, लेकिन उन लोगों का जो आइडिया हुआ तो 2012 में, इतने सालों के बाद आइडिया आया कि हम इस
0: दिन को मनाएं,
1: दिन को मनाएंगे जी। और अब देखेंगे कि एक दिन पहले उसका हमने मॉरिशस का मातृ दिवस मनाया। वैसे मातृ दिवस तो मनाया जाता है मार्च महीने में,
0: जैसे मध्य में, ग्लोबली,
1: हाँ ग्लोबली, लेकिन मॉरिशस में खास यहाँ पर
0: अंत में आखिरी रविवार को मनाया जाता है, शायद लोगों की तनख्वाह आ जाती है तो आसान हो जाता है।
1: ये भी एक लोबी है व्यापारों का, लेकिन ये इसको साइड में रखेंगे तब। लेकिन हम देखेंगे जब रविवार को हुआ था तो लोग सोचते हैं कि एक ही दिन हम माता जी को सम्मान देंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए
0: जी। बिल्कुल,
1: ये रोज का एक जैसे
0: नियम
1: होना चाहिए कि माता पिता को सम्मान
0: जी।
1: और जैसे जो लोग हमको इस धरती पर लाया उन लोगों के प्रति जैसे ग्रैटिट्यूड होना चाहिए।
0: एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है ये। हम भूल जाते हैं, शायद हम सोचते हैं कि आजकल के बच्चे हमें कभी कभार देखने को मिलते हैं, देखिए ना, हम समाज में उठते बैठते हैं, इतने हमारे जो है रिसोर्स पर्सन्स के साथ कार्य करते हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन के फील्ड से हो या साइकोलॉजी के फील्ड से हो, सो बहुत सारे ऐसे जो है टॉपिक्स आते हैं जहाँ पर अभी के समय बच्चों में जो है वो कृतज्ञता नहीं है ना, एक ग्रैटिट्यूड, वो सोचते हैं कि आपने हमें जन्म दिया है तो ये आपका फ़र्ज़ है हमारे लिए करना ना, फर्स्ट तो है। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है।
1: ये माता जी जब से हम जब जन्मे थे आज तक जैसे एक बच्चे का वो ख्याल रखती है, ठीक है, लेकिन जब वो कुछ हम जो अपेक्षा है हमारा जब वो पूरा नहीं करती है तब हम उस जो नहीं दे पाई,
0: जो नहीं मिला,
1: हाँ, नहीं
0: उस
1: मिला,
0: पर हमारा फोकस ज्यादा होता है,
1: फोकस ज्यादा होता है। और जितने जो अच्छा कार्य किया है वो भूल जाते
0: हैं, कहीं ना कहीं शायद हम भी जाने अनजाने में ऐसी चीजें करते हैं, पर कहीं ना कहीं एक ऐसे जब विषय पर हम बात करते हैं तो ये हमें भी हमारी सोच पर रिफ्लेक्ट करने का एक अवसर देता है। तो चलिए, जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आज हम ग्लोबल पेरेंट्स डे, विश्व माता पिता दिवस पर चर्चा कर रहे हैं जो हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। अगर आप भी आज के कार्यक्रम में अपने विचार बांटना चाहते हैं तो 402-8085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अश्विन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के समय में पेरेंट्स का रोल कैसे होना चाहिए? बदलते वक्त के साथ हमारे ज़िंदगी जीने का तरीका बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रही है, तो इसके मुताबिक क्या माता पिता को भी उस हिसाब से

0: 8085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो अश्विन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी के समय में पेरेंट्स का रोल कैसे होना चाहिए? बदलते वक्त के साथ हमारे ज़िंदगी जीने का तरीका बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रही है, तो इसके मुताबिक क्या माता पिता को भी उस हिसाब से ढल?
1: ये बोलना चाहता हूँ कि जब एक बच्चा अभी के समय में जन्म लेता है तो हम उसको जो जिस युग में और जिस साल में और जिस समय में वो उस उसको जन्म दिया है उसको लेकर हम आगे की ओर चले, लेकिन जो हमारा वैल्यूज है उसको भी साथ में चले।
0: बिल्कुल।
1: और ये होता है संस्कार से, संस्कार जो अपने माता पिता ने अपने माता पिता से सीखा है और सोसाइटी में बैठका में जहाँ पर वो सीखते हैं वो उसको साथ में लेकर चलना, तब भी ये
0: एक कम्प्लीट ओवरऑल जैसे कि हम कह सकते हैं, है ना? क्योंकि हम अपनी नींव को ही अगर छोड़ दे, मतलब कि अपने संस्कार जो हमने बचपन से सीखा है उसे छोड़कर अगर हम नई चीज़ों को अपना कर आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो फाउंडेशन है वही वीक होगा ना। जैसे हम आमतौर पर कहते हैं कि भाषा गई तो संस्कृति गई, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में प्रोग्रेस के लिए बहुत ही मायने रखती है। क्योंकि एक व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख ले अगर उसमें वो उठने बैठने का या बातचीत करने का स्वभाव नहीं होगा तो लोग पहले यही कहते हैं कि इसकी परवरिश कैसे हुई है ना। ये एक आम धारणा है, एक आम कमेंट है जो हमें सुनने को मिलता है, फिर चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर हो या किसी भी सर्कल में आप उठ बैठ रहे हो। तो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन संस्कारों का होना भी बहुत आवश्यक है जो कहीं ना कहीं हमें अपने बड़े बुजुर्गों से अपने माता पिता से ही मिल सकता है।
1: मैं एक उदाहरण दूंगा
0: जी।
1: जैसे एक आप कहीं पर जाते हैं और कोई आपके सामने आ गया, आप बैठे हैं वो सामने आ गया, तो आप जब उठकर उसको हैंडशेक करते हैं या नमस्ते बोलते हैं या हाथ जोड़कर कुछ भी करते हैं तो एकदम से बिना मुंह खोले आपको दिख जाएगा कि इसका परवरिश कैसे हुआ,
0: कैसे
1: है?
0: हुआ, बिल्कुल सही कहा।
1: और इसका संस्कार कैसा है
0: जी,
1: समझ रहे हैं ना
0: जी।
1: यदि आप कोई आपके सामने आए, आप बैठे ही है या आप ऐसा कुछ आप रिएक्शन नहीं दे रहे तो वो उसको भी पता लग जाएगा कि इसका परवरिश कैसा है
0: जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, कभी कभार हमें मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमारा जो आचरण होता है ना, जो उठने बैठने का तरीका या देखने का तरीका, जो हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत कुछ बता देता है आपके बारे में। और इस बात पर मैं ये बात भी जोड़ना चाहूंगी, आप बताए कि इस पर आपके क्या विचार है। आजकल कहते हैं कि बच्चे जब कोई घर में मेहमान आता है तो अपने कमरे में बंद रहते हैं, मिलने नहीं आते हैं, उन्हें ग्रीट नहीं करते, माता पिता को फोर्सफुली उन्हें बुलाना पड़ता है, तो ये भी अपने आप में एक दिखाता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है ना, हमारे जो नई पीढ़ी है वो कहाँ जा रही है।
1: तो हाल ही में मैं एक बैठक में था, तो वहाँ पर ये लकी चाल का है एक बैठक था, तो मैं मेरा मित्र है तो हम बात कर रहे थे कैसे जो यहाँ के जो जैसे इन जनरल कैसे बच्चे का व्यवहार होता है
0: जी।
1: तो वो एक उदाहरण देता है कि उसके जो भतीजे है उसके पूछता है खाना खाया, हाँ क्या खाया, रोटी, तो ऐसा
0: एक शब्द वाला
1: और जितने जो समय वो उसके बात कर रहा था आई कांटेक्ट जीरो,
0: बिल्कुल नहीं,
1: और जो फोकस है वो मोबाइल में देखकर, तो मोबाइल में उसका फोकस है सिर्फ एक शब्द में उसका जवाब दे रहा है,
0: यानी कि ये दिखाता है कि बच्चे को आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है,
1: दिल्चस्पी
0: और उससे बड़ी बात कि उसके आपके प्रति उसका कोई सम्मान नहीं है,
1: सम्मान नहीं है और डिस्कनेक्ट है।
0: एग्जैक्टली। और ये डिस्कनेक्शन ही है जो हमारे रिश्तों को आज इतना खराब कर रहा है। हम पेरेंट्स की बात करें तो सिर्फ बच्चों तक ये सीमित नहीं है, घर में अन्य हमारे रिश्ते नाते भी है, भाई बहन हुए, पति पत्नी हुए, ये सब भी आ जाते हैं। क्योंकि हम ग्लोबली बात कर रहे हैं तो सिर्फ माता पिता तक तो सीमित नहीं रहेंगे ना, जब उनके बच्चे होंगे वो शादी करेंगे फिर परिवार बढ़ता जाता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि माता पिता बच्चों को अच्छा सिखा रहे हैं लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी मतलब कि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चा भी सोच में पड़ जाता है ना कि आप हमें कह रहे हैं कि लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करो, लेकिन आप अपने पार्टनर से या आप अपने माता पिता से वैसे ही बात कर रहे हो। और बच्चे जितना बोलते हैं उससे नहीं सीखते हैं, वो आपके व्यवहार को देख कर सीखते हैं, तो इस पर आपके क्या विचार है?
1: ये आपने सही बोला, क्योंकि जब देखेंगे तो हम बोलते हैं बच्चा जो आप उसको सिखाते हैं वो नहीं सीखता है, जो आप करते हैं व्यवहार से वो उससे सीखता है
0: जी।
1: तो ये बहुत एक गंभीर समस्या है मॉरिशस में और विश्व भर में,
0: बिल्कुल।

0: ये इसको इस दिवस में हम उसको मनाते हैं। और जब मैंने बोला था, जैसे हम आगे मैंने बोला
1: जी,
0: था टॉक्सिक पेरेंटिंग में क्या हो गया कि अभी देखते हैं कि जो डाइवोर्स का रेट बहुत बढ़ गया
1: बढ़ते
0: है,
1: बढ़ते जा रहा है,
0: बढ़ते जा रहा है और ग्लोबली ये समस्या है। दूसरा है ड्रग्स, और ये सब चीज जो होता है वो आर्टिफिशियली ये थोड़ा दबाव डालता है रिश्तों में
1: जी। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं,
0: जो समस्या है
1: जी।
0: और माता पिता में जैसे ड्रग्स है और अल्कोहलिज्म है, और एक्सटर्नल जैसे वो होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स
1: जी।
0: तो ये सब मिलाकर ये एक्सटर्नल ऑफ ये होता है जो समस्या है
1: जी,
0: जो दबाव डालता है ये बच्चों पर और माता पिता और बच्चों के रिश्ते
1: जी। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से निकलना भी कभी कभार मुश्किल होता है ना। कभी कभार ऐसा होता है कि हम बच्चे को वो अच्छा एनवायरनमेंट ही नहीं दे पाते। कभी हालात ऐसे होते हैं लोग निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन कभी ऐसी चीज़ों में या ऐसे हालातों में फंस जाते हैं जिससे निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक काउंसलर के पास जाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आज के अभी के समय में जो है मेंटल हेल्थ की बहुत बातें की जाती है, काउंसलिंग की बातें की जाती है, लेकिन जब उस व्यक्ति पर खुद आता है तो वो सोचता है मुझे तो कोई दिमागी बीमारी नहीं है, मुझ में तो कोई कमी नहीं है, और वो जाकर एक काउंसलर को देखना, एक साइकोलॉजिस्ट को देखना जो है इससे रिफ्रेन करता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लोग समझेंगे कि कहीं मुझ में कोई खराबी है जाके मैं काउंसलर को देख रहा हूँ, क्योंकि एक टैबू के रूप में अभी भी इसे देखा जाता है, लोग इसे ईजिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
0: तो ये मैं बोलूँगा कि हम एक डिनायल फेज में रहते हैं, ये मेरे साथ नहीं हुआ है या ये नहीं हो सकता है, ये सिर्फ अन्य लोगों का हाँ, होता है, मेरा हाँ, कुछ नहीं होता है। तो ये एक डिनायल फेज में रहते हैं जो बुरा है
1: जी।
0: दूसरा है आप काउंसलर के पास जाएंगे, बहुत अच्छा है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो फॉर्म्ड है, उन लोगों का ये जो ट्रेनिंग होता है उसी के विषय पर है। लेकिन जो फिर जब काउंसलर आपसे बात करेगा, साइकोलॉजिस्ट आपके साथ वो बात करेंगे, तो कुल मिलाकर आपको ही कदम लेना है।
1: एग्जैक्टली हाँ।
0: तो आपको खुद वो मैपिंग तो ये सब वो साइकोलॉजिस्ट कर देगा, आपको सिखा देगा क्या, लेकिन बाद में आपको ही ये सब में
1: मतलब उसी उन सब स्टेप्स को आप ही को फॉलो करना,
0: करना है।
1: और बहुत से लोग यहाँ पर आकर फिर रुक जाते हैं,
0: हाँ, है रुक ना? जाते हैं, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है कि मैंने फलाना साइकोलॉजिस्ट के पास गया था, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, ये वो है, काउंसलर है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो इफेक्ट जब बाद में इसको अमल में लाना है तब यही से
1: कि जब तक आप उन सभी बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक वो काउंसलिंग आपके काम की नहीं है,
0: कारगर नहीं रहेगा जब तक आप इसको आप नहीं देखेंगे।
1: चलिए 4028085 है नंबर हमारा, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप अभी अपने विचार बांटना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। अभी के लिए एक गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

0: चलिए आज के चर्चा कार्यक्रम आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम विश्व माता पिता दिवस पर चर्चा कर रहे हैं। हर वर्ष पहली जून को ये मनाया जाता है, कल इसे मनाया गया था। और माता पिता की हमारे जीवन में जो भूमिका है उसे एक घंटे के इस कार्यक्रम में हम पूरा नहीं कर सकते, वो अपने आप में इतना है कि शायद ऐसे न जाने कितने कार्यक्रम हमें करने पड़ेंगे तब जाकर हमारी इस चर्चा कहीं ना कहीं जो है लगेगा कि हमने सारा जो है टॉपिक इंक्लूड कर लिया है, सारे फैक्टर्स पर बात कर लिया है। लेकिन चलिए फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, खासकर हम नौजवानों की बात करें। आजकल तो जैसे आपने कहा अल्फा हो गया और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नौजवान आजकल एक अलग ही जो है तरह के जीवन को जी रहे हैं ना। एक तो सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस है और ऐसे ऐसे कंटेंट वो देख रहे हैं जिस पर माता पिता का ही कंट्रोल नहीं है, तो ये भी एक प्रभाव डालता है माता पिता और बच्चों के रिश्ते के बीच। अभी के समय में एक बच्चे को कुछ करने से रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना, कि कुछ टोकना कि ये तुम क्यों कर रहे हो या ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ऐसे में क्या उस यंगस्टर्स, उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है अपने माता पिता के प्रति उनकी बात को सुनना, या बदलते समय के साथ किस तरह के सोच में उनके बदलाव आना चाहिए कि वो दोनों फैक्टर्स को अच्छे से समझ पाए?
1: यहाँ पर हम देखेंगे कि जब से बच्चों के हाथों में मोबाइल आ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो वो लोग सोचते हैं कि माता पिता के पास नेचुरल इंटेलिजेंस है और हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। माता पिता सुबह निकलते हैं, काम पर जाते हैं और सुबह से शाम तक वो काम पर रहते हैं, उन लोगों के हाथों में खाना और पैसे थमा कर चले जाते हैं। और अभी के ज़माने में देखेंगे कितने एप्लीकेशन आ गया है एआई का। तो अभी हाल ही में मैं किसी एक माता जी को से बात में कर रहा था
0: जी।
1: तो वो बोलती है कि मेरा बेटा जब भी कुछ करना चाहिए उसको तो वो एआई में वो बात करता है। तो एआई से बहुत गहरा उसका संबंध है
0: और माता पिता से कम है।
1: माता पिता से कम है। अब ये जितने जो अभी माता पिता हमको सुन रहे हैं वो अभी इन लोगों का दिनचर्या में ये उन लोगों को देखने को मिल रहा है
0: जी, बिल्कुल।
1: क्योंकि वो तो एक फटाफट वो कुछ जैसे एक सेकंड में
0: एक क्लिक पर उनको जवाब मिल जाता है,
1: एक क्लिक में उनका जवाब मिल जाता है। लेकिन जवाब अच्छा है बुरा है या जो उन लोगों के एक्सपीरियंस में है वो, क्योंकि वो तो जनरल है, एक जो भी आप पूछ रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं वो उसका इंटरनेट

0: में से जवाब लेकर आपको दे रहा है,
1: आपको दे रहा है।
0: यदि वो आप पर अडाप्टेड है, आपके जो सिचुएशन में अडाप्टेड है या नहीं, वो बच्चा को नहीं जानता,
1: वो नहीं पता, क्योंकि एआई तो आपको इन जनरल जवाब दे रहा है। हाँ। शायद एआई को नहीं पता ना कि वो बच्चा है आपसे पूछ रहा है या एक नौजवान है या एक वृद्ध व्यक्ति है। शायद एआई वही सेम जवाब, वही सेम सवाल का सभी को दे रहा है। लेकिन एक माता पिता के पास अगर बच्चा अपना प्रॉब्लम लेके जा रहा है, तो वो उसकी उम्र के हिसाब से उसे समझाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा,
0: उसका एक्सपीरियंस,
1: अपना अनुभव,
0: जो बच्चे का एक्सपीरियंस, उसको जानता है कि वो बीमार था, उसका अस्थमा था जब छोटा था, ये था, या स्वास्थ्य के संबंध
1: मतलब कि सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए,
0: उसका पैसा है या पैसा नहीं है। मान लो वो बच्चा पूछेगा एआई से, मुझको सबसे एक बढ़िया तोहफा चाहिए, तो वो बोलेगा एक गाड़ी 10 लाख का, तो 10 लाख कहाँ से लाएगा माता पिता। तो इसलिए जो है उन लोगों को ये आकर्षण हो रहा है एआई के प्रति, तो ये माता पिता, तो यहाँ पर जो माता पिता भी का भी एक फॉल्ट है, क्योंकि उन लोगों छोटे से ही उन लोगों को मोबाइल थमा दिया और समय ही नहीं है उन लोगों के पास बात करने के लिए। वो माता पिता जब घर पर आते हैं, खाना पकाती है या मोबाइल पर रहती है, तो बच्चों को दे दिया या उनको होमवर्क दे दिया या अपने कमरे में बंद है
1: जी। तो ऐसा नहीं है कि माता पिता पहले काम नहीं करते थे, पहले में भी ऐसे कॉर्पोरेट जॉब्स में नहीं थे, लेकिन पहले के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दोनों ही पति पत्नी खेतों में जाते थे काम करने, या जो भी काम होता था, पढ़ाने का काम करते थे, जो भी उस समय भी बहुत सारे ऐसे कपल्स थे जो काम करते थे। ऐसा नहीं कि एक घर पर रहता था तो एक काम करते थे। हमारे यहीं मॉरिशस में देख लीजिए कितने लोग तो कृषि से जुड़े थे, है ना, प्लांटेशन से जुड़े थे, तो दिन में वो भी काम करते थे। लेकिन ये जो बच्चे जो थे उस समय घर ही के लोग उन्हें संभालते थे, फिर चाहे घर के अन्य सदस्य हुए या बड़ी बहन हुई या चाचा चाची हुए। लेकिन अभी के समय में जस्ट बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं, तो जब माता पिता काम करने जा रहे हैं और बच्चा एक समय घर पर लौट रहा है, देखभाल के लिए कोई नहीं है, तो शायद मीडिया की ओर जा रहा है, गैजेट्स की ओर जा रहा है, ये भी एक कारण है ना। मतलब कि हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसे होते जा रही है, और फिर माता पिता बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं देंगे, तो ये एक अलग फैक्टर बन जाता है लड़ाई झगड़े को बढ़ाने का ना। बच्चे काफ़ी ज़िद्दी हो जाते हैं कि मेरे दोस्त के पास तो है, तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं।
0: तो ये एक सरल फैक्टर भी है। हाँ। और अब देखेंगे कि इस दौर में देखेंगे तो टीवी में इतने चैनल्स हैं, इंटरनेट आ गया है, इतने वेबसाइट आ गया है, और देखेंगे कि वेबसाइट में भी जैसे हम जैसे नहीं देख पा रहे हैं बच्चे क्या देख रहा है। तो अभी मैं खुश हूँ कि मॉरिशस में ये सब टेक्नोलॉजी आ रहा है, जिससे कि आप पेरेंटल
1: कंट्रोल
0: कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक मॉरिशस में आ गया है।
1: हाँ, क्योंकि काफी पेरेंट्स जो समझदार हैं, इन सभी बातों को समझते हैं, तो मोबाइल को उस हिसाब से सेट करते हैं कि मतलब कि बच्चा क्या देख पाएगा या किस हद तक, है ना।
0: और ये भी कंट्रोल है कि आप उसको निगरानी कर सकेंगे क्या देख रहा है।
1: Exactly.
0: और कितने समय तक वो देख पाएगा
1: जी,
0: समझ रहे ना। हाँ। तो हमने ही छूट दे दिया है इंटरनेट, एक 24 आवर्स में वो 24/7 चलता है
1: जी।
0: लेकिन मैंने कहीं कहीं गृहस्थियों में देखा है कि लोग वहाँ पर टाइम करते हैं,
1: अप्लाई कर रहे हैं
0: 30 मिनट, तो 30 मिनट में बंद
1: जी,
0: या 10 मिनट या 5 मिनट वो सिर्फ एक प्रोग्राम देखने के लिए और बंद।
1: क्योंकि कहीं ना कहीं अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ये अनुशासन सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, आई बिलीव हम एज अ पेरेंट हम पर भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर बच्चे को एक चीज़ करने के लिए कह रहे हैं और वो हम ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर बच्चा सोचेगा कि आप नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं,
0: है ना। ये भी है, और हमको जैसे अब तो गैजेट आ गया है, ब्लू स्क्रीन जिसको बोलते हैं, तो हम इससे निकलकर जो आगे करते थे स्टोरी टेलिंग, जो मैं बहुत लकी चाइल्ड भी बहुत करता है सभी जगह, स्टोरी टेलिंग हो गया है, या एक डिबेट जैसा घर में, या खाने के समय पर कुछ बातचीत माता पिता के साथ, तो ये थोड़ा कम होने लग गया है। कोई कोई तो अपना लिविंग रूम में खा रहा है, तो कोई अपना रूम में खा रहा है, तो कोई नहीं खा रहा है, कोई देर से आएगा, या
1: मतलब क्यों खाने के समय में भी आजकल लोग नहीं मिल रहे
0: हैं। तो एक समय ऐसा होना चाहिए कि जब प्रार्थना कर रहे हैं संध्या काल में या खाने के समय में, एक दिन में एक ही बार यदि मिल रहे हैं सभी एक

0: जगह तो बहुत सुंदर रहेगा
1: जी। कहते हैं ना एटलीस्ट एक वक्त का खाना अगर पूरा परिवार मिलकर साथ में खा रहा है तो ये कहीं ना कहीं परिवार में बॉन्डिंग को बढ़ाता है ना, क्योंकि जब हम पूरे दिन के बाद एक दूसरे से मिलते हैं तो दिन भर में क्या हुआ इस पर बात करते हैं। अब बातों बातों में पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति शायद किसी परेशानी से गुजर रहा है या कुछ अच्छा हुआ तो क्यों हुआ कैसे हुआ ना, इन सभी बातों पर
0: नीति हो उन लोगों को जो कपड़े है गीले नहीं हो या साफ सुथरा रखे, उनको खाना दें, ये सब, क्योंकि ये नहीं हो पाता है तो हम विमर्श होकर वहाँ उसको उन लोगों को डालते हैं।
1: बिल्कुल ऐसा होता है कि कभी कभार घर में सभी लोग काम करते हैं और कोई बीमार है और जिसे शायद 24 घंटे देखरेख की आवश्यकता पड़ रही है, तो ऐसे में बहुत से लोग किसी ना किसी को अपॉइंट कर देते हैं देखभाल के लिए या कहीं डे केयर सेंटर में रख देते हैं ताकि, क्योंकि अगर आप घर पर अकेले उनको छोड़कर जा रहे हैं और कुछ हो गया भगवान ना करे तब ऐसे में उन्हें कौन देखेगा, है ना, तो बहुत से लोग विवश होकर छोड़ते हैं और किसी हर एक का अपना कारण होता है। लेकिन आज हम किसी संस्था के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम आगे ले जाते हैं और चलिए हम ग्लोबल पेरेंट्स डे पर बात कर रहे हैं, माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम शिक्षा की बात करें अश्विन जी, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या ये होना चाहिए कि इस पर भी जोर दिया जाए कि हमारे रिश्ते नाते कैसे हो, क्योंकि आजकल हॉलिस्टिक की काफ़ी बातें होती है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक जो है आज हमारी शिक्षा प्रणाली सीमित नहीं है, जीवन के अन्य पहलुओं पर भी जो है गौर कर रही है, तो आपको क्या लगता है इस पर, आप कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हैं।
0: हाँ, मैंने 2-3 ये पाठ्यक्रम मैंने देखा है
1: जी।
0: और वहाँ पर स्पष्ट है कि जो माता पिता के बारे में फैमिली जो होता है उसके बारे में बहुत खुलासा उन्होंने किया है वहाँ पर जो पाठ्यक्रम में, तो देखेंगे जैसे वो पेंटिंग हो गया है तो एक माता पिता जैसे अंग्रेजी में हो गया, फ्रेंच में हो गया, हिंदी

0: बहन सबको एक जैसे उसमें डाला है
1: जी.
0: तो बच्चे को भी लगेगा कि वो रिलेट कर पाएगा
1: हाँ.
0: कि माता जी है पिताजी है
1: जी.
0: अब इस नए दौर में देखेंगे कि सिंगल पेरेंटिंग आ गया है या जहाँ पर डिवोर्स हो गया है तो माता या पिताजी खुद देख रहे हैं बच्चों का, जहाँ माता जी गुजर गई तो पिताजी अकेले है, ये तो एक्सेप्शंस है
1: जी.
0: लेकिन जो नॉर्म है वो है कि जितने जो पाठ्यक्रम मैंने देखा अभी तक तो वो पेरेंट्स को और ग्रैंड पेरेंट्स को भी साथ में जुड़ा है,
1: और कहीं ना कहीं ये बहुत आवश्यक भी
0: हाँ,
1: है ना
0: हाँ.
1: क्योंकि ये फिर सिर्फ ये रिश्तों की बात सिर्फ हमारे घर तक सीमित नहीं रहती है. हम जहाँ पढ़ने लिखने जा रहे हैं वहाँ पर भी हमें इनके बारे में जब जानकारी मिलती है तो बच्चा अपने रिश्तों को अहमियत देता है, क्योंकि रिश्ता सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं है. क्योंकि एक बच्चा जब स्कूल में जा रहा है तो रिलेशनशिप टीचर के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते जुड़ते हैं. फिर चाहे आप काम पर भी जाए, अपने कलीग्स है, कोवर्कर्स है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे रिलेशनशिप बहुत मायने रखते हैं. और आज का ये विषय अपने आप में एक रिलेशनशिप पर ही आधारित है. तो आपको क्या लगता है कि अगर हम बच्चों की बात करें, मिडल एज जो पेरेंट्स हैं उनकी बात करें, या सीनियर सिटीजन्स की बात करें, बदलते समय के साथ कौन से ऐसे फैक्टर्स हमें अपनी लाइफस्टाइल में अपनाने चाहिए जिससे जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम हो और रिश्तों में और भी सम्मान और भी मधुरता आए?
0: तीन चीज़ है. एक तो है इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस है, आईक्यू बोलते हैं इसको. एक है ईक्यू,
1: ओके,
0: और एक है एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन.
1: ओके,
0: तो हम जो स्पिरिचुअली इंक्लाइन है, इंटेलेक्चुअली इंक्लाइन है, लेकिन जो इमोशनल वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है
1: जी.
0: जो एम्पैथी, अब रास्ते पे जाएंगे कोई ब्रेक लगा दिया आपके सामने जो गाड़ी में, आप उसको चिल्लाने लगे, रोड रेज जिसको बोलते हैं, अब गाली करो तो बच्चा क्या सीख रहा है
1: जी.
0: कि जो सामने वाला है जो कोई गलती करेगा उसको गाली
1: जी.
0: देना, समझ रहे ना. तो ये जो व्यवहार है आपको कैसे मैनेज कर रहे हैं इमोशन को, तो ये बच्चा देख रहा है. और वो जब पैदा नहीं हुआ था तब से वो इमोशंस पर
1: फील करता है ना? क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में है तो सारे इमोशंस जो है बच्चा फील करता ही.
0: लेकिन अब इसका इमोशनल मैनेजमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण मैं सोचता हूँ आज के ज़माने में
1: ज़्यादा आवश्यक
0: है.
1: क्योंकि ऐसा होता है कि आजकल हम बड़ों की बात करें, छोटों की बात करें, या हमारे बुजुर्गों की बात करें, समय के साथ हमें पेशेंस की काफ़ी कमी आ गई है. शायद हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो गया है, हमारे खाने पीने का, कहते हैं ना जो खाते हैं उसका भी असर हमारे शरीर पर पड़ता है. तो आजकल ज़्यादातर चीज़ें जो हम खाते हैं उसमें तो कहीं ना कहीं मिलावट है ना, मतलब कि प्रिजर्वेटिव्स है. हम वैसा खान पान नहीं खा रहे जो आज से कुछ सालों पहले हम खाते थे. हम वैसे बर्ताव नहीं कर रहे जैसे कुछ सालों पहले करते थे. तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे जो है बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं. आजकल काफ़ी बिहेवियरल इश्यूज़ जो है हमें देखने को मिलते हैं. कुछ समय पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ प्रोग्राम किया था जहाँ पर बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चों में आजकल जो है व्यवहार को लेकर जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. बच्चे काफ़ी चिड़चिड़े हैं, ज़िद्दी हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं. तो आपको क्या लगता है कि अभी के समय में जैसे आपने इमोशनल कोशेंट की बात की, तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होना भी बच्चों में आवश्यक है? क्योंकि जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि एक उम्र में आएंगे तब जो है हम थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे ना. लोग सोचते हैं कि अब रिटायर हो जाएंगे तो अब थोड़ा सा हम भक्ति भाव में ध्यान देंगे. तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जीवन के शुरुआती दौर से होना आवश्यक नहीं है?
0: एक चीज मैं यहाँ इस पर बात करने से पहले मैं थोड़ा कुछ बातों में रेखांकित करना चाहता हूँ
1: जी.
0: कि जो आपने बताया था सीनियर सिटीजन
1: जी,
0: तो मैंने पहला जो इमोशनल क्वेश्चन मैंने बताया था वो तो है बच्चे और जो मिडिल एज वो उसका पेरेंट, मिडिल एज भी नहीं कोई भी पेरेंट उसका
1: जी.
0: वो इमोशनली वो बॉन्ड रहता है तो माता भी समझ पा रही है बच्चा क्या बोल रहा है और बच्चे भी समझ रहे हैं क्या वो उसको बताया जा रहा है. लेकिन अब मैं एक गंभीर मैं समस्या मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो माता पिता है जो अभी सीनियर सिटीजन है उनको भी पता लगना चाहिए कि वो व्यवहार कैसा कर रहे हैं.
1: okay.
0: क्योंकि वो ज़माना गया जहाँ पर वो जैसे बोलते थे कि उन लोगों के हाथ में सभी था,

0: तो अभी छूटने लग गए हैं, तो उनको भी लगना चाहिए कि अब उन लोगों का जिम्मेदारी थोड़ा कम हो गया है और बच्चों को उसको जैसे लिव एंड लेट लिव, ये समस्या बहुत मॉरिशस में देख रहा हूँ कि बहुत है अभी, कि वो भी सीनियर सिटीजन है तो उन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ज़्यादा, और यहाँ पर थोड़ा उन लोगों को जैसे,
1: यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि समय के साथ हमें जो है अपनी जिम्मेदारियों को बांट देना चाहिए ताकि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे ना। कभी कभार ऐसा होता है कि घर में एक मुखिया होता है, वही सारे फैसले लेता है, और फिर वैसे में बच्चे जो है फैसला लेना नहीं सीखते हैं। तो समय के साथ साथ हमें बच्चों को भी थोड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए ताकि वो जीवन का अनुभव अपने तरीके से कर पाए, और आप तो यहाँ पर एज अ बड़े होकर है ही उनको गाइड करने के लिए,
0: जैसे एक मेंटर सिस्टम
1: है ना,
0: एक मेंटर सिस्टम जहाँ पर आप सिर्फ देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ना कि टोक रहे हैं। हर चीज में टोकेंगे तब भी ये चिड़चिड़ापन आएगा,
1: तब वो सीख नहीं पाएगा ना।
0: और ये सब होगा क्योंकि उन लोगों को भी सीख रहे हैं ना।
1: बिल्कुल, ये नहीं कह रहे कि जब आप अपने जिम्मेदारियों को बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो अहमियत है वो कम हो रही है। हाँ। किसी भी रूप में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप एक उम्र में आ गए हैं तो थोड़ा घर के कामों काज कुछ, बस घर में दो तीन लोग हैं तो डिवाइड कर दो कि छोड़ो ये तुम देख लो, वो तुम देख लो। जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा जब वीकेंड में घर पर है तो थोड़े बहुत किचन में आप कर रहे हैं तो बच्चा भी थोड़ी सहायता कर दे, दो बर्तन धो दे, या आप आंगन की सफाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके साथ हाथ बटा दे। तो जब बच्चा हाथ बटा रहा है यानी कि थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी अपने साथ उठा रहा है। जब वही बच्चा कुछ नहीं करता और एक ही बार में जब बड़ा हो जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ रहा है या गृहस्थ जीवन में जो है जा रहा है, तो उसने तो कुछ भी नहीं सीखा है, तब फिर मुश्किल हो जाती है, है ना।
0: ये एक बहुत बड़ा समस्या है, तो इसको एज ए सोसाइटी हम इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए।
1: जी चलिए, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्लोबल पेरेंट्स डे के मौके पर हम अपने पेरेंट्स के प्रति किस तरह से अपने रिश्ते को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम एक उम्र में आ जाते हैं तो वैसे में बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम एक लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं। लेकिन जो नौजवान हैं, जो मिडल एज है, जो मिलेनियल है, जो टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हैं, जो अपने माता पिता से भी जुड़े हैं, जो अपने बच्चों से भी जुड़े हैं, तो उनको जो है अपने रोल्स को फ्लक्चुएट बहुत करना पड़ता है। यहाँ पर माता पिता को भी समझना है, यहाँ पर अपने बच्चों को भी देखना है, अपने करियर को भी देखना है। तो किस तरह के बदलाव हम अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं ताकि हम सबको एक साथ लेकर चल पाए।
0: यहाँ पर जो जैसे आगे हमने बताया कि जो हमने सीख वहाँ से ली है, और जिस जैसे साल में हम जी रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, उसका एक क्लियर हमको
1: पिक्चर होना चाहिए
0: जी। पहले ठीक है, अब देखेंगे कि अभी सभी माता पिता के पास मोबाइल फोन आ गया है और अपनी तरीके से चला रहे हैं, किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, लेकिन फिर भी जैसे बोलते हैं इन है कि हमारे पास मोबाइल है, बड़े बड़े मोबाइल है। कल परसों माता दिवस था, बहुत माता पिता के हाथों में अभी नया नया मोबाइल आ गया है जिससे कि वो जैसे कॉल कर सके, वीडियो कॉल कर सके और ये सब करें। तो ये दौर है और बच्चों को के पास भी है। अब आगे माँ बाप क्या बोलते थे, आप सिर्फ मोबाइल पर रहते हैं, अब देखेंगे कि माता पिता बहुत मोबाइल पर है। और ये सीनियर सिटीजन के मैं बात कर रहा हूँ, जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के पास मोबाइल आ गया है तरह तरह का, तो वो भी चला रहे अपने धुन में, कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई रील्स बना रहा है, तो अपना तो ये एक प्लानिंग होना चाहिए इसका। जैसे रिटायर होते हैं तो बोलते हैं प्लान रिटायरमेंट, तो ये जो आप बता रहे हैं तो ये एक प्लानिंग में रहेगा, तो सबका अपना अपना ये रोल होना चाहिए। जैसे कि मैं जैसे एक सीनियर सिटीजन, जब आगे वो डांट रहा था किसी को जो मोबाइल चला रहा था, अब उसको भी पता लग गया क्या, जैसे बोलते हैं क्या मज़े इसमें है, तो वो भी कर रहे हैं।
1: यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़ा क्यों ना हो और छोटा क्यों ना हो। चलिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है ग्लोबल पेरेंट्स डे पर आधारित रहा, और जाने से पहले कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं और दर्शकों को जो इस समय हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं?
0: तो ये हम यहाँ पर है हमारे माता पिता के बदौलत, और बाद में हम भी माता पिता बनते हैं, तो ये सिलसिला जारी होना चाहिए
1: जी।
0: और मैं सोचता हूँ कि

0: जो रिस्पेक्ट है और जो हम जड़ से हम जुड़े, अपने ग्रंथों से जुड़े, अपने जो टेक्नोलॉजी से भी आगे हम बढ़े टेक्नोलॉजी के साथ और आधुनिकीकरण और हमारे जो जड़
1: जी
0: दोनों साथ साथ में चले।
1: तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्विन जी, आप जुड़े और आज के इस विषय पर आपने इतनी सारी जानकारी दी। जितने श्रोता और दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहे आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। बिल्कुल मातृ दिवस की बात करें, पितृ दिवस की बात करें या ग्लोबल पेरेंट्स डे की बात करें जो कल 1 जून को मनाया गया, ये दिन सिर्फ एक दिन विचार करने का नहीं है या वो एक दिन नहीं है जहाँ पर हम अपने माता पिता के साथ बैठकर समय बिताए। माता पिता जैसे कि हमारे सास की तरह है जिन्होंने हमें जन्म दिया, परवरिश की और हर एक हमारे स्वास्थ्य में उनके प्रति एक कृतज्ञता होनी चाहिए क्योंकि आज हम जो भी है जहाँ भी है उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं होते। तो चलिए इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होने को चला, जल्द आपसे हम फिर मिलेंगे। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम, टेक्निकल टीम को, हमारे प्रोड्यूसर रितेश को, साथ में टेक्निक्स पर अंजू और कादिया का साथ हमें मिला और साथ ही हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुषा, आपको भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, जल्द हमारी आपकी भेंट फिर होगी। नमस्कार आप सभी को।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अदिति के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको अदिति।
1: नमस्कार या श्रोताओं को भी नमस्कार। दक्षिण अफ्रीका तब तक मॉरिशस को पूरा समर्थन देगा जब तक कि शागोस द्वीप समूह की पूर्ण प्रभुसत्ता मॉरिशस के अधीन न आ जाए। इस बात का दावा मॉरिशस के लिए दक्षिण अफ्रीका के राजदूत और कूटनीतिको की डीन डॉक्टर लामालानी नेली मांजिनी ने किया। मॉरिशस में उनका कार्यकाल समाप्त होने चला है और सेथासोजी में गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल के साथ एक खास मुलाकात के दौरान उन्होंने औपचारिक तौर पर उनसे विदा लिया। जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज़्यादा कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के बीच सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई। 44 सड़क दुर्घटनाओं में शामिल 1168 चालकों के ड्रग टेस्ट पॉजिटिव साबित हुए। इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के पीएनक्यू के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है और नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई और साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई, साथ ही पुलिस कार्रवाइयाँ भी तेज की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्मचारियों के ओवरटाइम का भुगतान इस महीने के आखिर से किया जाएगा और दमकल कर्मियों के लिए संडे अलाउंस और पब्लिक हॉलीडे अलाउंस

0: अलाउंस की अदायगी शुरू हो चुकी है। इन एलोकेशंस पर का पूरा भुगतान वित्तीय साल 2026 के आखिर से पहले कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा लगाए गए एक प्रेस सम्मेलन के दौरान आज सुबह इन फैसलों पर चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन की राजधानी कीव और नीप्रो शहर पर रूसी ताकतों की तरफ से किए गए सिलसिलेवार मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले कुछ महीनों में किए गए सबसे बदतर हमलों में से एक रहा। दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें कई बच्चे शामिल बताए जाते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: के सितारे।
1: तो प्यार भरा नमस्कार हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक से लेकर आए हैं आपके नाम। तो चलिए दोस्तों, परी का साथ है और सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम, जहां पर आज का ये जो सफर है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी एक फेवरेट गायिका के नाम। इसीलिए ये कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए जब हमने किया था अनुराधा पौडवाल स्पेशल और कहा कि उनके बहुत सारे गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए आज एक बार फिर उन्हीं की आवाज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। खास सफर में लेकर आए हैं अनुराधा पौडवाल जी के गाए हुए कुछ बहुत ही प्यारे गाने, जिनकी भक्ति भी दिल को छू जाती थी और रोमांस भी सीधा रूह तक पहुंचता था। जी हाँ, आज का पूरा ये जो हमारा शो है समर्पित है अनुराधा पौडवाल जी के नाम, एक ऐसी गायिका जिन्होंने बॉलीवुड और भक्ति संगीत दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी आवाज़ में एक सादगी, एक सुकून, एक सिंप्लिसिटी और एक अपनापन है जो हर जनरेशन को पसंद आता है। तो अगले दो घंटों का ये सफ़र हम यादगार बनाएंगे उन्हीं के कुछ ब्यूटीफुल गानों के साथ, म्यूजिकल जर्नी और कुछ उनके दिलचस्प किस्से जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ परी आपके साथ, साथ निभा रही हैं आप भी। तो भूलिएगा नहीं, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200 पर आपका इंतज़ार।
0: You're listening RM Free Radio.

0: के सितारे।
1: आज का हमारा ये जो स्पेशल प्रोग्राम है डेडिकेटेड है अनुराधा पौडवाल जी और उनके कुछ बहुत ही पॉपुलर गीतों के नाम। अनुराधा पौडवाल जी का जन्म 27 अक्टूबर 1952 को कर्नाटका में हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1970s में की और धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई। 90s के दौर में उनकी आवाज़ हर दूसरी हिट कैसेट का हिस्सा हुआ करती थी। टी सीरीज के साथ उनकी म्यूजिकल पार्टनरशिप ने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को कई एवरग्रीन गाने दिए और उन्हीं गानों में से शामिल होता हुआ ये गाना उनके सभी फैंस और हमारे सभी लिसनर्स के नाम। आवाज़ें सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल जी की। उनके करियर के दौरान उन्होंने कई सारे सिंगर्स के साथ अपनी हिट जोड़ी बनाई। बीट हरिहरन, कुमार सानू, उदित नारायण या फिर सुरेश वाडकर कुछ पॉपुलर गीत लेकर आए हैं उन्हीं के गाए हुए और उनके कुछ डुएट्स, उनके कुछ सोलो सॉन्ग्स। हमारा आज का ये प्रोग्राम आपके सितारे डेडिकेटेड अनुराधा पौडवाल जी, उनके प्यारे गीतों के नाम। एंजॉय दिस वन।

0: आपके सितारे।
1: अक्सर कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ आवाज़ें वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अनुराधा जी की आवाज़ भी उन्हीं में से एक है। चाहे रोमांटिक मेलोडीज़ हो या फिर कोई इमोशनल गाना, उन्होंने हर मूड को अपनी आवाज़ से ख़ास बनाया। सभी के लिए जो अगला गाना है वो भी कुछ ऐसा ही है जो आँखों को नम तो करता ही है लेकिन सीधा दिल तक पहुँचता है। इस गाने में उनका साथ दिया उदित नारायण ने। मन फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना हमारे सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस हमारे इस नंबर पर 5250-6200 जहाँ पर हो रहा है आपका इंतज़ार। साथ ही यहाँ पर सरिता जी काट्रबोन से साथ दे रही हैं, कहती हैं अनुराधा पौडवाल जी के गानों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। सो ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम चलाते जाएंगे, आप भी हमारे हम सफ़र बने रहिएगा आपके इस प्यारे से रेडियो स्टेशन RM3 रेडियो मनोरंजन पर। मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक लेकर आए हैं प्रोग्राम आपके सितारे।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ब्यूटीफुल गाने आपके नाम आ दे रहे हैं आप ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. मनोरंजन आपका हम कर रहे हैं कुछ प्यारे गीतों के साथ. लेकर आए हैं अनुराधा पौडवाल के गाए हुए कुछ प्यारे गीत आपके नाम. हमारा ये प्रोग्राम आपके सितारे, और जिस सितारे को आज हम आसमान से उतार कर लाए हैं उनका नाम है अनुराधा पौडवाल. विजया जी हमारा साथ दे रही हैं वाकवा से, ये गाना डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमेशा साथ देने के लिए. साथ ही यहाँ पर सिलेक्शंस पसंद कर रही हैं प्रकाशवती जी, ऑल द वे फ्रॉम बेल्जियम साथ दे रही हैं आप, ये गाना आपके नाम.

चलिए दोस्तों स्वागत करते हैं शाम के 5:01 आपके सितारे प्रोग्राम लेकर आए हैं अनुराधा पौडवाल जी के गाए हुए कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स और ये गाना ऐसा है जो हर किसी के दिल के बहुत ज्यादा करीब दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गाना उनका साथ देते हुए बाबला मेहता सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी के लिए साथ देने के लिए शुक्रिया हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन RM3 रेडियो मनोरंजन 5250 6200 मैं परी करूंगी आपका इंतजार

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: तो जी हाँ दोस्तों, सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके सितारे। बात कर रहे हैं आज हम मेलेडी क्वीन अनुराधा पौडवाल की। 90s के म्यूजिक लवर्स के लिए उनकी आवाज़ सिर्फ गाने नहीं थे बल्कि यादों का एक हिस्सा थे। उनके गीत आज भी शादियों में, सफरों में या फिर रेडियो प्लेलिस्ट में हमेशा पसंद किए जाते हैं, जैसे कि अभी इस वक्त आप हमारा साथ दे रहे हैं, गानों को पसंद कर रहे हैं। सरिता जी गुडलैंड से कहती हैं 90s का जो दौर है लगता है वापस आ गया, बस एंजॉय कर रही हूँ इस प्रोग्राम को। और चलिए ये गाना स्पेशली आपके नाम गुडलैंड से हमारे साथ जुड़ी हुई सरिता जी, साथ ही जितने भी लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर, मैं हूं परी आपके साथ लेकर आए हैं प्रोग्राम आपके सितारे शाम के 6 बजे तक।

0: RM3 Radio.
1: तो चलिए यहाँ पर सरिता जी हमारा साथ दे रही हैं आपका ट्रिबून से. अनुराधा जी के गानों को काफी पसंद करती है तो अभी के लिए अनुराधा पौडवाल अभिजीत का एक ब्यूटीफुल डुएट फिल्म है तुम बिन उसी फिल्म का ये गाना आपके नाम साथी फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मनोरंजन जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं शाम के 5:15 हो रहे हैं खूबसूरत गीतों का कारवां आपके नाम प्रोग्राम आपके सितारे मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक

0: RM3 Radio. Radio.
1: और चलिए यहां पर ज्ञान बिहारी जी साथ दे रहे हैं, कहते हैं अनुराधा पौडवाल जी और उनके ये वंडरफुल गाने एंजॉय कर रही हैं आप। सुगाना आपके नाम, आपकी ओर से फॉर योर लवली वाइफ सबिता, सभी बिहारी परिवार जो हमारा साथ दे रहे हैं। अनुराधा पौडवाल जी, उनके गाए हुए कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। शामिल होता हुआ ये गाना आप सभी के नाम।

0: You're listening RM3 Radio.
1: और चलिए दोस्तों, दो घंटों का ये खूबसूरत सफर अब इसके अंतिम पड़ाव पर है। हमने महसूस किए आज अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में उन खास गीतों को जिन्होंने कभी हमारे दिल को धड़काया था और शायद आज भी धड़का रहे हैं। उनकी आवाज़ जो है वो आने वाली पीढ़ियों को भी इसी तरह प्रेरित करती रहेगी, बस यही हम विश करते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। जाते जाते ये गाना भगवत विदेशी की ओर से अनुषा के नाम। सो परी तो चलिए और लेंगे अलविदा, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए जुड़े रहे RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ। ठीक 6 बजे सुन पाएंगे आप पूरा समाचार बुलेटिन। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इतने प्यार से आपने हमारा साथ दिया हमारे इस प्यारे से शो में। तो बस छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग विपिन सचदेवा और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें। एंजॉय दिस वन।

घरे मिलाइए, शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मेलरोज के हाई सिक्योरिटी प्रिजन में कुछ महीने पहले हुई कैदी आंदी सेल्मो की मौत के सिलसिले में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के सुपुर्द की गई। जनवरी 2025 से अब तक मॉरिशस में 957 मिलियन रुपए मूल्य के सिंथेटिक ड्रग जब्त किए गए हैं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में पीएमक्यू सत्र के दौरान दी। पीएमक्यूटी के दौरान आगामी बजट 2026-2027 पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राप्त सभी प्रस्तावों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेलरोज की हाई सिक्योरिटी प्रिजन में कुछ महीने पहले हुई कैदी आंदी सेल्मो की मौत के सिलसिले में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के सुपुर्द की गई। पूर्व जज पॉल लामशांगलिन ने इस रिपोर्ट में पूरा घटनाक्रम, आयोग के निष्कर्ष और कई सिफारिशें पेश की, खासकर कैदखानों में सुरक्षा और संचालन को लेकर। जनवरी 2025 से पहली जून 2026 के बीच देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज़्यादा की कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इसी अवधि के बीच सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1594 मामले दर्ज किए गए, जिससे 1650 गिरफ्तारियां की गई हैं। 44 सड़क दुर्घटनाओं में शामिल 1068 चालकों के ड्रग टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इन बातों की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के पीएनक्यू के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल है और नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए मई 2025 में नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल की स्थापना की गई है। साथ ही संघर्ष तेज करने के वास्ते एक कार्य योजना भी लागू की गई है और पुलिस कार्रवाइयां भी बढ़ाई गई हैं। राष्ट्रीय सभा में आज प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन टाइम के दौरान अन्य कई मुद्दों के साथ साथ 2026-2027 के भावी बजट पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी प्रस्तावों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा। सिल्वर बैंक के संबंध में भी एक प्रश्न उठाया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने दावा किया कि बैंक के संदिग्ध प्रबंधन के बावजूद पूर्व वित्त मंत्री ने इस संस्था में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 3 बिलियन रुपए के निवेश के लिए मंजूरी दी थी। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की

0: कि मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की नाजुक वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए 150 रुपए का टेलीविजन लाइसेंस फी समाप्त करने का प्रस्ताव स्थगित किया गया है. सिल्वाना पारिमामन, करुणा लालू.
1: Madam Speaker, the Ministry of Finance launched.
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि बजट 2026-2027 एक विश्वार्थिक अनिश्चितता के माहौल में पेश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मंत्रालयों से अपने प्रस्ताव रखते समय इसे ध्यान में रखने की मांग की गई.
1: The Ministry of Finance is currently.
2: वित्त मंत्रालय वर्तमान में सभी मंत्रालयों के साथ नीति संवाद बैठकों का आयोजन कर रहा है. मैं सभी संबंधित पक्षों को ये आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों और सिफारिशों का सावधानी पूर्वक और गहनता से अध्ययन किया जा रहा है ताकि उन्हें 2026-2027 के बजट की तैयारी और अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में उचित रूप से ध्यान में रखा जाए. COVID-19 प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट फंड के बारे में जानकारी दी गई. पूर्व वित्त मंत्री ने सिल्वर बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में 3 बिलियन रुपए के निवेश को मंजूरी दी. इसके बाद 3 बार पैसे निकाले गए. ये अत्यंत चिंताजनक बात है जब प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड की सरप्लस राशि को निवेश करने के लिए कमर्शियल बैंकों से कोटेशन मांगे गए थे तो सिल्वर बैंक लिमिटेड द्वारा दी गई दर अन्य बैंकों की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा थी. उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस ने 12 महीनों के लिए 0.75% की दर प्रस्तावित की. बैंक वन मॉरिशस ने 12 महीनों के लिए 1.25% की दर, जबकि सिल्वर बैंक लिमिटेड ने 12 महीनों के लिए 4% की दर दी, जो बहुत अधिक थी. स्पष्ट है कि कुछ असामान्य स्थिति थी, फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सिल्वर बैंक को ये फंड उस उच्च दर पर प्रदान कर दिया गया. ये सब ऐसे समय हुआ जब बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी उपलब्ध थी और लगभग रिकॉर्ड स्तर पर अतिरिक्त तरलता मौजूद थी. इस समस्या के साथ अभी भी जूझ रहे हैं. ये निर्णय किसी भी वस्तुनिष्ठ वित्तीय आधार पर उचित ठहराना कठिन है. बाजार की परिस्थितियों का कोई भी समझदारी भरा मूल्यांकन ये समर्थन नहीं कर सकता कि अन्य प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक दर स्वीकार की जाए. सबसे संभावित व्याख्या ये है कि ये निवेश केवल सिल्वर बैंक की वित्तीय स्थिति और उसके बैलेंस शीट को कृत्रिम रूप से मजबूत दिखाने के उद्देश्य से किया गया था. डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने बताया कि 150 रुपए की टेलीविजन लाइसेंस फी हटाने का फैसला टाल दिया गया एमबीसी की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए ऐसा किया गया. मासिक टेलीविजन लाइसेंस फी को समाप्त करने का मुद्दा सरकार के विचाराधीन है, लेकिन ऐसा कोई भी निर्णय लेते समय ये ध्यान रखना आवश्यक होगा कि एमबीसी की वित्तीय स्थिरता बनी रहे और ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसका सार्वजनिक प्रसारण का कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहे. वर्तमान में एमबीसी की वित्तीय स्थिति अत्यंत नाजुक है, इसलिए फिलहाल मासिक टेलीविजन लाइसेंस फी को समाप्त करने का निर्णय स्थगित किया गया है. ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि जब ये सरकार नवंबर 2024 में सत्ता में आई तब उसने एमबीसी की गंभीर वित्तीय स्थिति को ध्यान में लिया. इसमें शामिल थे लगभग 1.5 बिलियन रुपए का संचित घाटा, कुल 165.5 लाख रुपए का कर्ज और लगभग 1.8 बिलियन रुपए की पेंशन ओब्लिगेशन.
1: The new management of the corporation, together with the MBC board, embarked on a major transformation plan aimed at strengthening the corporation's operation, financial and public service performance.
3: Puis-je demander à l'honorable Premier ministre si le dossier de libéralisation des ondes est arrivé de télévision privée Progress?
1: They are looking into the matter. This is the commitment we have taken during the election campaign and we intend to actually oblige on this.
2: Air Mauritius ke strategic partner ki talash ke bare mein ek sawal ke jawab mein Pradhan Mantri ne kaha ki airline abhi is tarah ke kadam par vichar nahi kar rahi. Dr. Navin Ramgulam ne saaf kiya ki network aur fleet ka mulyankan kiya ja raha hai. July 2025 se April

0: 2026 तक वीएटी के तौर पर 52.2 बिलियन रुपए जमा किए गए।
1: दक्षिण अफ्रीका तब तक मॉरिशस को पूरा समर्थन देगा जब तक कि शागस द्वीप समूह की पूर्ण संप्रभुता मॉरिशस के अधीन न आ जाए। इस बात का दावा मॉरिशस के लिए दक्षिण अफ्रीका की राजदूत और कूटनीतिक कोर की डीन डॉक्टर लामालानी नेली मंजीनी ने किया। मॉरिशस में उनका कार्यकाल समाप्त होने चला है और स्टेट हाउस हजवी में गणराज्य के राष्ट्रपति धरम गोहुल के साथ एक खास मुलाकात के दौरान उन्होंने औपचारिक तौर पर उनसे विदा लिया। फागाकुना की रिपोर्ट।
2: दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त और कूटनीतिक क्षेत्र के डीन डॉक्टर हलामालानी नेली मंजीनी ने स्टेट हाउस रिज्यू में राष्ट्रपति धरम गोगुल से रस्मी मुलाकात की और उनसे विदाई ली। इस औपचारिक दौरे से ही मॉरिशस में उनके कूटनीतिक मिशन का समापन हुआ। इस बैठक की बदौलत मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के बीच संबंधों को मजबूत करने के चरणों पर भी बात करने का मौका मिला। राष्ट्रपति धरम गोकुल ने उन कई परियोजनाओं की सराहना की जिन्हें कूटनीतिज्ञ ने अपने कार्यकाल के दौरान साकार किया। साथ में शागस पर दक्षिण अफ्रीका का समर्थन भी मिला। डॉक्टर हलामालानी नेली मंजीनी ने कहा, मॉरिशस के साथ हमारी द्विपक्षीय संबंध मजबूत होते जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रपति ने शागस मामले को लेकर हमारे समर्थन को भी सराहा। दक्षिण अफ्रीका शागस पर मॉरिशस की प्रभुसत्ता का समर्थन करने के लिए अन्य अफ्रीकी देशों के बगल में डटा रहा। समझौते पर अंतिम निष्कर्ष तक मॉरिशस का समर्थन करते रहेंगे। ये बात उल्लेखनीय है कि डॉक्टर मंजीनी के कूटनीतिक मिशन के पूरा होने पर इस महीने के अंत में देश से वे रवाना हो रही हैं।
1: और चलिए एक ऐसी फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हैं जिसकी शूटिंग सितंबर 2022 में शुरू हुई थी। निर्माता एवं निर्देशक कृष्णादत्त रामरोच की फिल्म गुरु दक्षिणा केवल भेंट देने तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन में प्राप्त ज्ञान संस्कार और मूल्यों के लिए आभार व्यक्त करने की भावना को उजागर करती है। ये फिल्म इसी शिक्षा पर केंद्रित है जिसकी लॉन्चिंग पिछले हफ्ते MC ने फ्लैक में की गई। पूजा सुकालू।
3: फिल्म की शुरुआत होती है दादा और पोते के इस शॉट के साथ। दादा जो हमेशा से अपने नाती पोतियों की रक्षक रहे हैं, यहाँ गुरु दक्षिणा नाम के इस फिल्म में शुरू से ही अपने पोते का मार्गदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं।
4: गुरु पूर्णिमा एक बरिस में एक ही हार मिला।
5: एक बरिस में तो काहे दादा?
4: गुरु पूर्णिमा एगो खास दिन है जहाँ पर सब लड़का लोग
3: निर्माता एवं निर्देशक कृष्णदत्त रामरुच की फिल्म गुरु दक्षिणा भोजपुरी भाषा संस्कृति और मानवीय मूल्यों को समर्पित एक महत्वपूर्ण सिनेमाई प्रस्तुति है। इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2022 में शुरू हुई थी। गुरु दक्षिणा मॉरिशस के विभिन्न मनोरम और ऐतिहासिक स्थलों पर फिल्माया गया है जिनमें से एक देश के प्राचीन और प्रसिद्ध कोविल है जो फिल्म को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गहराई प्रदान करता है। फिल्म का शीर्षक गुरु दक्षिणा भारतीय परंपरा में गुरु के प्रति सम्मान कृतज्ञता और समर्पण का प्रतीक है। ये केवल गुरु को दी जाने वाली भेंट नहीं बल्कि जीवन में प्राप्त ज्ञान संस्कार और मूल्यों के प्रति आभार व्यक्त करने की भावना को दर्शाता है।
6: दक्षिणा जब जब लेसन लगे शिक्षा लोबे तो छोटा से जलन सा जब बड़ा हो गए तब उन लोग के अब जाए चाहेला घरे लौटे चाहेला फिर से नहीं जानी सब गुरु के शिक्षा लोग तो गुरु की दक्षिणा देवे चाहेला ना तो गुरुआ दक्षिणा मांगेला तो इफ में गुरु कौन सी मांगेला और छात्र लोग सकेला देवे कि नहीं तो इफ में देखबा तो जान जाएगा।
3: हाल ही में 29 मई को MC ने फ्लैक में फिल्म का भव्य प्रीमियर और लॉन्च आयोजित किया गया।
7: हम फिल्म में गुरु हैं तो हम तो बहुत साल से गुरु के काम कर रहे हैं। कॉलेज में रही तो सोचते हैं जवान लोग देखें सब बड़े आदमी लोग भी देखें सब

0: अपन लेकर के है शिक्षा दियन सर।
1: हम गुरु दक्षिणा में भाग ले रही, हम रोल कर ले हैं दादी के।
2: एंड गुरु के लिए फैन अपन वन ऑफ द रिस्पेक्टेड जो तुम अनगोंजबुन एक जनुरान सर्विस सो ओकन सो देर टू।
3: गुरु दक्षिणा का मुख्य उद्देश्य हमारे पूर्वजों की भोजपुरी भाषा को संरक्षित करना और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना है।
4: पूरे देश को हिला देने वाली एक त्रासदी जिसमें दो लोगों ने जान गंवाई, 24 वर्षीय मनीषा बधू और 31 वर्षीय नोविक सालेस के शव पिछले गुरुवार को युवक की गाड़ी में बरामद की गई। माना जा रहा है कि उनकी मौत कार्बन मोनोऑक्साइड की इंटॉक्सिकेशन के कारण हुई है। ये कैसे हुआ और इस गैस के क्या खतरे हैं, इस पर विस्तार अंजू राम गुलाम की इस रिपोर्ट में विवरण रजनी बिकर का।
5: कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका रासायनिक प्रतीक केमिकल सिंबल CO है, ये कार में कैसे पाया जाता है, एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक विशेषज्ञ ने समझाया।
6: Ça c'est un manifold, il saute pas là, il passe dans un piping et un ban résonateur, un catalyseur qui les filtre près 60-70% de ban carbone. Après, il y a les saute pas ou l'échappement à l'œil. Mais si il y a une perdition dans ce ban connexion, parce qu'il y a 3 ou 4 connexions dans la ligne l'échappement, là, la fumée là, le carbone là, ça veut dire qu'il commence à refouler un petit peu à l'intérieur.
5: गैराज का दरवाजा बंद था। नोविक सालेस और मनीषा बधू के शवों को प्राप्त करने वाली परिजनों को कार के अंदर पहुंचने के लिए उसकी खिड़कियां तोड़नी पड़ी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अदृश्य और गंधहीन गैस है, फिर ये 2012 मॉडल की शेवोले कार के अंदर इतनी मात्रा में कैसे जमा हो गई कि घातक साबित हुई? क्या ये AC के डक्टों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर गई होगी?
6: Ça veut dire que si vous mettez l'eau sur le fond, automatiquement, vous venez l'eau. L'eau, ça système là, ça veut dire qu'il prend l'air de haut, il y a bouillon d'eau. Là, vous êtes capable de faire un carbone, monoxide.
5: Et il y a des kirkiens, thoriculi, huitito.
6: Si, je vais dans un garage, automatiquement, la fumée là pour rentrer à l'intérieur dans la cabine. Surtout, il y a un véhicule qui est un peu ancien, juste de carbone, un petit peu plus fort.
5: कार्बन मोनोऑक्साइड को खतरनाक बनाने वाली बात इसका शरीर पर असर करने का तरीका है।
7: यह एक गैस कि très rapidement absorbé à travers les poumons. Les poumons attachent-les avec l'hémoglobine 240 à 250 fois plus rapidement que l'oxygène. Les restes là et donc nos organes vitaux, le cœur, le cerveau, mais se dépriver d'oxygène. C'est comme si nous payons tout, vous autres. Nous payons une affaire de, disons, 10 minutes avant qu'il y ait un symptôme commencé.
5: Iske lakshanon mein sir dard, chakkar aana, asamanya thakan, bhram aur atyadhik neend aana shamil hain. Jab gas ki matra badh jati hai to vyakti dheere dheere behosh hone lagta hai aur aksar use is baat ka ehsaas bhi nahi hota ki wo gambhir khatre mein hai.
7: Ban chauffe-eau à gaz, c'est une source assez fréquente d'empoisonnement parce que l'installation a été mal faite. Pénène ventilation et gaz là peut accumuler. Nous entendez, non? Dimon, inhaler, il prend douce et puis après 20 minutes, pas trop de sortir, à guetter, c'est une finie mort.
5: कार्बन मोनोऑक्साइड के मामले में हमेशा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि ये मौन हत्यारा जो न दिखाई देता है न ही जिसकी कोई गंध होती है बिना किसी चेतावनी के जानलेवा साबित हो सकता है।
4: थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे जनवरी 2025 से अब तक देश में करीब 900 मिलियन रुपए से ज्यादा की कीमत के मादक द्रव्य जब्त किए गए हैं। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता की PNQ के जवाब में दी।
8: इंडिकेट द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ यूजर्स thereof.
9: सिंथेटिक ड्रग की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है, न केवल मॉरिशस में बल्कि दुनिया भर में, कहा प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने। प्रधानमंत्री ने इस पर स्पष्टीकरण दिया कि इन पिछले 1.5 वर्षों के दौरान कितने गाड़ी चालकों पर सिंथेटिक ड्रग संबंधी टेस्ट पॉजिटिव साबित हुए हैं। उन्होंने कहा

0: January 2025 to the 1st of June 2026, police has established 1,594.
1: कमिश्नर पुलिस की ओर से सूचित किया गया है कि 2025 के जनवरी महीने से पहली जून 2026 तक पुलिस ने सिंथेटिक ड्रग से संबंधित 1,594 मामले दर्ज किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप 1,650 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस अवधि के दौरान 44 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें ऐसे गाड़ी चालक संलग्न रहे जो खतरनाक मादक द्रव्य सेवन के लिए पॉजिटिव पाए गए, और इनमें से 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अन्य 6 लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री ने इस समस्या को अधिक फैलने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया।
0: 461 vehicles have been stopped and checked, resulting in 1,068 persons being tested positive for synthetic drugs. From January 2025 to the 2nd of June 2026, police has carried out 361 crackdown operations, resulting in seizure of synthetic drugs for an amount of 957 million rupees.
1: इसके साथ साथ मादक द्रव्य और अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय संघ दफ्तर की 224 वाली रिपोर्ट के सुझावों के मद्देनजर नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल के सुझावों के अंतर्गत कार्य जारी है। इनमें मादक द्रव्य तस्करी से प्रभावित इलाकों का मैपिंग करना, संबंधित लोगों की निगरानी, कार्रवाइयों को बढ़ाना, आजसू को दिए जाने वाले माध्यम एवं उपकरण बढ़ाया जाना तथा निगरानी मिशन के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल आदि शामिल है। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के स्तर पर सिंथेटिक ड्रग्स ऐसे पदार्थ रहे हैं जिनका इस्तेमाल 2025 में 1,100 मामलों में ज्यादा पाए गए हैं।
0: The National Agency for Drug Control is launching a study on the prevalence and determinants of synthetic drug use among secondary school students in Mauritius.
1: National Agency for Drug Control की तरफ से मॉरिशस में माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को सिंथेटिक ड्रग संबंधी सेवन पर एक अध्ययन चलाया जाएगा। दूसरी बात, नादेक एक कार्रवाई चलाएगा जिसका मकसद होगा मादक द्रव्य लेने वालों के साथ 2021 में कायम जांच के नतीजों को अपडेट करना, ताकि प्रवृत्तियों के विकास को देख सके, समय के साथ बदलावों का मूल्यांकन किया जा सके और सबूतों पर आधारित हस्तक्षेप स्ट्रेटेजीज एवं नीतियां निर्धारित की जा सके। दूसरी तरफ सिंथेटिक ड्रग्स संबंधी रोकथाम को लेकर एक स्टीयरिंग कमेटी कायम की गई है। मादक द्रव्य और अपराध के खिलाफ राष्ट्रीय संघ दफ्तर की रिपोर्ट के अनुरूप नादेक स्वास्थ्य संस्थाओं और संबंधित प्रयोगशालाओं के सहयोग से एक ऐसी चेतावनी प्रणाली अमल में लाएगा जिसकी बदौलत तीव्र गति से पता चल जाए कि किस तरह के नए साइकोएक्टिव पदार्थ हैं और मादक द्रव्यों से जुड़े उभरते खतरों के चलते राष्ट्रीय संस्थाओं में शीघ्र ही जवाब मिले। मादक द्रव्यों के आयात और वितरण नेटवर्क को लेकर जांच से संबंधित सांसद किरेन के एक अतिरिक्त प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने बताया कि मॉरिशस को अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरों की मदद मिल रही है। नेशनल ड्रग कंट्रोल मास्टर प्लान में निर्धारित तत्काल कदमों पर विपक्ष नेता जूले जोगा के एक अतिरिक्त प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने ये जवाब दिया।
2: You should read the report, the master plan.
0: You should read the report, and you should read the report what it says. It says in the last 10 years, this is the toxic legacy that we've inherited from the MSM.
3: Exactly.
0: And this is what they, you can't expect it to do overnight, what you didn't do in 10 years. But they are doing what has to be done.
4: Le Premier ministre peut-il dire à la Chambre si au niveau de la police...
1: Madak Dravya Jaisi Burai... मुख्य रूप से सिंथेटिक ड्रग राष्ट्रीय चिंता का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विभाजन से परे होना चाहिए। जो लोग हमारे नागरिकों का हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उन्हें प्रमुख चुनौती से निपटने के लिए अपने प्रयास संगठित करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज को खतरनाक तरीके से प्रभावित कर रही है।
0: For that area, including the, I mean, in the Indian Ocean, this is that kind of collaboration we are getting through our friends from abroad.
5: अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। मई महीने के दौरान भारत के कई प्रांतों में रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की लहर चली। कुछ राज्यों में 48 डिग्री तक का तापमान दर्ज किया गया। इससे वहां ऊर्जा की मांगें भी काफी हद तक बढ़ी हैं। उधर जापान में भी पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। विधि मासी बोरन।
3: दिल्ली के निवासियों को भीषण गर्मी से राहत मिलना जारी।

0: रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जून तक बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। उत्तर और दक्षिण गोवा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश और 4 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बाकी दिनों के लिए कोई चेतावनी नहीं है, जबकि महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। यहां गरज चमक, तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को अपने नवीनतम पूर्वानुमान में कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिनों के भीतर केरल पहुंचने की उम्मीद है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। दूसरी ओर एक सीवियर ट्रॉपिकल तूफान ने दक्षिण पश्चिमी जापान में भारी तबाही मचाई, जिससे हजारों घरों की बिजली गुल हो गई, सैकड़ों उड़ानें रद्द करनी पड़ी और 9 लोग घायल हो गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने ऊंची लहरें उठने, भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनी जारी की है, क्योंकि जांगमी तूफान सोमवार को सब ट्रॉपिकल द्वीप ओकिनावा से टकराने के बाद अब उत्तर की ओर बढ़ रहा है। क्यूशु द्वीप पर स्थित मियाज़ाकी शहर की पूरी आबादी लगभग 3.9 लाख लोगों को अपने घरों से सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया गया है।
1: आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान आशात और कल सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। कल दोपहर बाद दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लेटू वाले कुछ इलाकों पर हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठ सकती हैं। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:39 पर सूर्योदय, शाम को 5:37 पर सूर्यास्त होगा।

0: देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में शिव हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए थोड़ी देर में शुभ समाचार।
1: NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। नंबर 54 एवेन्यू अलामांडा मोंसेलो प्लेन दे एमिटाज हाइलैंड्स में, नंबर 54 एवेन्यू अलामांडा मोंसेलो प्लेन दे एमिटाज हाइलैंड्स में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड श्रीमती रूपवंती लकीराम, श्रीमती रूपवंती लकीराम पैदाशी नाम गंगा बिसुन जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के एक बजे इनके अर्थी कल दिन के एक बजे इनके बेटे श्री केविन लकीराम के मकान नंबर 54 एवेन्यू अलामांडा मोंसेलो प्लेन दे एमिटाज हाइलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अले भैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। मायावराम रोड सुयाक में, मायावराम रोड सुयाक में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड श्री आदामा, श्रीमती आदामा स्वामी, श्रीमती आदामा स्वामी पैदाशी नाम पुताया जो सरोज नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनकी बेटी श्रीमती माला रामिया के मकान मायावराम रोड सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए हों बाकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। गांधी रोड एन एस लॉ बेलिया में, गांधी रोड एन एस लॉ बेलिया में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड श्रीमती दिव्यानी लक्ष्मण, श्रीमती दिव्यानी लक्ष्मण पैदाशी नाम जहाजिया जो बबीता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी गुरुवार 4 जून को दिन के 11:30 बजे, इनकी अर्थी गुरुवार 4 जून को दिन के 11:30 बजे इनके पति श्री विनोद स्तंभ लक्ष्मण के मकान गांधी रोड एन एस लोहा बलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की

शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन ऑन थर्सडे 4th of June। गलिया गली कास्तेल में 54 साल के 54 years old श्री उत्तम दत्त सामनाथ, जो प्रीतम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी गुरुवार 4 जून को दिन के 11 बजे इनके मकान गलिया गली कास्तेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अले भुइयों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन ऑन थर्सडे 4th of June। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: SABC Radio, 24 hours a day.
1: सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी चंद विज्ञप्ति सुनिए। सीईबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि इन इन जगहों में बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 3 जून 2026 को वैलीपिटो में विशेषकर रुई आलमा, एम्पास आलमा तथा सुजिये में सुबह 9:30 बजे से दिन के 1 बजे के बीच और गुरुवार 4 जून 2026 को श्वाजी बेजुकाप तथा आसपास के इलाकों में सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों के बाद बिना पूर्व सूचित की बिजली की आपूर्ति पुनः जारी की जाएगी। इस कटौती के कारण सीबी क्षमा प्रार्थी है।

0: आज की सूचनाएं।
1: आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है हिंदी स्पीकिंग यूनियन के तत्वाधान में माध्यमिक विद्यालय हिंदी भाषण प्रतियोगिता का फाइनल चरण बुधवार 3 जून 2026 को सुबह 9:30 बजे म्यूनिसिपल सिटी काउंसिल पोर्टलिस के सभागार में आयोजित किया जाएगा। सभी आमंत्रित हैं। और मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा के तत्वधान में सत्यर्थ प्रकाश प्रचार मास के उपलक्ष में यज्ञ और सत्संग का आयोजन बुधवार 3 जून 2026 को शाम के 4 बजे से 5:30 बजे तक भरतिंडू इंस्टीट्यूट रॉयल रोड प्लेंडेल पापाई में किया जाएगा। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है।

नमस्कार श्रोताओ, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ, आरएम फ्री के साथ, और आप लोग सुन रहे हैं नई सोच प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर। जी हाँ, आज मंगलवार 2 जून 2026 और नई सोच कार्यक्रम आपके नाम हम करते हैं। जी हाँ, चलिए इस खूबसूरत सफ़र में आप साथ दीजिएगा चंद खूबसूरत भावगीत आप लोगों के नाम।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: याद है पंचम जब भी कोई नई धुन
2: 7:55 हुए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद। जी हाँ, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 7 बजे के बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आपके नाम।
1: हमारी तो टीम है, आ जाओ या बुला लो।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: सात बज चुके हैं दोस्तों रात के और आप लोग सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम और आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ आरएम फ्री रेडियो और इस कार्यक्रम को पेश करने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर और साथ निभाऊंगी सात से नौ बजे तक और आप भी साथ निभाइएगा और ऐसे यहाँ पर 80s और 90s के खूबसूरत गाने पॉपुलर गाने आपके नाम हम करते हैं और आपको क्या करना है फ़ोन करना है 1402-8070 और मैसेजेस आप भेज सकते हैं 1-525-06-200 वैसे 80s और 90s के गाने बहुत ही लाजवाब बहुत ही खूबसूरत और रोमांटिक भी हैं भावगीत दुख भरे गाने मस्ती भरे गीत और यहाँ पर मैं खिलाड़ी तू अनारी जी हाँ 1990s में से एक फिल्म है जिस जो बहुत ही हिट हुई है और गाने जो हैं बहुत ही पॉपुलर हुए और उनमें से एक गाना आप लोगों के नाम हम करते हैं कुमार सानू और अर्का याग्निक की आवाज़ों में

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: दिलों की आवाज़।
1: 7:16 हुए हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम दोस्तों, और यहाँ पर आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम खासकर RM Free पर, रेडियो मनोरंजन पर। जी हाँ, और वैसे जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं, सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, आपको हम कैसे भूल सकते हैं, हमेशा आप साथ देते हैं। वैसे कुछ लोग घर पर आ चुके हैं काम से वापस, और साथ में खाना भी बना रहे हैं, या फिर घर के काम काज में लगे हुए हैं, हमेशा बिजी हैं। तो बस उन गानों के साथ काम को और आसान हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा गाना आ गले लग जा फिल्म से लिया गया, 90s की बनी हुई फिल्म है, और यहाँ पर कविता कृष्णमूर्ति और साथ में है अभिजीत साहब। वैसे आपको पता है ना कि अभिजीत जो है महान गायक, द ग्रेट सिंगर अभिजीत, बहुत ही जल्द आने वाला है हमारे देश में कंसर्ट देने के लिए। तो अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो बस उस मौके का फ़ायदा उठाइएगा। और यहाँ पर खास गाना हम चलाने जा रहे हैं सुदेवी जी के लिए, जो रहती है वाकवा और साथ दे रही है, गाना वो मांग रही हैं ललिता दीदी के लिए, और साथ में कुशल परिवार, आत्माराम भैया, मालेंगा के राम रतन फैमिली, और साथ में हमारे पूरे MVC टीम, खासकर रेडियो मनोरंजन टीम के लिए। सो थैंक यू सो मच। चलिए ये गाना आपके लिए।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज प्रोग्राम। जी हाँ, इस खूबसूरत महफिल को हम जारी रखते हैं, लेकिन तन्हाइयां किस बात की जब हम यहाँ हैं, आप लोग साथ दे रहे हैं और हम भी साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर वैसे कहते हैं ना, जो रोमांटिक गाने हैं हमेशा साथ देता है आपकी तरह। और यहाँ पर खास कर गाना हम चला रहे हैं रियाना जी के लिए, जो हमें सुन रही है फिनिक्स से। गाना वो मांग रही है फिल्म सरक से लिया गया। वैसे कहते हैं ना, तन्हाई में भी महफिल सजा लेते हैं हम। हम अपने दर्द से ही बातें कर लेते हैं। कभी कभी तन्हाई भी महफिल लगती है, जब यादों का शोर दिल में होता है। सरक का ये खूबसूरत गीत कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज, की आवाज,
1: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। चलिए यहाँ पर 7:43 हुए हैं और खूबसूरत गाने मोहरा फिल्म से लिया गया अगला गाना हम चलाएंगे।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: दिलों की आवाज़ प्रोग्राम 7:55 और यहाँ पर इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। जैसे कि हमने कहा, हम लाइव टिकटॉक भी करेंगे और ये लाइव शुरू हो चुका है और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर अनायल हैं जो हमें सुन रही है, देख भी रही है, अंशावी मी तेज सनातन है, पूजा बालगोबिन है और साथ में प्रेमा प्रकाश सूरज सजादा है और हमारी प्यारी सुदेवी जी भी जुड़ चुकी है और खासकर दिनेश गोपी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, नमस्ते आपको। रीना जी, हाँ रीना गाना मांग रही हैं बेटी रूही और पति अविनाश के लिए। और यहाँ पर आफिजा भी गाना मांग रहे हैं साइलिश के नाम, चलिए खूबसूरत गाना, रोमांटिक गाना हम चलाएंगे। कावी की सैन के नाम जाएगा गाना और हिमेश, अच्छा जी हाँ हिमेश आ चुके हैं। और यहाँ पर शाइन जी आपके नाम भी जाएगा, जाक के नाम, राजेश जी हैं, सिद्दीक जो हमें सुन रहे हैं देख भी रहे हैं, फाजाना सुबाची है और आयशा, जी हाँ आयशा भी है और साथ ही साथ में उमा है जो गाना मांग रही है, जी नहीं वो रेखा है, और रेखा जी गाना मांग रही है अपने बेटे अंश के लिए और वो रहती है पू पूंज। और वैसे आपका प्यार मिल जाए, हमें बस यही चाहिए। और हमारी प्यारी और जगिनीशा है वो भी साथ दे रही है, थैंक यू सो मच साहिता नोम जंद। चलिए सुनते हैं अनुराधा पोडवाल और साथ में उदित नारायण साहब, ये रोमांटिक गाना इस रोमांटिक मौसम में।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: वैसे ये कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है, आप लोगों को पसंद है और हमें भी पसंद है, और ये जो गाने हम चला रहे हैं बस एकदम लाजवाब है, एक से बढ़कर एक गीत 80s और 90s। और यहाँ फिल्म वीर से लिया गया अगला गाना, खासकर सुदेवी जी, और गाना वो मांग रही है डीजेश के लिए, उनके बेटे डीजेश, बेटी है प्रतीक्षा और पति है मनोज, और साथ ही साथ में वीर के लिए। जी हाँ, आपका नाम वीर है और फिल्म का नाम भी वीर है, और अमीर साहब आपके नाम ये गाना जाता है, और साथ ही साथ में अंजल जो है गाना मांग रहे हैं प्यारे बेटे सोहल मातुरा के लिए। और प्रेमिला जी जो हमें सुन रही है फ्रांस से, वैसे हमें पता है कि ऐसे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत दूर से हमको सुनते हैं, धन्यवाद। फाजाना सुभाष जी हाँ, और अगला गाना अजहर हुसैन बाकस के लिए, इंदिरा महतुआ सिंह गाना मांग रही है अपने परिवार के लिए, और यासिन के नाम भी ये गाना जाएगा, और साथ ही साथ में गाना हम चलाएंगे, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, विक्रम बिखी, यासिन गाना मांग रहे हैं शिवानी के लिए, और क्या बताएं, जय के नाम पति जय और बेटा ओमवीर के लिए गाना, और खासकर पत्नी समंता शंकर शावी के नाम ये गाना जाएगा, और हुसैन दीप्ति घंडावरी उनके लिए भी गाना, और खासकर तरुण राम जो जुड़ चुके हैं, विनीता दनु गाना मांग रही है पति विनंद, और आपके नाम विनीता जी हाँ, रेश शिवासानन उनके नाम।

0: You're listening RM Free Radio. Radio. दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:10 हुए हैं दोस्तों। कहते हैं दोस्ती दिल से होती है, वरना मुलाकात तो रोज हजारों से होती है, और सच्चा दोस्त वो ही होता है जो मुसीबत में भी साथ ना छोड़े। तो चलिए, अगला गाना बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म मझधार से लिया गया, और ये गाना खासकर तारा के लिए, दोस्ती के नाम अब्दुल रशाद है उनके नाम भी ये गाना जाएगा, और साथ में सलमा, जी हाँ सलमा के लिए, सरोज के नाम, और साथ ही साथ में सीला जो हमें सुन रही हैं, सीला के लिए वैदही के नाम गाना जाएगा। और नीरम है और यूके से हमें सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, तनवीर खालिद, कीर्ति चट्टू, आपके नाम भी ये गाना जाएगा, कौसर के नाम। चलिए, वैदेही यहाँ पर गाना मांग रही हैं बेटे अर्तिश रोहन के लिए, दोस्ती के नाम। अगर आपके जीवन में एक ऐसा दोस्त है जो सच्चे दिल से आपको चाहता है, प्यार करता है, हमेशा आपके बारे में केयर करता है, तो इस दोस्त को आप कहीं मत जाने नहीं दीजिए। SB बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में

हर कहानी यादगार होती है। 8:19 हुए हैं और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे कौसर के लिए। आतिफ असलम का गाया हुआ गीत है और साथ ही साथ में उनके नाम गाना जाएगा, खासकर कौसर के नाम। और साथ में राजीव आपके लिए भी नमस्ते। और साथ में गाना जाएगा कैलाश, कैल कैलाश के लिए। जी हाँ, गाना वो मांग रहे हैं अपने सभी कॉलेज फ्रेंड्स के लिए। और कॉलेज फ्रेंड्स जो है ग्रुप था और नाम था बिरोनियन स्टॉग, क्या बात है। तो चलिए उन लोगों के लिए ये गाना और साथ में अनिता पियतुब है, कविता दुलीप है, उनके नाम जाएगा गाना। और साथ ही साथ में संजय बुडवा आपके नाम। और रंभा जी जो है, जी हाँ रंभा जी गीत मांग रही है अपने पति अजय के लिए और सभी परिवार, पितिया परिवार जो रहते हैं प्लेन बुआ। और हिताशा के लिए भी गाना जाएगा आसिया बुडो। प्रिया लक्ष्मण जो है गाना मांग रही है अपने हस्बैंड, बेटियां और दामाद के लिए और पूरे परिवार के लिए। आतिफ असलम का ये प्यारा गाना, रोमांटिक गाना, रोमांटिक लोगों के लिए।

0: दिलों की आवाज,
1: जी हाँ, गाने ऐसे हैं कि पूरे दिन की थकावट दूर कर देता है, है ना। ऐसे गाने वेरी रिलैक्सिंग। और वैसे कल के बारे में हम तो सोच रहे हैं कि कल क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, लेकिन कल किसने देखा। आज जो है, इस मौके का आप फ़ायदा उठा लो, एंजॉय करो, खूबसूरत गाने को आप उनके साथ गुनगुनाओ। और यहाँ पर नाइम सगतन, उनके नाम जाएगा गाना, और साथ में है कविता, रीना दुकारन शानीला के लिए, और साथ ही साथ में अनिल तिरबू है नास के लिए, और साथ में खासकर मिस्टर तरुण राम, जी हाँ, ये गाना आपके लिए, क्योंकि इस गाने की फरमाइश आपने की है। और साथ में गाना हम चलाएंगे अनाबेल के लिए, खट्टा मीठा फिल्म से लिया गया, के, जी हाँ, लेट के की आवाज़ में, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके नाम, उनकी आवाज़ में, और साथ में है सुनिधि चौहान।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: कहते हैं ना जन्मदिन जो है एक ही बार आता है और जब आता है ना तो उस दिन को हम खास समझते हैं खास मनाते हैं अपनों के साथ और साथ में यहां पर मेहर जी हां मेहर अपना जन्मदिन मना रही है और ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी मामा और पूरे परिवार की ओर से और वैसे हम ये गाना डेडिकेट करना चाहेंगे उन सभी लोगों के लिए जो आज अपना ये दिन मना रहे हैं खास दिन जन्मदिन मना रहे हैं तो पूरे एमबीसी टीम की ओर से पूरे रेडियो मनोरंजन टीम की ओर से वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना और यहाँ पर हमारी प्यारी अनीता जी जो हमें सुन रही है फिक ऑफ लाख से गाना वो मांग रही है अपने लिए और अपने परिवार के लिए और साथ ही साथ में गाना जाएगा रिडवान के नाम। जी हाँ, रिडवान जो इस समय हमें सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं और साथ में जेनिता जो रहती है मेबर्ग और मेबर्ग से वो हमें सुन रही है धन्यवाद आपको। दिलवाले दुल्हनिया का ये खास गाना आपके नाम।

0: पौने नौ बज चुके हैं जी हाँ 15 मिनट रह गया है इस कार्यक्रम को समाप्त होने में और आप लोग साथ दे रहे हैं और वक्त कैसा जल्दी जल्दी गुजर गया पता भी नहीं चला लेकिन आप लोगों ने साथ दिया बहुत ही मज़ा आया बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ पर रुमन जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए गाना जाएगा और मिशाल पति मिशाल के लिए जी हाँ और छाया है जो गाना मांग रही है लविश का ऐशा मंगल और उनके सभी दोस्तों के नाम कविता बरन दयाल उनके नाम जाएगा नमस्ते आपको और जितेन डुलवा आपके लिए भी गाना हम चला रहे हैं अफजल खान आपके नाम और राधा जावाली आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे क्यों नहीं और राज बिसु जी हाँ राज बिसु जो हमें सुन रही है फ्रांस से दूर ही सही लेकिन आप तो दिल के बहुत ही करीब हैं और यहाँ पर प्रिया जी हैं जो गाना मांग रही हैं और वो रहती है फ्लाक से ठीक है थैंक यू सो मच नाइस सॉन्ग सिलेक्शन बहुत धन्यवाद आपको गाना आप मांग रहे हैं पति विशाल के लिए और दो बेटे हैं आदिश और केशव चलिए छाया जो है गाना मांग रही है अपनी दीदू के लिए और पत्नी जो है अनुषा अंजल तिलमा है गाना वो मांग रही है अपनी बहन तस्लिमा और वालिद के लिए
1: दिलों की आवाज
0: चलिए दिलों की आवाज प्रोग्राम अगला गाना 90s का ये खूबसूरत गीत टक्कर फिल्म से लिया गया

आठ बजकर 53 मिनट हुए हैं दोस्तों और यहाँ पर 80s और 90s के गाने आप सुन रहे थे। इस आखिरी गीत के साथ अबाज़ीगर फिल्म से लिया गया और आवाज़ें हम सुनेंगे विनोद राठौर और अलका याग्निक जी और साथ में ये गाना राजेश साहब के लिए जो हमें सुन रहे हैं वाकवा से। थैंक यू सो मच। गाना आपके नाम और आपके परिवार के नाम और साथ ही साथ में विदा सैनकर पेन के लिए गाना हम चला रहे हैं और राधिका के लिए दनी जगरू है जो रहते हैं गुडलैंड्स उनके नाम और विक्षय के लिए भी गाना हम चला रहे हैं। अनु आर दी है गाना वो मांग रही हैं अपनी बेस्टी दिव्या ज्योति आज उनका जन्मदिन है फ्रॉम अनुष्का। चलिए उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ और शब्द के लिए थैंक यू सो मच। और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद। हंसते मुस्कुराते रहिए हमेशा। मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शुभ रात्रि।

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:04 हो गल बा छोटा लोग, नमस्कार, आदाब। और रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर तो लोग के स्वागत बातें। रात्रि के सुंदर बेला बा और तो हर सुनहरा साथ बा भोजपुरी प्रेमी लोगन और संगतिया लोग उषा के नमन स्वीकार कर जा। भोजपुरी तड़का तो हर बरिया प्रोग्राम तो हर खातिर रोज चलेला और आज भी तो हर सेवा आज

होल चलर आई तो चला रात के 11 बजे ले हम सादीवब देवब जा और यहां पर ही नंबर घुमा हुआ कासोंदे काथोवा सैंक और मैसेजेस कर सके ऑन 525 NZ005 भेजा सकब जा तो चला आज का पहल का गीत नीरज गुप्ता मधु के गावल गीत

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:14 श्रोता लोग रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर तुहर स्वागत बात एक बार फिर से। भारतीय मॉरिशस में MBC रेडियो ही नंबर वन बातें और भोजपुरी तड़का सब प्रोग्राम में है तुहर आँखों के तारा ऐसन गीतवन की फरमाइश करा जा। और अगला गीत जोन बा सुना नोयन के गावल गीत खासकर देवरानी जी खाते जो हमने के सुना ता मेबग से साथ देने खाते धन्यवाद तोरा। और चला

0: भोजपुरी तड़का।
1: रात के 9:22 हो गल बा श्रोता लोगन। जी हाँ साथी लोगन, ठंडा के मौसम त चलाल, बहुत कोई ठंडा खुशी रहेलन स त औरू कोनो बा त गर्मी के मौसम के मजा लेवेलन जा। यही त जीवन हा, कभी खुशी कभी गम, कभी बारिश कभी गम। चला अगला गीत सुनीता जी खातिर जन हमने के सुना था काठो बोन से साथ देने खातिर धन्यवाद। कृषि के गावल गीत और ये गाना राजन जी खातिर जो हमने सुना था बोबासा से।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी
1: तड़का
0: तड़का
2: रात के 9:30 बज गल बा और श्रोता लोग भोजपुरी तड़का में अच्छा अच्छा बात करे के खूबे मन करेला तो लोग अपन हवा जा कुछ अच्छा बातें बातें के हमनी के कर्तव्य है हमेशा अच्छा सोचा अच्छा बोला और अच्छा सुना जा तो चला अगला गीत भाई विशाल खातिर और एक धर्म पत्नी रीना खातिर और जितना कोई के ई बखत काम करता ई दोनों ई बखत काम करता तयकर खातिर ई गाना माचो के गावल गीत और जितना कोई ई बखत काम करत वंजा गाड़ी चला चला वंजा त एकर खातिर ई गाना माचो के गावल गीत

0: से उड़ाइए हाँ
1: झंडा दोनों हाथ से नहीं उड़े ले खाद से उड़ेला
0: अमर बोला झंडा में जाने ले कौन जाऊ झंडा में वो बहुत भारी चीज है इसीलिए

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:06 हो गल बा तो चलो श्रोता लोग हमने के भाई बहन लोग आशा करत हैं कि तो लोग अपन शरीर के ख्याल रखत हुआ स्वास्थ्य सब से बड़ा धन है। रोज के रोज व्यायाम कर जा कोनो बोलेला कि समय नहीं मिलेला 24 घंटा में 15 मिनट निकाला ता तो हर रूप में निखार चलाई है ना। तो चला यहाँ पर सुदेवी जी जो हमने के सुना था वाकवा से और गाना मांगा था तवंजा अपन बहन संगीता खातिर और रोहित जी जो रही बोबास है वक्त हमने के सुना था। तो चला नीरज गुप्त माधु के गावल गीत

देवी और सज्जनों, ये जो महीना है बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 21 जून के विश्व भर संगीत दिवस मनावल जाए, परंतु ये पूरा महीना तो संगीत मास है। और 11 जून से जग के सबसे बड़ा प्रतियोगिता फुटबॉल में शुरू हुई वर्ल्ड कप 2026 जून यूएसए कनाडा और मेक्सिको में आयोजन होता। तैयार हो जा इत 4 साल में एक बार आवेला। 10:25 हो गल बा और अगला गीत सोना नोयन के गावल गीत खास कर इंद्रानी जी खातिर जोन रहेला काठो बोन और खतमनी के सुनाता गाना मांगा तवंजा अपन पति देव खातिर और बेटी अंजू खातिर।

अरे गुनी बुलाने से क्या होगा, जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा। आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा। अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा।

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौकट साफ किया नहीं तो आंगन झलकाने से क्या होगा। जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब दूध से मुंह जल गई तो अरे माठा फूंक कर पीने से क्या होगा, जब घर की आँट

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 10:43 होल बा छोटा लोग और यहाँ पर ही अगला गीत चलाओ अब जा भोजपुरी बॉयज के गावल गीत और ही एक कार्यक्रम तोहर खातिर और रेशमा जी जो रहीला कावलालियन वाक्वा ये बखत हमने के सुना था और काम करा था तो चला अगला गीत तोहर खातिर और परिवार खातिर

10:57 हो गल बा इरा हर तोहर खातिर भोजपुरी तरका हर दम ऐसे ही तोहर प्यार से साथ देव सा ये वादा बाते तो लोग भी वादा करे जा कि कबो एमबीसी रेडियो के नहीं भूल बा उषा के अनुमति देवा जा फिर से मुलाकात होए नमस्ते और शुभ रात्रि।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। आप इस समय रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं एक बार फिर सुनहरे पल कार्यक्रम में। आप सबका अभिवादन, स्वागत। क्योंकि आज की तारीख बहुत ही खास है बॉलीवुड के लिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आज ही के दिन एक महान, एक लेजेंडरी एक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, महान कलाकार थे वो थे राज कपूर। आज उनकी बरसी है, तो आइए इस महान कलाकार की दुनिया में आज आपको सैर कराते हैं।

राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शोमैन कहा जाता है। उनका नाम बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। राज कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे बल्कि एक विजनरी फिल्ममेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी थे, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को दुनिया भर में एक अलग पहचान दी। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती थी बल्कि समाज को एक गहरा संदेश भी देती थी। उनका अंदाज, उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी कला के प्रति लगन ने उन्हें अमर बना दिया।

राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में हुआ था, जो उस समय ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। वे लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे। वैसे कपूर परिवार का सिनेमा से गहरा रिश्ता था और इसी माहौल ने राज कपूर के अंदर बचपन से ही एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के प्रति जुनून पैदा कर दिया। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था।

राज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत क्लब बॉय और असिस्टेंट के रूप में की थी। बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद ही उन्हें एक्टर के रूप में पहचान मिलनी शुरू हुई। उनकी पहली मेजर फिल्म नील कमल थी, लेकिन असली सफलता उन्हें बरसात से मिली। इस फिल्म ने राज कपूर को एक रोमांटिक हीरो के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और इनोसेंस चार्म ने लोगों का दिल जीत लिया।

बहुत कम उम्र में राज कपूर ने अपना स्टूडियो आरके फिल्म्स स्टूडियोज एस्टैब्लिश किया। ये उस समय एक बहुत बड़ा कदम माना जाता था। आरके बाना के तले बने फिल्में आज भी इंडियन सिनेमा की मास्टरपीसेस मानी जाती हैं। राज कपूर की फिल्म मेकिंग स्टाइल बहुत यूनिक थी। वे आम आदमी की कहानियों को इमोशंस और सोलफुल म्यूजिक के साथ पेश करते थे। उनकी फिल्में सोशल मैसेज और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ करती थी।

0: क्यों?
1: इसलिए कि भौरा तुम्हारी हसीना उड़ाए,
0: बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना।
1: क्यों?
0: इसलिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद श्रोताओं, इस समय आप हमारे हम सफर बने हुए हैं सुनहरे पल कार्यक्रम में। वैसे एक्टर के रूप में राज कपूर का अंदाज बहुत अलग था। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में एक सिंपल और गरीब आदमी का रोल निभाया, जो सपने देखता था और सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करता था। उनका कैरेक्टर अक्सर चार्ली चैपलिन से इंस्पायर लगता था। श्री 420, आवारा या फिर जागते रहो जैसे फिल्मों में उनका इनोसेंट और इमोशनल एक्टिंग स्टाइल लोगों के दिल में उतर गया।

डायरेक्टर के रूप में राज कपूर एक जीनियस माने जाते हैं। उन्होंने आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आइकॉनिक फिल्म्स डायरेक्ट की। हर फिल्म में उन्होंने इमोशंस, म्यूजिक और विजुअल्स का एक मैजिकल बैलेंस क्रिएट किया। उनकी फिल्में सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सोवियत यूनियन, मिडल ईस्ट और दुनिया के कई देशों में भी बहुत मशहूर हुई। आवारा हूँ जैसे गाने इंटरनेशनल लेवल पर भी फेमस हो गए।

श्रोताओं, क्योंकि राज कपूर साहब के इतने सारे गाने हैं और इनके बारे में बस एक घंटे में कहना वो मुमकिन नहीं है, इसलिए इस श्रृंखला को यानी कि सुनहरे पल कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे अगले हफ्ते। साथ निभाते रहिएगा। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: बोल सहेली बोल, तू भेद जिया के खोल। बनघट पे

0: NBC Radio, हर पल आपके साथ।
1: ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा।